सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की तिथि 5, तदनुसार 26 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 52 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनिए मन का सुख, वाचन स्वर है संजय किशोर का।
1: सत्य को छोड़कर जब कोई असत्य का चिंतन करता है तो वह ऐसे ही है जैसे तुम अमृत को छोड़कर विष ग्रहण करो। अमृत छोड़कर कोई जहर पिए तो कहाँ की समझदारी है। ज्ञान ध्यान सब कोई रखे, अब यह एक अद्भुत बात कह दी। कहा ज्ञान बड़े लोग सुनते हैं और ध्यान बड़े लोग लगा रहे हैं। बांधन बांधिया जब जग भवें, लेकिन मन का बंधन अभी भी बंधा पड़ा है। ज्ञान सुना, ध्यान लगाया, लेकिन ज्ञान सुनकर भी, ध्यान लगाकर भी अगर मन के बंधन ढीले नहीं किए तो अभी भी उस जहर का घूंट पी रहे हो, जिस जहर से बचने को कहा जा रहा है। इसलिए संभल कर अपने चित्त पर दृष्टि रखना। चित्त किसकी चिंता करता है? उस चिंतामणि का या जगत का? देखिए, हमारे चित्त को शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक हम यह काम ना करें जिससे मुझे कष्ट हो और मैं उसको क्षमा करूं और जो मुझे सुख दे, मैं उनसे आसक्त ना हूं। आप कहेंगे दोनों ही काम टेढ़े हैं, जो हमको कष्ट दे हम उनको क्षमा कैसे करें? यानी जिस किसी ने आपको कष्ट दिया, हानि पहुंचाई या पीड़ा दी, जब तक आप उनको प्रसन्नता से क्षमा नहीं करते हैं तो यह याद रहे आपके चित्त को शांति नहीं आएगी। और यह भी हो सकता है कि जिसने आपको कांटा चुभाया वह भूल गया होगा कि मैंने क्या दुख दिया था, पर आपको याद है क्योंकि आपने दुख भोगा था। आप भूले नहीं, वह भूल गया। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ही कांटों जैसा है, उनके करीब जाओगे तो वे चुभेंगे ही। लेकिन हम यह मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हमारी वजह से भी किसी को कष्ट हो सकता है। हम हमेशा बिल्कुल इसी बात के लिए पक्के हैं कि हम दूसरों को कष्ट नहीं देते। हम तो किसी का बुरा सोचते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि दूसरा जो आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जब तक आप उसको क्षमा नहीं करोगे तब तक आप अपने को दुखी करते रहोगे।

0: संत कबीरदास ने प्रेम के संदर्भ में कहा कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, न ही बाजार में बिकता है, बल्कि वह सर्वत्र विद्यमान है, जिसे विनम्रता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम पाने के लिए त्याग और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। माता पिता, शिक्षक और बुजुर्ग प्रेम पाने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। प्रेम पाने के लिए एक दूसरे की अनेक बातें माननी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, भगवान को भी भक्त का मन रखने के लिए उसकी अनेक बातें माननी पड़ती हैं। कृष्ण को विदुर के घर साग खाना पड़ा था और गुरु नानक देव दूर गांव में जाकर अपने भक्त के घर सूखी रोटी खाना पसंद करते थे। राणा प्रताप ने भी प्रेम के खातिर सूखी घास की रोटी हर्षित होकर खाई थी। धर्मशास्त्र, इतिहास, साहित्य, दर्शन और मनोविज्ञान प्रेम की इसी भित्ति पर टिके हैं। जीवन में भक्ति, ज्ञान, सौंदर्य और माधुर्य, दृश्य और श्रव्य, चिंतन और विचार आदि, इन सभी के मूल में प्रेम का ही पवित्र और नैसर्गिक रूप सामने आता है। निराशा दुखमय क्षणों में आशा की कनक किरण सजाता है प्रेम। यह प्रेम निश्चित तौर पर अमृत संजीवनी है। पशु पक्षी, मनुष्य, कीट पतंगे, पेड़ पौधे अंतस में प्रेम का भाव रखते हैं। प्रेम जीवन का सुख है, आनंद है, सौंदर्य है। प्रेम का प्रभाव उमड़ता है, इसलिए प्रेम को गलत अर्थ में न ग्रहण करें। आप सभी को प्यार करें, कष्ट न दें तो सुखी रहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना मन का सुख। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसमें सुनिए वार्ता, अनाज भंडारण में लगने वाले कीट। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अनाज का भंडारण जब आप करते हैं तो वहां पर अनेक तरह से नुकसान भी होता है। नुकसान कुछ जीवों से होता है, जैसे चूहों के द्वारा, कवक यानी कि फंगस के द्वारा भी नुकसान होता है और कीड़ों के द्वारा भी नुकसान होता है। जब अनाज में नमी बढ़ती है तो कीड़ों का आक्रमण जो है ज़्यादा होता है और कीड़ों के आक्रमण से अन्न क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं और अनेक तरह की गंदगी भी फैल जाती है। आज हम आपसे चर्चा करते हैं भंडारित अनाज में जो लगने वाले प्रमुख कीड़े हैं उनके बारे में। तो पहला कीड़ा है चावल का घुन, दूसरा है छोटा अनाज छिद्रक, तीसरा है लाल आटा भृंग, चौथा है चावल का पतंगा, पांचवां दाल भृंग, चावल की तितली और खपड़ा भृंग प्रमुख हैं। चावल का घुन जो होता है वो भारत के समस्त भागों में भंडारित अनाज को क्षति पहुंचाने वाला होता है। इस कीट का रंग गहरा भूरा होता है जो चावल, गेहूँ, मक्का को अत्यधिक प्रभावित करता है। जिस अनाज में नमी की मात्रा 10-16% तक होती है इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप होता है। इस कीट के संक्रमण के बाद अन्न छिद्रयुक्त हो जाता है और वयस्क कीट उसके ऊपर रेंगते नजर आते हैं। दूसरा कीड़ा है छोटा अनाज छिद्रक। वयस्क अवस्था में इस कीट का रंग गहरे बादामी रंग का होता है। इस कीट की इल्ली एवं वयस्क क्षतिकारक होती है, परिणाम स्वरूप अनाजों से अनुपयोगी आटा जैसा पदार्थ नजर आता है। लाल आटा भृंग का रंग गहरा लाल होता है तथा ये कीट आटा, मैदा, सूजी को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके इल्ली एवं वयस्क दोनों ही क्षतिकारक होते हैं। चावल का पतंगा गहरे भूरे धूसर रंग का होता है और इसकी मादा दीवारों, बोरों या दानों के ऊपर अंडे देती है। इसकी इल्ली क्षतिकारक होती है जिसके संक्रमण के पश्चात अन्न के ऊपर झाला बन जाता है। अनाज की तितली प्रायः इसका प्रकोप फसल पकने की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसकी मादा परिपक्व फसल पर अंडे देती है और इल्ली अंदर ही अंदर अन्न को खाते रहती है। अंततः उसके बाद जो है वयस्क बनकर आता है। दाल का भृंग भूरे या लालिमा रंग का लिए हुए होता है। इसके पंखों के ऊपर धब्बे होते हैं। इस कीड़े के इल्ली क्षतिकारक होती है। मादा साबुत दाने के ऊपर अंडे देती है और इल्ली अंदर ही अंदर दाने को खाकर खोखला कर देती है। इस तरह का कोई भी कीड़ा जब आपके भंडारित अनाज पर लगता है तो क्षति ज़्यादा होती है। इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय आपको अपनाने चाहिए। फसल जब पूरी तरह

0: परिपक्व हो जाए तभी कटाई करें, क्योंकि कच्ची फसल पर ज्यादा कीड़े लगते हैं। जिस स्थान पर फसल की मड़ाई गहाई करना हो उस स्थान को अच्छी तरह साफ सफाई कर लें, अन्न को अच्छी तरह से सुखा लें और सुनिश्चित कर लें कि अन्न में नमी की मात्रा 9% से कम है, तभी आप उसे भंडारित करें। इसके लिए आप गेहूं के दाने को दांत से दबावें, यदि कट की आवाज के साथ कट जाता है तो समझें कि ये भंडारण योग्य हो गया है। जिस ड्रम, बोरा या कोठिला में अन्न का भंडारण करना है उसे ठीक तरह से साफ सफाई कर लें। भंडार गृह के दीवारों पर आप दवा का छिड़काव करके उसे अच्छी तरह से कीड़ा रहित कर लें। डेल्टा मेथ्रीन दवा जो है इसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम, करंज, यूकेलिप्टस की सूखी पत्तियों को भंडारित अनाज में परत दर परत लगाकर रखने से भी कीड़े नहीं लगते हैं। भंडारित अनाजों में गेहूं के भूसा मिलाकर रखने से कीटों का आक्रमण जो है वो कम होता है। भंडारित अनाज को नमी, ताप एवं आपेक्षिक आर्द्रता से पूरे भंडार की अवधि में बचाकर रखना चाहिए। भंडारित अनाज को रसायन के द्वारा भी प्रदूषित आप कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड नामक दवा से आप इसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन जहां इस दवा का प्रयोग करें वो जगह जो है वायुरोधी होनी चाहिए। एल्युमिनियम फास्फाइड 56 PP की दवा जो है 10 ग्राम बैग प्रति 5 क्विंटल अन्न के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह से भंडारित अनाज की आप सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आपने सुना वार्ता अनाज भंडारण में लगने वाले कीट। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज

0: तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

ईश्वर की प्रार्थना में वो शक्ति है जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और हम ये प्रार्थना हमेशा करते हैं कि हे प्रभु, दूर करो हमारे मन के अंधकार को। ऐसी प्रार्थना हमने भीतर से मजबूत बनाती है।

बूंद बूंद से सागर बनता है और सरगम से सुर सजता है। इसी प्रकार वंदना करने से हमारे भीतर की भक्ति जागती है, और जब भक्ति जागती है तब हमारा मन शुद्ध होता है।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।
1: एपिसोड 115 115।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेदध ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर था रविंद्र साठे का। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचना। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए भेंट वार्ता, मधुमेह के आरंभिक लक्षण। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर एसपी सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही ये पटना शहर के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: जी धन्यवाद, प्रणाम।
1: क्योंकि डायबिटीज जो रोग है ये तो हर पांचवें व्यक्ति को है।
2: जी हाँ।
1: तो बहुत सारे शरीर में इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं जब लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि कहीं ये डायबिटीज तो नहीं है, तो जरा हमारे सुनने वालों को बताएं कि किन किन लक्षणों को हम डायबिटीज समझें और उसके साथ आगे की कार्रवाई करें।
2: डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, ये शब्द हर आदमी के जुबान पे आज के दिन में आ गया है, जिसका मतलब मधुमेह की रोग होती है, मतलब चीनी की बीमारी। एक ऐसी बीमारी जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है और इनका असर पूरे समुदाय पे पड़ता है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपको यदि मधुमेह की बीमारी है तो हो सकता है कि 80% लोगों में पता ही नहीं चले कि मुझे बीमारी है। बीमारी का पता तब चलता है जब कभी किसी डॉक्टर के पास आप कुछ और बीमारी लेकर के जाते हैं। पेशाब के रास्ते में खुजली हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, पेट में अचानक दर्द हो गया, आंख मेरी खराब हो गई है, किडनी गड़बड़ हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है एंड पैर और हाथ में सूनापन आ गया है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको अंदर ही अंदर आपकी सारी अंग को परेशान करने लगती है। जब डैमेज हो जाती है कोई अंग, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको वो है डायबिटीज।
1: इसके अलावा कुछ कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि बहुत नींद आती है, बहुत थकान लगती है, उठने का मन नहीं करता है, चलने फिरने का मन नहीं करता है, पैर हाथ चटाता है, क्या ये भी लक्षण हो सकते हैं?
2: जी ये बीमारी का है, पहले इसके बारे में सब समझना हम लोग को होगा, क्योंकि ये बीमारी शुगर के पचने की जो क्रिया है उसको कम कर देता है। शुगर जो आपके शरीर में तुरंत एनर्जी देता है, वो शुगर को पचाने का काम इंसुलिन जैसे हार्मोन करता है, और इंसुलिन जैसे हार्मोन यदि आपके शरीर में कम हो गया तो स्वाभाविक है आपका जो शरीर में एनर्जी जिस चीज से मिल रहा था, जिसके पचाने के बाद मिल रहा था, वो आपके शरीर में एनर्जी अब नहीं मिल रहा है। तो यदि एनर्जी नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक आपको थकान होगा, आपको सरदर्द होगा, आपको काम करने में आपको मन नहीं लगेगा, आपको अंदर ही अंदर जो है ना सफोकेशन होगा। इस सारी चीजें आपको हो सकता है, और यदि ये सब चीज है तो ये सब एक भेक टर्म है कि मतलब किसी भी बीमारी में होने की संभावना होती है, ऑलमोस्ट आपको डायबिटीज में भी होने की संभावना होती है।
1: और हृदय की धड़कन की क्या स्थिति रहती है?
2: जी जी, मैंने इसको मैंने पहले कहा कि आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं सर, तो सबसे पहले आपको यही चीज पूछे होगा कि आपकी धड़कन बढ़ गई है, आपका आंख की रोशनी जा रही है, आपका पेशाब के रास्ते में खुजली हो रही है, आपको पेशाब कम होने लगा है, ये सारी चीज, या बराबर लैट्रिन आपका कब्ज

0: हो गया या तो लेटिन आपको ज्यादा हो गया, ये सारी चीज को लेकर के आप अब आपको डॉक्टर के पास जाएंगे और पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं, एक ही बीमारी है, वो शुगर की बीमारी। ये भी संभावना आपको ऑलमोस्ट बनता है।
1: तो आमतौर पर ये समस्या किस उम्र में?
0: उम्र जानने के पहले ये जाना जाता है कि जो ऑलमोस्ट बीमारी आपका होता है वो 20 साल से ऊपर के, 20 साल के पहले जो भी बीमारी होती है उसमें बहुत कम मिलती है और वो टाइप बताता है। एक चक्र में तीन तरह के मुख्यतः हमारे यहाँ डायबिटीज की परेशानी आती है। पहला टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशन, जिसको कि प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। तो जो 20 साल के नीचे होता है यूजुअली वो टाइप 1 होता है, जिसमें आपके शरीर का जो इंसुलिन निकालने वाला मशीन जिसको कहते हैं, ऑर्गन जिसको कहते हैं, वो पंक्रियाज है। पंक्रियाज में आइजोलेट सेफलोग्रेन्स होता है, उसमें बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है और बीटा सेल डैमेज ऑलमोस्ट हो चुका है 70% से अब, तो टाइप 1 हो जाता है। लेकिन जब आपका फंक्शन कम हो जाता है, मतलब आप इतना खाना खाते हैं कि आप फैटी हो गए, इतना कम काम करते हैं कि बैठे बैठे आप निष्क्रिय हो गए, इतना टेंशन में रहते हैं दिन रात कि आपका जो है ना अपने आप में इतना टेंशन होता है कि आपका रिलीज जो इंडोर्फिन होता है वो कम होने लगा, आपके अंदर में अनेक तरह की समस्याएं होती रहती है। उस समस्याओं का निदान आपको जब नहीं मिलता है तो नींद नहीं सही से आती है आपको। ये सारी चीजें आपको टाइप 2 का कारण बनाता है। और टाइप 2 में इंसुलिन निकलता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है, और कभी कभी इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। ये दोनों मिला करके आपको टाइप 2 बनाता है। उसी तरह से तीसरी जो परेशानी है वो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन जितने भी हार्मोन निकलते हैं, वो सारे हार्मोन इंसुलिन की क्रिया को धीमी कर देती है, कम कर देती है। और उसके वजह से ज्यों ज्यों आपका प्रेगनेंसी बढ़ता है त्यों तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जाता है और आपको शुगर पचने की क्रिया कम हो जाती है और आपको डायबिटीज हो जाता है।
1: डॉक्टर एसपी सिंह साहब, आपने डायबिटीज के आरंभिक लक्षणों के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी नमस्कार।
2: स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, मधुमेह के आरंभिक लक्षण। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर एसपी सिंह और इनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। 7:15 पर आप सुन सकेंगे बज्जी का लोकगीत और शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 7:25 पर।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर और 10 बजे आप सुनेंगे रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत।

कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 10:30 पर और 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 12 बजे सुनिए बिहार का लोक संगीत।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत। देशगान होगा 1:20 पर और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:30 पर। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे 4:30 पर। मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण होगा 5:30 पर और 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

0: रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार, ये लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, HD कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् 21 दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी 2-3 दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश,

0: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90-उत्तरैकशताधिक देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे

0: तलाशी अभियान के दौरान हुई ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन में। तो जी हाँ श्रोताओं, भारतीय और विश्व इतिहास में आज यानी 26 मई का दिन अपनी कई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक घटनाओं के लिए बहुत खास है। जैसे आज के ही दिन 1999 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पहली बार अपने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्ष में स्थापित किया था। राजनीतिक और ऐतिहासिक बात करें तो आज के ही दिन करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई, जिससे भारतीय उपमहाद्वीपों में बड़े क्षेत्रीय विभाजन की नींव पड़ी। और आज के ही दिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अपनी ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत की। 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के राजा का ताज पहनाया गया आज के ही दिन। तो श्रोताओं, ही ना जानकारी भरी बातें और भी हैं ढेर सारी, पर सुनते हैं इस गाने के बाद।

तो श्रोता, हम बात कर रहे थे क्या खास है आज के दिन और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज के दिन। आज ही के दिन 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के राजा का ताज पहनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा दिवस, जी हाँ, आज के ही दिन 26 मई को हजारों स्वदेशी बच्चों और परिवारों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें श्रोताओं, तो चार्ल्स ईवंस ने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की थी 1955 में आज के दिन। और 1967 में ब्रिटिश गुयाना को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इसका नाम बदलकर गुयाना कर दिया गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मॉस्को में सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था आज के दिन। और 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय के तहत पहली बार MiG-21 और MiG-27 विमानों से हवाई हमले शुरू किए थे। और श्रोताओं, अब बात करते हैं कुछ सेहत से जुड़ी। तो गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है खुद को हाइड्रेट रखना और हल्का और सुपाच्य भोजन बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, ये

सबको अपने डाइट में शामिल करें, इससे पाचन ठीक रहता है। ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ों को खाने से परहेज करें। तरल पदार्थों का सेवन आप ज़्यादा करें। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और लस्सी का नियमित रूप से सेवन करें। हल्का भोजन करें और अपने हल्का भोजन जैसे उसमें तली भुंजी चीज़ें बिल्कुल न लाएं। इसके बजाय दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज का सेवन करें। योग ज़रूर करें क्योंकि योग जो है वो हमारे दिनचर्या को ही मजबूत कर देता है। और जहाँ तक हो सके चाय, कॉफ़ी ये सब कम लें और धूप में बाहर निकलने से बचें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचें। और ये जी, यदि बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो छाता का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें। तो स्वस्थ रहने के लिए ये सब जीवन शैली अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ श्रोताओं, सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं अजीत कुमार अकेला।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत, कलाकार थे अजीत कुमार अकेला। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी साथी का शहनाई वादन, राग है मियां की तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन, राग था मियां की तोड़ी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज।

0: दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
4: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति

0: जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के मार्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2023 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में

0: सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत, क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षा

0: PNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उज़रा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के आइन मुताबिक ये उज़राए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उज़राए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशी होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है, जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों नीज बहरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदरे जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहाँ वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदरे जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल

राजस्थान में बीकानेर पहुंचे वजीर दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे

0: अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासी के हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमांड के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबार की अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: Yeah. میڈیا ویو

0: 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहा

0: फैन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 10 लाख पीपीएल परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के IGIMS में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 10 लाख पीपीएल परिवार के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, इससे उनके घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को बीपीएल परिवारों के लिए लागू कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के घरों में सोलर संयंत्र लगाने की योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी तेजी से काम करने और इसमें अधिक से अधिक घरों को शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। पटना स्थित IGIMS में आयुष्मान भारत योजना के तहत 45 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। IGIMS के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि काउंटर पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने रोगी के फर्जी दावों और नकली मेडिकल

0: बिल जमाकर धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में चार आउटसोर्सिंग कर्मियों समेत अन्य पर शास्त्री नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं से विभिन्न जिलों में नहर सफाई, जल निकासी और सिंचाई से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें मनरेगा के अंतर्गत आवंटित राशि के प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में नहरों और जल निकासी तंत्र की सफाई के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को गति देने पर बल दिया गया। राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी सपरिवार प्रत्येक 3 महीने पर 2 दिन किसी पर्यटन स्थल पर प्रवास करेंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी कर्मी अपने गृह जिले को छोड़कर किसी अन्य जिले में 2 दिन और 2 रात के लिए सपरिवार पर्यटन, इको टूरिज्म या ग्रामीण पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागीय प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्तर की निगरानी को लेकर पटना में हुई समीक्षा बैठक में श्री अमृत ने वर्तमान में बंद पड़े 86,679 चापाकलों की मरम्मत के काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में कार्यरत भ्रमणशील मरम्मत दल को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संभावित सुखाड़ को देखते हुए दक्षिण बिहार के जिलों पर नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने शिवहर परिसदन में वन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के साथ कृषि वानिकी योजना के 100% लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य के सभी पुलिस थाने अगले 3 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इससे सभी थाने, न्यायालय, जेल, FSL और अभियोजन प्रणाली का आपस में डेटा का आदान प्रदान आसानी से होगा। ADG आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
1: भारत सरकार की स्कीम है ICJS जिसे बोलते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम सभी थानों को और भी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें और भी अंग हैं, जुडिशरी है, प्रिजंस हैं, FSL है, ये हम लोग सभी ऑर्गन्स एक साथ आपस में नेटवर्किंग से जुड़ रहे हैं और सभी ऑर्गन्स अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत फायदे हैं, आप लोग जानते हैं, जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, लोगों को उतना जल्दी न्याय मिलेगा, काम उतनी तेजी आएगी। पहले जो समय लगता था, कोर्ट ने डायरी मांगा, डायरी आ रहा है, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगा, आ रहा है, अब सभी को रियल टाइम आपको अपलोड कर देना है और इससे वो जो डिलेज होते थे वो रुकेगी।
0: ADG ने बताया कि राज्य के 1,212 थाने CCTV से लैस हो चुके हैं। बचे हुए 170 थानों में भी 3 महीने में CCTV लगा दिया जाएगा। एक थाना में औसतन 12 से 13 कैमरे लगे हैं, जिनमें 18 महीने तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना अब आम लोग भी सीधे परिवहन विभाग को दे सकेंगे। विभाग ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ईमेल ID commandcontrolcenterpyar@gmail.com जारी किया है। प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में 1,942 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगा। इसका उद्देश्य मदरसों को आधुनिक शैक्षणिक तकनीक से जोड़कर छात्रों की समग्र साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ाना है। सरकारी विद्यालय के

0: ये पांचवी और छठी कक्षा के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी में समर कैंप लगेगा। इनमें भाषा और गणितीय दक्षता में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि समर कैंप समुदाय आधारित होगा तथा प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। चिन्हित बच्चों की संख्या और उनके निवास स्थान के आधार पर कैंप स्थल का चयन किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 जून को होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। बीपीएससी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के टेहरी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का 9वां अधिकतम तापमान है। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 44.5, कैमूर का 44.4, बक्सर का 43.1 और कयाजी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डेहरी, औरंगाबाद और कैमूर में लू की स्थिति बनी रही। विभाग ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज भी तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए शेखपुरा जिला प्रशासन ने 30 मई तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के वर्ग संचालन पर रोक लगा दी है। इधर बेगूसराय में 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी। स्वच्छता सर्वे के तहत केंद्रीय टीम ने पटना नगर निगम के वार्डों में नगर निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जांच शुरू कर दी है। कल नगर निगम के 5 अंचलों में केंद्रीय टीम पहुंची। यह टीम गंगा किनारे घाटों की स्वच्छता और सफाई के दावों की भी जांच करेगी। गया जी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू पेपरपाती मोहल्ला स्थित एक घर में औषधि विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए मूल्य की नकली और नशे की दवा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर की अदालत ने चर्चित दीपक ठाकुर हत्याकांड में शशि मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 428 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से एक तस्कर की गिरफ्तार

0: गिरफ्तारी हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से पुलिस ने ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,56,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बर्धा गांव से मिनी गन फैक्ट्री चलाने के आरोपी परवेज चांद को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल।
1: खेल खबरों में शुरुआत आईपीएल के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पिछले 11 दिनों में पेट्रोल 8.12 रुपए और डीजल 7.87 रुपए महंगा हुआ। दैनिक जागरण लिखता है, मैथिली को मातृभाषा विषय की मान्यता, सीएम ने जताया आभार। प्रभात खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, एनटीए ने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भोजपुरी लोक गीतों के वैश्विक दूत भरत सिंह भारती समेत बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधानमंडल सचिवालय से पद सेवा का शुभारंभ। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों में होगी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की पढ़ाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य के 10 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
3: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
2: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मुन्नी बेगम की आवाज़ में आप इस गज़ल को सामीन समाअत फरमा रहे थे, और आज की जो छोटी सी गुफ्तगू का मौजू है काजी नज़रुल इस्लाम। सामीन कराम, आप लोग इस बात से आगाह होंगे कि काजी नज़रुल इस्लाम जो थे वो बंगाली लिटरेचर के एक उम्दा राइटर थे, पोइट थे, और साथ ही साथ म्यूजिशियन भी थे। और आपकी एक और जो सलाहियत थी वो बतौर जर्नलिस्ट भी थी, हुकूमत अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ लिखने के कारण इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो तहरीरें थी वो हुकूमत अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ होती थी। यकीनन वो दौर तकलीफ़ दह था और उसमें तमाम लोग अपनी अपनी जानिब से कोशिशें कर रहे थे ताकि हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा सकें। यकीनन हमारे मुल्क की आज़ादी ही हमारे लिए अव्वलीन मकसद थी। इसमें हर तबके के लोग हर तरह के ज़रिए अपने अपने हालात के पेश नज़र इसमें अपना किरदार अदा कर रहे थे ताकि जल्द अज जल्द ज़िंदगी की जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म हो और हमारी जो हुकूमत है वो अंग्रेज़ों के ज़रिए से हमें वापस हासिल हो जाए। काजी नज़रुल इस्लाम की जो पैदाइश थी वो 24 मई 1899 को चुरुलिया पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये उम्दा पोइट थे। इनकी जो तहरीरें हैं वो अग्निवीणा, विद्रोही और नज़रुल गीति के नाम से शाया हुई हैं। इन्होंने बंगाल में जो तहरीक आज़ादी थी उसमें अपनी इन तहरीरों के ज़रिए नौजवानों में जोश और वलवला का एक नया इम्कान पैदा किया था और लोगों को उससे

0: हौसला अफजाई होती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तहरीक जंग आज़ादी में शामिल हो सकें। हर तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी और बिलखुसूस जो मकसद था वो यही था कि हम अपने तहरीरों के ज़रिए से जंग आज़ादी में शामिल हो सकें। आइए अब अगली पेशकश की जानिब हम मुतवज्जो हुए चाहते हैं। लीजिए सामीन, पेश खिदमत है ये गुफ्तगू दास्तान गोई की रिवायत कदीम ता हाल।
1: सामाइन, मैं जरी फातिमा आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक अहम मौजू दास्तान गोई पर। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के सदर शोबाए फारसी डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम। गुफ्तगू का ये सिलसिला शुरू करते हैं अहमद फराज के इस खूबसूरत शेर से। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। डॉक्टर जमशेद आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में।
2: तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आकाशवाणी का और हमारे सारे साथी का जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ये जो गुफ्तगू हम दास्तान पे जो कर रहे हैं ये बहुत पुरानी एक कदीम ज़माने से चली आ रही है चीज़। दास्तान अमूमन कहते हैं फ़ारसी के एक लफ्ज़ से निकली है जिसके माने होते हैं कहानी। फ़ारसी के ही लफ्ज़ हैं। गोई गुफ्तन से आया है, गुफ्तन।
1: अच्छा,
2: तो गुफ्तन फ़ारसी का एक मुजारा है जिससे हम लोग गोई बनाए हैं। तो दास्तान गोई यानी दास्तान को कहने वाली कोई चीज़। दास्तान हर दौर में बड़ी ही आम और मशहूर रही है। जब लिखने का रिवाज नहीं था तब
1: हाँ
2: लोग कह के ही अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे। अमूमन ये वस्ती एशिया, ईरान, खास करके तुर्की और आज़रबैजान में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो आप कभी भी कहीं देखती होंगी, आजकल तो बहुत ही आम फहम भी हो चुका है ये सारी चीज़ें, कि लोग दास्तान गोई को पसंद कर रहे हैं। हमारे पुराने ज़माने में दादा नाना नानी होते थे जो दास्तान सुनाते थे। आज के वक्त में ये ख़त्म होता चला जा रहा है। दास्तान का सकाफती तारीख जो है वो बड़े ही मालामाल चीज़ों से भरा हुआ है। आप यूं कह लीजिए, पहले जो दास्तान गोई या दास्तान की शक्ल होती थी वो नज़म के तौर में होती थी,
1: मतलब इसकी
2: नस
1: रवायत कहाँ से शुरू हुई
2: ईरान से।
1: मतलब?
2: अमूमन कहते हैं एशिया में ही ईरान से शुरू हुई, क्योंकि
1: अच्छा
2: मैंने
1: अच्छा
2: बताया कि ये लफ्ज़ जो है ये फ़ारसी से ली गई है, गुफ्तन से।
1: जी,
2: गुफ्तन कहना।
1: कब से शुरू हुई है?
2: कहते हैं कि जब शाहनामा 329 हिजरी के वक्त में
1: हाँ,
2: जब फिरदौसी हुआ करता था
1: अच्छा,
2: तब से ये रवायत चलती चली आ रही है। कहते हैं कि उनसे पहले भी नज़्म की शक्ल में हुआ करती थी।
1: गोया अलिफ लैला वगैरह जिस तरह से जो
2: शाहनामा है,
1: एक
2: शाहनामे
1: शाहनामा।
2: फिरदौसी है,
1: हाँ,
2: चाहे आप अगर रुदकी को देखती हैं, चाहे अलिफ लैला
1: अलिफ
2: देखती हैं
1: लैला,
2: अरबी अदब में, फारसी अदब में,
1: हाँ, अरानी केतकी की कहानी वगैरह जो है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से ये काफ़ी आम फहम रही। उर्दू अदब में भी इसका बड़ा ही नुमाइंदगी की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। 1649 के आसपास कहते हैं हिंदुस्तान में ये चीज़ दास्तान की शक्ल में लेना शुरू किया,
1: मतलब उसके बाद ये नसरी शक्ल में आने
2: नसरी
1: लगा।
2: शक्ल में आनी शुरू हुई। लिखते थे पहले
1: जी,
2: तो
1: पहले तो कहते थे।
2: शेर की
1: हाँ,
2: शक्ल में कह देते
1: कहते
2: थे,
1: थे।
2: जैसे
1: जी
2: कि मान लीजिए कुछ कहना ही है किसी को। फारसी का
1: जी
2: ही एक बहुत मशहूर कलाम है, आपने सुना भी होगा, कि बसी रंज बुरदम दरिन साले सी, अजम जिंद करदम बेदिन पारसी, नमीरम अजिन पस के मन जिंदे अम, के तुख्मे सुखन रा परा कंदे अम। उस कहना यही चाहता है कि मैंने 30 साल मेहनत किया है इस शाहनामा को लिखने के लिए
1: जी
2: और मैंने पूरी कोशिश और जी और जान लगा दिया है इस पूरी दास्तान को
1: दास्तान
2: लिखने
1: को
2: के लिए,
1: लिखने में,
2: लेकिन शेरी शक्ल में है।
1: शेरी शक्ल में। हाँ,
2: बाद में ईरान से जो ये चीज़ शुरू हुई, ईरान में 1906 के आसपास ये नसरी शक्ल में
1: अच्छा, 1906 के आसपास आई, यानी उससे पहले जो चार
2: आई।
1: दरवेश वगैरह जो थी,
2: सब
1: जिस
2: अमूमन उसी
1: हाँ
2: शेरी
1: खुसरो
2: शक्ल
1: वगैरह
2: में।
1: ने ये किया था, तो वो शेरी
2: बिल्कुल
1: शक्ल में
2: बिल्कुल
1: थी।
2: बिल्कुल। अब जैसे उमर खयाम को ही अगर आप पढ़ते हैं तो उनका भी वही है, रुबाई लिखते हैं वो शेर के अंदाज में लिखते हैं ना। वो कहते हैं क्या कि रूजी के गुजश्त हीच अज उ याद मकुन, फरदा के न यामदे अस्त फरियाद मकुन, बर न यामदे वो गुजश्त बुनियाद मकुन, हाली के खुशबाश उम्र बर्बाद मकुन। कहना वही चाहते हैं कि जो बीत गया है वो चीज़ आने वाला नहीं है और हमारा जो हाल है वो माजी तो चला गया, हाल तो बहुत बेहतर है, इसको करो, मुस्तकबिल का तो पता नहीं है। कहना यही चाहते हैं, लेकिन शेरी अंदाज हुआ था,
1: शेरी
2: हुआ
1: अंदाज
2: करता
1: हुआ
2: था।
1: था।
2: शेरी अंदाज में कहने का एक ये भी ये खास बात थी कि ये चीज़ों को खूबसूरती से करता है ना।
1: हाँ, पेश करने का।

0: क्लासिक
1: मतलब थोड़ा
0: चीजें,
1: अच्छा
0: थोड़ा
1: लगता है
0: क्लासिक चीजें करता
1: जी।
0: है ये, कि दास्तान जो है हिंदुस्तान में दास्तान महाभारत और रामायण की शक्ल में
1: में आएंगे
0: रजनिया
1: जी।
0: है ये, क्या कह रहा है? विष्णु शर्मा की किताब अगर उठाती हैं आप, जिसको बाद में ईरान ले जाकर के उसको ट्रांसलेट की गई कलीला उद्दमना की शक्ल में,
1: अच्छा
0: जिसको
1: अच्छा
0: कर्तक उद्दमना ही बोलते हैं ना,
1: अच्छा अच्छा
0: पंचतंत्र बोलते हैं हम उसको, क्या
1: ओके।
0: है? दास्तान ही तो,
1: दास्तान के
0: दास्तान ही
1: लिए
0: तो है.
1: टाइप किया
0: और वो क्या
1: था,
0: है? नसीहत है, एनेक्डोट्स है, हिकायत है.
1: उस पस मंजर में बात
0: बिल्कुल,
1: होती है।
0: जैसे अरब दुनिया में अलिफ लैला बहुत मशहूर है
1: हाँ,
0: ना, अलिफ लैला वो क्या है? दास्तान ही है, कहने की है.
1: ये भी अगर देखा जाए तो ये खुद एक अपने आप में
0: सारी की
1: एक
0: सारी
1: दास्तान है।
0: दास्तान की ही शक्ल में
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो
1: सब दास्तान कह रहे,
0: सब
1: बिल्कुल
0: कहानी ही बयान कर रहे हैं. शक्ल अलग अलग है
1: शक्ल
0: और ये
1: अलग
0: सारी
1: अलग।
0: चीजें अलग अलग हो रही हैं. दास्तान को अगर हम कह रहे हैं, गुफ्तन कर रहे हैं, गोई कह रहे हैं, तो दास्तान गोई हो रहा है. तो ये रवायत बहुत पुरानी है. पुराने यानी कदीम दौर में आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे या दरख्त के नीचे बैठ करके लोग कहानियां सुनाते थे ना, वो हुआ करती थी, वो हुआ करता था, वो दौर था.
1: अदब के इसमें कहा जाए तो अदब में ये दास्तान गोई की अहमियत
0: अदब, हम आपको बताते हैं, ये जो इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है कि लिटरेचर इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ
1: मिरर
0: सोसाइटी
1: ऑफ
0: ना,
1: सोसाइटी। बिल्कुल हाँ, समाज।
0: जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, आईना है वो, माशरा का, वो दिखाता है.
1: तो अदब में इसकी काफी अहमियत है, लेकिन दास्तान में और कहानी में कुछ तो फर्क होगा।
0: दास्तान क्या होता है ना, वो दास्तान का जो किरदार है वो
1: हाँ
0: हमारा बाजार से ही उठाया जा रहा है. तो दास्तान तो आप देख रहे हैं क्या, कि पहले दास्तान लिखना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था, अब आप भी दास्तान लिख
1: लेकिन
0: सकते हैं.
1: दास्तान, पहले दास्तान कहना आसान होता था,
0: बिल्कुल, दास्तान कहना इसीलिए आसान होता था क्योंकि लिखने की रवायत नहीं थी,
1: नहीं थी।
0: तो दास्तान कहते थे हम लोग.
1: हाँ
0: तो
1: दास्तान कहते
0: दास्तान
1: थे।
0: गोई की जो रवायत है वो बहुत कदीम जमाने से चलती चली आ रही है.
1: हाँ
0: तो दास्तान गोई और दास्तान नविश्तनी
1: हाँ
0: दो अलग अलग चीजें हैं. दास्तान गोई की जब रिवायत खत्म होने लगी, तो
1: तो
0: जब
1: नविश्तनी
0: नविश्तनी नविश्तन करने का वो सिलसिला फिर
1: नविश्ती
0: शुरू हो
1: शुरू।
0: गया.
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: नविश्ती
0: बिल्कुल.
1: शुरू। तो कुछ दास्तान गो जो कदीम दौर के हैं और कुछ अभी के, जिससे अपने नाम
0: जी
1: लिया, कुछ इन पे भी जैसे रोशनी डाली, जैसे मुल्ला वजी वगैरह थे, इन लोगों ने किस तरह की दास्तान गोई की और किस तरह आज का वो ये है
0: देखिए,
1: ट्रेंड है।
0: हम बेशक इनको कबूल करते हैं और आगे तक कबूल करेंगे, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना,
1: हाँ
0: इन्होंने ही दिया है. तो इनकी जो दास्तान लिखने की और कहने की जो रवायत रही है वो
1: हाँ
0: क्लासिक
1: जाहिर है
0: है,
1: कि उन्होंने
0: क्लासिक
1: शुरुआतें
0: है.
1: की है।
0: लेकिन मॉडर्न तरीके में हमने उसी चीज़ को अपना बेस और इख्तियार माना है, और उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं. तो दास्तान आ गया
1: दास्तान
0: ना
1: इस
0: वो
1: तरह
0: सारी
1: से,
0: चीज़ें में.
1: बल्कि उर्दू अदब में तो कई दास्तानें ऐसी हैं जैसे सबरंग वगैरह हैं या
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सारी
0: बिल्कुल
1: चीजें शहरी अंदाज में थे
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: नज़म के तौर पे थे और उसको बहुत अच्छे से पढ़े जाते थे और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये नस्र के अंदाज में लिखा जाए।
0: बिल्कुल
1: तो खैर
0: बिल्कुल
1: ये तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन आज के दौर में इसे कितना अपनाया जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि दास्तान गोई पहले से अब में काफी फर्क आया है, अब लोग दास्तान गोई की तरफ कम तवज्जो देते हैं।
0: बात तो सही है, क्योंकि अब खास करके प्रिंट हो गया है. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में दास्तान अब कोई भी लिख सकता है. हम जिस दानिशगाह में पढ़ाते हैं वहाँ हमने इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है,
1: अच्छा
0: कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है दास्तान पे. दास्तान तो बहुत अहम हिस्सा है पढ़ाने के लिए भी, 1000 लफ्ज़ में, अल्फाज में लिख करके लाएं.
1: बहुत अच्छे,
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बहुत अच्छा लगा जमशेद साहब आपसे बातचीत करके। दास्तान गोई को भी समझा हम लोगों ने और दास्तान गोई की रिवायत को आगे बढ़ाने का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, ये सब को भी हम चाहेंगे कि हम
0: बिल्कुल
1: लोग भी
0: बिल्कुल
1: अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और
0: बिल्कुल
1: हम लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि भाई दास्तान गोई का सिलसिला जारी रखें
0: जारी रखें. बिल्कुल
1: और मुताला करें, आप जैसे आपने
0: मुताला
1: कहा
0: करें,
1: कि बस
0: मुताला
1: गहराई से मुताला
0: मुताला
1: करें।
0: करें,
1: बहुत
0: मुताला
1: बहुत
0: बहुत अहम
1: शुक्रिया।
0: होता है.
1: और लेकिन आखिर में मैं चाहूंगी कि ये मुअम्मा है समझने
0: एक
1: का,
0: मुअम्मा
1: फिर
0: है
1: से आप
0: समझने
1: एक
0: का न
1: इस शेर को
0: समझाने,
1: बोल दें
0: एक
1: ताकि इस
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे
1: प्रोग्राम
0: सामईन
1: को
0: जो है,
1: इख्तिताम पज़ीर कर सकें।
0: एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का
1: दीवाने
0: है.
1: का बहुत शुक्रिया, बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया.
1: सज़रैन फातिमा को भी दीजिए इजाज़त।
2: सामीन, ये गुफ्तगू आप समाप्त फरमा रहे थे दास्तान गोई की रिवायत कदीम का हाल. यकीनन ये हमारी जो दास्तान गोई की रिवायत है वो अहद कदीम की एक खूबसूरत यादगार के बतौर है.

क्योंकि जिस ज़माने में लिखने पढ़ने का रिवाज बहुत ही कम था, उस ज़माने में भी लोगों की जो फ़िक्री और फ़नी खसूसियात थी वो इसके ज़रिए से बहुत ही बेहतर तरीके से उभर के सामने आती है। हम देखते हैं कि जिस ज़माने में इंसान बआसानी सफ़र नहीं कर सकता था, ज़िंदगी के गुजारने में उसको बेहतर बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती थी, यानी गर्ज़ के हर तरह की दुश्वारियों के बावजूद भी उसकी जो ज़हनी कैफियत थी उसमें हर तरह की चीज़ें शामिल थीं, और वो उन नज़रियात को भी पेश करता था जिसे वो देख करके महसूस करता था, और वो यकीनन हमारे आज के ज़माने के लिए बतौर मशाल राह हैं। इस दास्तान गोई में जो शुरका थे वो जमशेद आलम थे, और इनसे गुफ्तगू कर रही थी ज़रीन फातिमा। आइए अब इसके बाद हमारी अगली पेशकश सामीन

इस दास्तानगोई में जो शुरका थे वो जमशेद आलम थे, और इनसे गुफ्तगू कर रही थी ज़रीन फातिमा। आइए अब इसके बाद हमारी अगली पेशकश सामीन, मौसीकी का वक्त हुआ चाहता है। लीजिए आपके समातों के हवाले हम ये गज़ल कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।

सामिन हरिहरन की आवाज़ में इस गज़ल को आपने अभी समाप्त किया, और लीजिए अब पेश खिदमत है अगली गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़।

चित्रा सिंह को आप समाप्त कर रहे थे सामीन, और अब लीजिए अगली पेशकश में मुलाहिजा करिए दिलराज कौर की आवाज़ में इस गज़ल को।

आमीन। गुलाम अली की आवाज़ में आपने इस गज़ल को समाप्त किया, और लीजिए अब अगली गज़ल हम आपको जो सुनवा रहे हैं वो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में है। लीजिए मुलायजा हो।

सामीन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में पेश इसी गज़ल के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम हुआ। कल फिर हमारी मुलाकात होगी इसी वादे और इरादे के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अग्निपथ फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया सोनू निगम ने। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया अजय अतुल ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: Oh, lovely. Well done.
3: Business loan approved.
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार में तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया रूप कुमार राठौर ने। जयदीप सैनी के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया सलीम सुलेमान ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: इसी फिल्म के गाने के साथ रसमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज आप सुनिए डॉक्टर रंजना कुमारी झा से चंद्रमणि भारती की बातचीत।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। आज अपने स्टूडियो में हमने अतिथि के रूप में बुलाया है एक ऐसे कलाकार को जो शास्त्रीय संगीत में तो माहिर हैं ही और बिहार के लोक गीत में भी उतनी ही माहिर हैं और जानी मानी हस्ती हैं बिहार में। इन्होंने न केवल अनगिनत पुरस्कार जीते हैं बल्कि अनगिनत मंचों पर इन्होंने अपने स्वर से लोगों को सम्मोहित भी किया है। रंजना कुमारी झा मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस विशेष कार्यक्रम में इनसे मिलिए में।
2: जी नमस्कार, आपको प्रणाम और हमारे सारे सुधीर श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। और आपका प्यार आशीर्वाद हमें यहाँ तक लाया है, इसके लिए हमेशा आपके लिए हमारा ये सिर झुकता रहेगा।
1: जी, तो कार्यक्रम है हमारा इनसे मिलिए और आपसे हम रूबरू करवा रहे हैं श्रोताओं को, तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की, आपको प्यार कैसे हुआ संगीत की विधा से।
2: हमारा जन्म हुआ अररिया जिले में। मेरे पिता का नाम श्री भागवत मिश्र भी होगी, माँ का श्रीमती शांति मिश्रा। और हमारा ये संगीत विरासत में हमें मिला। मेरे मम्मी पापा दोनों गाते हैं और पूरा परिवार हमारा म्यूजिकल है। और प्यार तो क्या कहें कि रगों में बहता है म्यूजिक। और क्योंकि माँ ही गाती हैं और पापा ही गाते हैं तो हमारे दादाजी भी गाते थे, तबला भी बजाते थे, तो वहाँ से मिल गया। और हमारे नाना भी गाते थे तो दोनों, हमारा परिवार नाना और दादा दोनों तरफ गाना बजाना था और मम्मी पापा दोनों गाते थे। तो हमें कब कैसे मिला वो मुझे नहीं पता, पर मैं जब बड़ी हुई, हमको लगता है कि माँ कहती हैं कि मैं 3 साल की थी तब से गाने लगी हूँ।
1: जी, और हमने जहाँ तक आपके बारे में जानने की कोशिश की है,
2: जी जी
1: आप गाने में माहिर तो हैं ही, सिद्धहस्त हैं ही, आप तबला भी
2: अरे
1: वादन करते हैं।
2: देखिए क्या है कि तबला सीखना होता है। अगर संगीत को परिपक्व करना है तो ताल तो परिपक्व सबसे पहले करना होगा। सुर को सिखाया जा सकता है, लय तो वो शारीरिक पूरे अंदर की बात है। जो लय जानने के लिए तबला थोड़ा बजाना ही होता है, उतना बजाना भी चाहिए। क्योंकि संगीत जो पूरा पूरा होता है, संगीत का मतलब होता है गायन वादन नृत्य, तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। तो उन्होंने मुझे तीनों चीज सिखाया, शुरुआत में क्लासिकल डांस भी सिखाया, तबला भी सिखाया और गाना, तीनों साथ मेरा चल रहा था। तो संगीत क्या होता है, क्योंकि हमने तीनों साथ में सीखा है तो मुझे मालूम है कि वो संगीत तीनों का समावेश है। और गाना में अभिनय चाहिए, जब आप गाते हैं ना तो वहाँ अगर उस स्वभाव में नहीं आएंगे ना तो वो गाना वो जिंदा नहीं हो पाता है, उसमें प्राण नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए तीनों चीज सीखा है, तो तीनों की छोटी छोटी बातें जो हमें जान पाई उतना जान पाई हूँ जी।
1: और शायद यही कारण भी रहा है कि आप इतने उच्च स्तर के कलाकार बनी हैं। और श्रोताओं को हम बताएं कि जो हमारे समक्ष अभी सामने बैठी हुई हैं रंजना कुमारी झा, आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लोकगीत एवं भजन में उच्च श्रेणी के प्राप्त कलाकार हैं, ए ग्रेड कलाकार हैं
2: जी,
1: और
2: जी।
1: ठुमरी गीत एवं गजल में बी हाई प्राप्त कलाकार हैं। तो मैडम, आम लोग तो जैसे कि पारंपरिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं और आपने तो संगीत की विधा में मास्टर्स और PhD भी कर रखा है,
2: जी जी
1: तो क्या मतलब किस तरीके से आपको, आप मेरे विचार से तो आपने जिंदगी ही इसमें खपाने की ठान रखी है, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या बताएंगे जो संगीत की, खास करके शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में उतनी रुचि अभी तक नहीं रख पा रही है, उसको आप क्या बताएं?
2: देखिए क्या होता है कि आजकल इतने रियलिटी शोज आ गए हैं, बच्चे उसको देखकर, और उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चे ये कहते हैं कि हमने कहीं से सीखा नहीं, तो बच्चे और गार्जियंस भी वो सोचते हैं कि सीखना तो है नहीं, ऐसे ही गाने लगते हैं लोग। तो युवाओं को या बच्चों को या गार्जियन को, सबसे ज्यादा तो मैं अभिभावक को कहना चाहूंगी कि संगीत बड़ा अलग

0: विषय है, उसमें बड़ा गहराई से सीखने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। और शास्त्रीय संगीत क्या है, लोक संगीत, जैसे आपने कहा लोक संगीत तो संगीत की जननी है, और शास्त्रीय जो लोक संगीत की चीज़ों को भी हम जब जब रहा होगा शुरुआत संगीत की, तो शास्त्र पहले नहीं बना, पहले तो संगीत आया। तो संगीत वो कैसा संगीत था जो आदमी के मन से स्वस्फूर्त प्रवाहमय गीत संगीत था, जिसके कोई लिखित या कोई शास्त्रबद्ध नहीं थी, वो लोक संगीत ही तो था। लोक
1: यानी वेदना में जो
0: जो निकल गया, जो भाव निकल गया वो लोक संगीत है। तो उसी को शास्त्रबद्ध करके, बहुत सारे राग हैं अभी जो लोक संगीत से आया हुआ राग है। तो आपको बताएं कि वो लोक संगीत जानना इसलिए जरूरी है कि आप जो जी रहे हैं वो लोक संगीत है, जो हम रोज दिनचर्या हमारा है वो लोक संगीत है। और शास्त्रीय संगीत जो हम जीने में सुंदरता प्रदान करते जाते हैं उसको शास्त्रबद्ध कर दिए तो वो शास्त्रीय संगीत। और सुंदर बनाने के लिए जब कोई चीज़ को हम सीख रहे हैं और उसको नफीसी बनाना है तो उसके लिए शास्त्रीय संगीत ज़रूरत है।
1: जी, जी। मैंने अभी सुना आपके श्रीमुख से कि राग होते हैं लोक संगीत में भी, तो
0: बिना राग का तो कुछ है नहीं।
1: हाँ, जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के राग शास्त्रीय संगीत में सुनने को मिलते हैं कि ये सुबह का राग है, शाम का राग है।

0: राग जब बनाया होगा उस समय राग सोच के नहीं बनाया होगा, उस समय तो ईश्वर सुप्रत जो भी निकला होगा वो निकल गया होगा, लेकिन आज जब हमने उसको देखा कि ये इस राग में आ रहा है तो अब लगता है कि इस राग में था, है ना। बहुत सारे लोकगीत हैं जो हमारे रागों में है, तो उस समय पता नहीं होगा जब बना होगा,
1: और
0: अब वो
1: शास्त्रबद्ध
0: पता
1: जब करने
0: लगे तो
1: किया
0: पता
1: जाएगा
0: चला
1: तो
0: कि
1: फिर
0: इस राग में ये आ रहा है, इस राग में ये आ रहा है, इस राग में ये आ रहा है, ऐसे है। तो रागों का तो यही है कि
1: जी।
0: जब बना तो अब भी बन रहे, नए राग का निर्माण होता ही जा रहा है। जी
1: तो रंजना कुमारी झा संगीत की लगभग सभी विधाओं में सिद्धहस्त हैं, आप सभी तरह के गानों को गाती भी हैं। कौन सा आपको, किस प्रकार का संगीत आपको प्रिय लगता है? लोक भजन या फिर लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत की कौन सी विधा आपको पसंद आती है?
0: सर मैं बताऊं कि मुझे संगीत ही पसंद है, तो उसमें अब जो विधा आ जाए।
1: विशेष प्रिय कोई ना कोई तो
0: देखिए
1: हो।
0: विशेष तो मुझे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों पसंद है, और गजल गीत भजन जो भी, मतलब मैं कहती हूँ कि संगीत मुझे पसंद है, उसमें जो विधा आप डाल दीजिए। मुझे ऐसा नहीं कि मैं रैप पॉप भी नहीं सुनती हूँ, वो भी सुनती हूँ मैं, कि उसमें भी सुंदरता है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप खोजते क्या है इस पर निर्भर करता है, आप क्या सुनते हैं उस पर निर्भर करता है। कोई भी चीज खराब नहीं है, बशर्ते कि वो सुर में हो और सुंदर उसके शब्द हों।
1: जी, ये
0: शब्द का
1: होना
0: भी
1: जरूरी
0: सुंदरता
1: है।
0: होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो शब्द गलत होंगे, खराब होंगे, जो कि हमारे समाज को खराब करता होगा, हमारी पीढ़ी को खराब करेगी, वो शब्द ना सुनते हैं ना गाते हैं ना हम आसपास सुनने देते हैं किसी को, जो हमारे वश का चीज है उस उतना वहां तक। जी
1: अनुकरणीय बात
0: जी
1: है हमारे श्रोताओं के लिए भी। ये एक प्रश्न हम यहाँ पर यह पूछना चाहेंगे मैडम
0: जी
1: कि जो युवा अच्छे कलाकार अच्छे गायक बनना चाहते हैं
0: जी
1: उनमें कौन-कौन से गुण होने जरूरी हैं, क्या होना चाहिए, किस अनुशासन में उन्हें बंधा होना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी गायकी और बेहतर होते जा सके?
0: जी बहुत बहुत सुंदर सवाल है, और सबसे पहला उन्हें विनम्र होना चाहिए। एक कलाकार को विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुर उसी के लगते हैं जो विनम्रता से लगाता है, और सुर अंदर का मामला है, बाहर का नहीं है। जब कोई अंदर से सुर विनम्रता पूर्वक लगाएगा तो उसके सुर लगेंगे, मुझे लगता है। और बहुत सीखने की जरूरत है, हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में जीवन कटता है किसी भी अच्छे कलाकार का। हम नहीं कह सकते, आप कह रहे हैं सिद्धस्थ, सिद्धस्थ मैं पता नहीं इस जन्म हो पाऊंगी कि नहीं। हर रोज सीखना है, हर रोज अपने आप को सुंदर करना है, हम कितना कर पाए हैं वो आप बता सकते हैं, पर हमें लगता है कि हमें बहुत जरूरी है, अभी बहुत बाकी है। हर सीखने वाले जो भी नया सीख रहे हैं या पुराना सीख लिए हैं, उन्हें विनम्र होना चाहिए, अपने बुजुर्गों का, अपने से ऊपर जो भी हमसे बड़े कलाकार हैं छोटे कलाकार हैं सबका सम्मान करना चाहिए, और बहुत गहराई से सीखना चाहिए संगीत। और छोटी चीज नहीं है कि गा लिए 10-20 गाने तो हम कलाकार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, तो रहने वाले आप कोसी क्षेत्र के हैं,
0: जी
1: मिथिला
0: जी
1: क्षेत्र के हैं,
0: जी जी
1: तो स्वभावतः मैथिली में तो आप गाते ही हैं,
0: जी जरूर
1: भोजपुरी में भी आप अपना गायन
0: जरूर
1: करती हैं,
0: जी जरूर
1: और क्या फिल्मों के लिए भी आपने गाया
0: हाँ
1: है?
0: गाया है, फिल्मों के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए बहुत सारी फिल्मों में गाया, मैथिली फिल्मों में भी गाया, छोटे छोटे हिंदी टेलीफिल्मों में गाया, उसके बाद आपको सीरियल्स में गाया, हिंदी सीरियल जैसे सिया के राम, उसमें जो सीता की भूमिकाएं थी वो संजोगवश मेरी ही आवाज़ है, तो वो
1: बहुत अच्छी
0: गाती
1: बात है
0: रही हूँ। जी जी जी
1: जी। तो यहाँ पर हम यह भी ठहर कर पूछना चाहेंगे आपसे
0: जी
1: कि अभी तो आप फिल्मों में भी गा रहे हैं,
0: जी
1: मगर जब आप बचपन में थी, छोटी बच्ची थी, तब आपको क्या लगता था? चूंकि सामान्य तौर पर किसी भी गायक को, किसी भी कलाकार को फिल्मों से जुड़ने की इच्छा तो हमेशा होती है, आपके मन में कैसा था और जब ये ख्वाहिश पूरी हुई तब आपको कैसा लगा?
0: देखिए क्या है कि संगीत में अगर कोई आता है, अगर गायक है, तो उसे तो लगता है कि बड़े बड़े मंचों पे या कुछ वैसे जगह गाऊं जहां से हमें सब लोग जाने, सभी की ख्वाहिश होती है, और जब तक पूरी होती है ना तो उसके दिमाग और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसको फिर वो उतना खुशी नहीं होता है जितना वो समय सोचता रहता है कि मुझे भी मिलता तो ये खुशी मिलती, लेकिन जब मिल जाता है तो वो खुशी मिलती नहीं है,
1: ये परिपक्वता की भी निशानी कही जा
0: जो
1: सकती
0: जो
1: है
0: कहिए आप, लेकिन
1: जी।
0: मुझे लगता है कि जब वो सारी चीजें मिल जाती जिसकी हमें तलाश थी, तो हमें लगता है कि ये तो कुछ नहीं था,
1: जी
0: अब
1: जी
0: मुझे कुछ और मिलना है,
1: जी
0: वही है। लेकिन

0: असल में जो एक साधक कलाकार का है कि हम अच्छा गाएं, सुर में गाएं और वो गाना बहुत आनंदित करे हमें। और मुझे लगता है कि अगर मैं आनंदित हूं अपने गाने से तो आप जरूर होंगे।
1: जी, निश्चित तौर पर।
0: जी
1: और इसी के साथ रंजना कुमारी झा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर हम बताएं कि इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम कलाकारों या जो भी प्रसिद्ध रंगकर्मी या हमारे अतिथि जो भी आते हैं,
0: जी
1: उनसे हम उनकी पसंद का फिल्मी गाना भी सुनना की
0: अच्छा,
1: कोशिश करते हैं।
0: अरे वाह।
1: मगर इस बार हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी पसंद का हमारे
0: हाँ।
1: श्रोताओं को बताइए कि कौन सा लोक गायन या लोक गीत सुनाया जा सके, अथवा भजन अथवा फिल्म संगीत, जो भी आपको इच्छा है, हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का वो गाना सुनवाएंगे।
0: जरूर। और हम सबकी जो चहेती गायिका हैं पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी, उनकी कोई छठ के गीत सुनाइए। मुझे लगता है ये गीत बहुत, मैं 10-20 बार मेरे आंखों से आंसू वैसे निकले हैं मोती की तरह। और वो, या उसको हम दुख भी नहीं कह सकते और सुख भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या होता था।

0: श्रोताओं, अभी रंजना कुमारी झा की पसंद की गायिका शारदा सिन्हा का ये गीत हम सुन रहे थे। और आपको बताएं कि रंजना कुमारी झा न केवल बिहार में बहुत सारे सम्मानों को प्राप्त किया है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से सन 2020 में भी दिया गया। और बिहार में तो इन्होंने बिहार कला पुरस्कार, मिथिला विभूति सम्मान इत्यादि बहुत सारे सम्मानों को प्राप्त किया है। मैडम,
1: जी
0: आपने
1: जी जी
0: तो कैसा लगता है जब एक कलाकार सचमुच में जिसकी इच्छा वो रखता है वो मिलता है उसे तब?
1: मैंने पहले भी कहा कि जो साधक होते हैं वो हमेशा लगे रहते हैं कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, अपने आकाशवाणी में बैठी हूँ, और कभी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ। आज मुझे एक प्यार जो सम्मान मिला है उसके लिए बहुत आभारी हूँ आकाशवाणी के ये प्यार हम मुझे नहीं लगता कि करोड़ों लोगों को मिलता होगा। आज जो मुझे मिल रहा है, तो ऐसे ही साधकों को अपना प्यार बरसाएं, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंदित हूँ, अनुग्रहित हूँ, और खुशी का कोई ऐसा मतलब शब्दों में नहीं बोल सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है अपने आकाशवाणी में एक अतिथि के रूप में आई हूँ, जो मेरा घर है, ऐसा लगता है।
0: जी, तो संगीत की साधना न केवल आपने गा कर की है,
1: जी
0: मैंने जहाँ तक देखा है आपने पुस्तकें भी लिखी हैं
1: जी
0: संगीत
1: जी
0: पर।
1: जी जी
0: एक पुस्तक तो बहुत ही अच्छी है और प्रसिद्ध भी है, भारतीय संगीत के अभिन्न अंग,
1: जी
0: जिसमें आपने संगीत की विभिन्न विधाओं के बारे में चर्चा किया है। और दूसरी पुस्तक भी है संगीत, ध्यान एवं योग।
1: जी जी जी
0: तो क्या सोचकर आपने पुस्तकों की रचना की है, क्या सिखाना चाह रही हैं?
1: जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे जो विषय थे उस विषय के पुस्तक मुझे बहुत कम मिले, और मुझे ढूंढना बहुत पड़ा पर मिला बहुत कम। तो मुझे लगा कि ऐसा पुस्तक क्यों ना बनाया जाए कि जिसमें उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे पुस्तक हैं मार्केट में, पर उपशास्त्रीय और लोक संगीत सुगम संगीत के हिसाब से कोई पुस्तक नहीं है। और वैसे ही मौलिक रचनाएं जिसकी कंपोजिशंस, जैसे अगर हम कवियों की करें, गजलकारों की करें, भजन गीतकारों की करें, और खास करके विद्यापति गीतों की करें, तो उनकी स्वरलिपि बहुत मुश्किल से मिलती है। जो एकदम से आप निकाले किताब और निकालना शुरू करें हारमोनियम से, तो जैसे निकालेंगे वैसे बज जाएगा। तो वैसी पुस्तकों की बहुत अभाव है। तो मुझे लगा कि ये आना चाहिए। उसमें 80 कंपोजिशन हैं जो आपको उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत और विद्यापति संगीत, इन चारों विधाओं को लेकर हमने उसमें 80 कंपोजिशन डाले हैं, जिसमें आपको सुगम संगीत के उसके सारे कंपोजिशन मेरे खुद के किए हुए हैं, जो मैंने बनाए थे उसको मैंने स्वरलिपिबद्ध करके उसमें डाला है बुक में, जिसकी आपको कई महाविद्यालयों में चल रही है, मतलब उसमें बच्चे सीख रहे हैं,
0: कोर्स
1: उससे कोर्स में भी है, और उसको लोग गा रहे हैं, उसको सुन के या देख के गा रहे हैं।
0: जी, तो इस खालीपन को आपने भरा है।
1: कोशिश किया है बस।
0: जी
1: और
0: जी
1: दूसरी पुस्तक है संगीत, ध्यान एवं योग। ये इसलिए है कि संगीत अगर ध्यान से ना जुड़े तो वो सिर्फ मनोरंजन रह जाता है, और जब ध्यान से जुड़ जाता है तो वो आध्यात्म की ओर जाता है, और अब जिसको मनोभंजन कहते हैं, परमात्मा मिलने का एक मार्ग संगीत है, वो हम कैसे जाने। तो वो जानने के लिए जो एक कड़ी है वो ध्यान को जोड़ना पड़ता है संगीत में। आप देखेंगे कि ध्यान और संगीत करने वाले नशा का सेवन करने लगते हैं, और नशा का सेवन क्यों करने लगते हैं उसका बहुत सारा कारण है कि जब वो संगीत में होता है तो अपने आप को राजा महसूस करता है, वो करता ही होगा, करता ही है, मैं भी हूँ एक कलाकार। और जब नीचे उतरता है मंच से तो उन्हें लगता है कि वो एकदम से खाई में गिरता है, वो जो खाई में बीच का जो खालीपन है उसको भरने के लिए नशा का सेवन करते हैं लोग। तो अगर हम नशा म्यूजिक को बनाए हुए हैं तो वो सुंदर नशा है, हमने अगर ध्यान को नशा बनाए हुए वो सुंदर है, क्योंकि वो सुंदरतम रास्ते पे ले जाएगा। अगर हम दूसरा नशा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहीं खाई में ले जाके हमें छोड़ेगा। तो कलाकार, बहुत सारे कलाकार इस धरती पे बने और बिगड़ भी जाते हैं, वो कारण यही है कि वो

0: खाई को ध्यान से नहीं भरना जानते।
1: जी, और मेरे विचार से इस पुस्तक में संगीत, ध्यान एवं योग में आपने कितनी अच्छी तरीके से संगीत को ध्यान एवं योग के साथ
0: जी जी
1: एकाकार करते हुए
0: जी जी
1: परमात्मा मिलन
0: जी जी जी
1: के
0: जी
1: रूप में भी इसे रखा है
0: जी जी
1: हमारे श्रोताओं के समक्ष, जो पाठक हैं उनके
0: जी जी
1: समक्ष। दूसरी पुस्तक जो है भारतीय संगीत के अभिन्न अंग,
0: हाँ
1: तो संगीत की विभिन्न विधाओं के बारे में तो आपने इसने
0: लिखा
1: बताया ही
0: भी है।
1: है।
0: स्वरलिपि 80 कंपोजिशन उसमें स्वरलिपिबद्ध हैं,
1: जी
0: जिसको कोई भी छात्र छात्राएं उसको निकाल लेके उससे गाने निकाल सकते हैं और निकालेंगे और वैसा ही गाना वो बजेगा। अगर आप कोई भी गाना, जैसे जैसे आप, मैं एक गीत ही ले लूं जिसका मैं स्वरलिपि बोलती हूं, जैसे

0: जमाई, तो ऐसे ही स्वरलिपि लिखा हुआ इस पे।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात
0: उसको
1: है
0: अगर वैसा बजाया तो एकदम से गाने सेम बज जाएंगे उसमें,
1: जी।
0: कोशिश किया
1: आपने
0: है।
1: अभी बात की नचारी की,
0: जी जी
1: तो जब हम आकाशवाणी में नहीं थे
0: हाँ
1: उसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि चैती क्या होता है, पूर्वी क्या होता है, झूमर क्या होता है, नचारी क्या होता है।
0: जी जी जी जी
1: इसके बारे में छोटी छोटी पंक्तियों में हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि
0: हाँ
1: जो संगीत से नहीं जुड़े हुए हैं
0: हाँ
1: उन्हें भी इसका भान हो सके, अपनी लोक परंपरा को वो भी सूंघ सकें
0: जी
1: और उसका
0: जरूर
1: आनंद उठा सकें।
0: जी। जैसे आपने कहा चैती, तो चैत के महीने में गाए जाने वाला गीत को चैती कहते हैं, और ये दोनों विधाओं में, लोक संगीत में भी और उपशास्त्रीय संगीत में भी गाया जाता है। तो अगर लोक संगीत में गाते हैं तो उसके जो लय होते हैं, उसके थोड़े से बढ़े हुए लय होते हैं, उसी लय को कम करके उपशास्त्रीय संगीत में गाते हैं। मैं छोटी सी उदाहरण दूं आपको चैती का।

क्या किया हमने कि वो स्वास्थ्य था स्लो हुआ, इसमें गायकी दिख रही है, तो ये उपशास्त्रीय संगीत में। तो मैंने पहले भी कहा था कि लोक संगीत से लिया हुआ चीज बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रीय संगीत में है, उपशास्त्रीय संगीत में है, ठीक है। और दूसरी चीज पूर्वी कहा आपने, तो पूर्वी जो गाते हैं उसमें विरह वेदना रहता है। जैसे एक है महेंद्र मिश्र जी की रचना, बहुत ही सुंदर है,

0: था, ये पूर्वी हो गया। अब आगे आपने क्या पूछा है?
1: झूमर।
0: झूमर। तो झूम के गाने वाला गीत, थोड़ा झूम के, और ननद भौजाई का उसमें ठिठोली होता है, वो होता है, ननद और भौजाई आपस में बात करती हैं और उसमें थोड़ी सी चहक होती है गाने में।

0: தாக்கே டுக்குரு டுக்கு நாயே நன்னதி சுருமால காயபு கோனா। तो ये झूमर हो गया, थोड़ा चहक भी है और ये पारिवारिक परिवार में आपस में बातचीत है। जो हमने पहले भी कहा लोक संगीत, हम जो दिनचर्या जीते हैं वही रहता है। और आगे क्या था आपका?
1: एक नचारी भी है।
0: नचारी तो हमने गाया।
1: जी
0: नचारी में क्या है, लाचार होके जब भगवान शिव को आराधना करते हैं वो तो नचारी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जैसे शिव

0: ना। तो शिव से आराधना करते हैं तो वह नचारी होता है। जी
1: जी, तो निश्चित तौर पर आपने इतने सुंदर, आपकी आवाज़ है, आपका स्वर है, इससे सम्मोहित हुए होंगे हमारे श्रोता, और मेरे विचार से
0: जी
1: इस कारण से भी वो लोक संगीत में और रुचि रखेंगे,
0: आहा,
1: हमें ऐसा
0: नहीं,
1: लगता
0: ये
1: है।
0: तो बहुत प्यार है हमारे श्रोताओं का और हमारे गुरुजनों का, हमारे जो भी विद्वत जन है वो सबका प्यार है, आशीर्वाद है कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं। और जो भी आज इस फील्ड में आना चाहते हैं उन सबको, सभी का आशीर्वाद मिले, उसके लिए साधना करनी होती है। उस जगह पे अगर हम पहुंचते हैं तो हमें हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े हैं वो आशीर्वाद जरूर देते हैं कि तुम इस चीज को आगे बढ़ाओ। आज हमें आशीर्वाद मिला है तब हम आपके सामने बैठे हैं।
1: जी, निश्चित तौर पर। और गायकी में जैसा कि आपने कहा
0: जी
1: कि नए नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, तो नए बच्चों के लिए आज का जो डिजिटल युग है, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत सारे बच्चे तो उसमें बस खाली लिरिक्स डाल देते हैं, उसमें गीत के बोल डाल देते हैं और वहाँ से आवाज़ निकलवा देते हैं, या फिर
0: देखिए देखिए
1: मिला
0: सर,
1: करके मिक्सिंग भी
0: देखिए
1: करते
0: सर,
1: हैं।
0: ये
1: तो
0: सब सब होगा क्योंकि विज्ञान इतना बड़ा है तो कुछ भी होगा। पर जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये हम ही बात करेंगे,
1: जी
0: ठीक है?
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: ये जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। एआई कितना भी आ जाए दुनिया में, जो ओरिजिनल होगा वही होगा। जब हम लाइव परफॉर्मेंस देंगे वहां पे एआई काम नहीं करेगा, वहां पे हम जो हमारी साधना दिखेगी और हम दिखेंगे। और हम अपने आने वाली पीढ़ी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संगीत सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, अच्छे गुरु के शरण में सीखो, अच्छे गीतों को सीखो, अच्छे गीतों को गाओ, अच्छे गीतों को सुनो और हमारे सुंदर सुंदर वैसे आयामों को सामने लाओ जिसके कारण समाज हमारा सुंदर हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, हर चीज हमारा बचे जो सुंदर है।
1: जी, तो यहाँ पर फिर से हम जाते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुनिया में,
0: जी
1: और
0: जी
1: हम पूछना चाहेंगे कि इस दुनिया में, आज के ज़माने में, जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो सही मन से गाने की सोच रहे हैं, सही विधा से गाने की सोच रहे हैं
0: जी
1: अनुशासन
0: जी
1: पूर्वक, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं?
0: पहली चुनौती है कि आपको उतने मंच नहीं मिलेंगे जितने उनको मिलते हैं जो आजकल के हिसाब से चलते हैं। आप अगर साधनारत हैं तो आपको हो सकता है कि नमक रोटी खा के जीना पड़े, लेकिन आपको जीना चाहिए। अगर स्वर्ण अक्षर में अपना नाम लिखाना चाहते हैं इतिहास में तो आपको नमक रोटी खा के जीना होगा, जैसे तैसे थोड़ा बहुत कम में जियो, पर अपना कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार रखने के लिए सादा जीवन रखना पड़ेगा तो उच्च विचार हो पाएगा और आपकी साधना दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि लोग आंख बुन के बैठे हुए हैं, सबको दिखता है कौन क्या कर रहा है और उसकी सही समय पे सही उसका जो किया धरा है फल प्रतिफल मिलता है, मानदेय मिलता है। आप बस लगे रहें अपनी साधना में और बस आप विनम्रता पूर्वक लगे रहें।
1: जी बिल्कुल। तो आज
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आपने सुना डॉक्टर रंजना कुमारी झा से चंद्रमणि भारती की बातचीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो।

0: हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में इस गाने को हमने लिया फिल्म ये जवानी है दीवानी से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया प्रीतम ने।

0: योद्धा फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने। कुणाल वर्मा के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया तनिष्क बच्ची ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सूर्यवंशी फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया कौशिक, गुड्डू और आकाश ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला प्रसारण।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय 12:05 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मगही भाषा के लोकगीत। सबसे पहले सुनिए उमाकांत बरुआ के गाए कुछ लोकगीत।

0: अभी आपने बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में उमाकांत बरुआ के गाए लोक गीतों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में एक अंतराल देंगे और उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

0: Ma io l'ho anche caricato, non ha ricevuto.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय 12:30 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन,
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
10: आरबीआई कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
12: नारी जगत सुनने वाली सभी प्यारी सखी को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैंने भारत माता के केवल एक नाम नहीं बल्कि हमारे देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना है। हम भारत को माता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह हमें जीवन, पहचान, संस्कृति और संस्कार देती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही भारत माता हमें अन्न, जल, हवा और रहने के लिए धरती देती है। इसकी नदियाँ, पर्वत, जंगल और खेत हमारे जीवन का आधार है। बात करें एशिया की बहनों, तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। भारत इसी एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एशिया अपनी विविधता, प्राचीन सभ्यताओं और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत, चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका, अरब, थाईलैंड जैसे अनेक देश हैं। भारत और एशिया का संबंध बहुत ही गहरा और मजबूत है बहनों। सबसे पहले भौगोलिक संबंध की बात करें तो भारत एशिया का हिस्सा है। हिमालय पर्वत, नदियाँ और समुद्र भारत को एशिया के अन्य देशों से जोड़ते हैं। व्यापार, यात्रा और संपर्क के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो ये भी बहुत मजबूत है। भारत की संस्कृति, परंपराएं, योग, आयुर्वेद और दर्शन पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का प्रभाव कई एशियाई देशों जैसे कि नेपाल, थाईलैंड और जापान में देखा जाता है। इससे आपसी जुड़ाव भी बढ़ता है। बहनों, भारत एशिया के कई देशों के साथ व्यापार करता है। वस्तुओं का आदान प्रदान, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग होता है, जिससे सभी देशों का विकास भी होता है। भारत एशिया के देशों के साथ शांति, सुरक्षा और विकास के लिए

अभी आपने डॉक्टर लक्ष्मी पासवान के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, एक अंतराल के बाद सुनेंगे

मिलकर काम करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और एशियाई देश एक दूसरे के सहयोग करते हैं। बहनों, भारत और एशिया का संबंध बहुत गहरा और बहुआयामी है। हमें इस संबंध को और मजबूत बनाकर शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आइए बहनों, अब सुनते एक देशभक्ति गीत।

0: बहनों, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हर क्षेत्र अपनी विशेष कला, हस्तशिल्प, खान पान और उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय उत्पाद खरीदने से हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। बहनों, स्थानीय उत्पाद वे वस्तुएं होती है जो हमारे आसपास के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि हस्तशिल्प, घरेलू सामान, स्थानीय खाद्य पदार्थ और कपड़े। बहनों, स्थानीय उत्पाद खरीदने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों को आर्थिक सहायता मिलती है। हमारे देश में बहुत से लोग अपने हुनर और मेहनत से वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाता। जब हम उनके उत्पाद खरीदते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली आती है और उनके आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। स्थानीय उत्पाद खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जब हम अपने देश में बने सामान का उपयोग करते हैं तो पैसा देश के अंदर ही रहता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान भी चलाया गया है। बहनों, स्थानीय उत्पाद अक्सर गुणवत्ता में अच्छे और उपयोगी भी होते हैं। जैसे स्थानीय किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां, फल और अनाज ताजे और पौष्टिक होते हैं। इसी तरह से हाथ से बने कपड़े, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुएं हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है। इन्हें खरीदने से हमारी कला और परंपराएं सुरक्षित भी रहती है। बहनों, हम बड़े बाजारों के साथ साथ स्थानीय दुकानों और छोटे व्यापारियों से भी सामान खरीदना चाहिए। त्योहारों, मेलों और हाट बाजारों में स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे कारीगरों का उत्साह भी बढ़ता है। बहनों, अभी जैसे गर्मी का मौसम में आप घड़ा, मटका या सुराही या स्थानीय उत्पाद खरीदें जो पानी को ठंडा रखता है और इससे पीने से भी पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है और पारंपरिक हस्तशिल्प सुरक्षित रहता है। बहनों, इनका उपयोग हमें अपने जड़ों से जोड़ता है। स्थानीय उत्पाद खरीदना केवल खरीदारी करना नहीं, बल्कि देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी है। इससे रोजगार बढ़ता है, संस्कृति बचती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और देश आत्मनिर्भर बनता है। इसलिए हमें हमेशा स्थानीय उत्पादों को अपनाना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। और आइए बहनों, अब सुनते हैं वार्ता। विषय है जैव विविधता और मानव कल्याण। वार्ताकार है रश्मि कुमारी।
1: जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। यह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को समृद्ध बनाती है, बल्कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधनों का भी स्रोत है। मानव का संपूर्ण अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता पर निर्भर करता है। मानव स्वास्थ्य जैव विविधता की नींव पर बना है। जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षित करके प्रमुख स्वास्थ्य लाभ ला सकता है, जो जैव विविधता मानवता को प्रदान करती है। जैव विविधता हमारे ग्रह की जीवन सहायक प्रणाली है। हम भोजन, ऊर्जा, दवा, ताजे पानी और मिट्टी की शुद्ध

कीट नियंत्रण, अपशिष्ट को नष्ट करने और कई अन्य चीजों के लिए इस पर निर्भर हैं। इसके बिना पर्यावरण हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान नहीं कर सकता। जैव विविधता को संक्षेप में जैविक विविधता कहा जाता है। यह जीवित प्रजातियों की संख्या, विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि वे समय के साथ और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे बदलते हैं। जैव विविधता सभी पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण है। यह न केवल राष्ट्रीय उद्यानों या प्रकृति के संरक्षण जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में, बल्कि खेतों और बगानों के साथ साथ शहरी पार्कों जैसे प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्रों में भी अहम है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियाँ पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हुए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे वायु और जल को शुद्ध करना, परागण और जलवायु को नियंत्रित करना, औषधियों का उत्पादन, कृषि के लिए परागण करने वाले कीट, मछलियों और अन्य खाद्य स्रोतों की उपलब्धता आदि सभी का मूल स्रोत यही विविधता है। यदि जैव विविधता नष्ट होती है तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। खाद्य संकट, रोगों का प्रकोप और पर्यावरणीय असंतुलन इसके परिणाम हैं। जैव विविधता हमारे जीवन के लगभग हर पहलू के लिए आवश्यक है। यह कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कुछ व्यावहारिक है तो कुछ व्यक्तिगत। हम जैव विविधता को उसके सामाजिक लाभ और उसके आंतरिक मूल्य दोनों के लिए महत्व देते हैं। भोजन, ईंधन, आश्रय और दवा सभी उपयोगितावादी लाभ हैं जो हम लोग जैव विविधता से प्राप्त करते हैं। परागण, बीज फैलाव, जलवायु विनियमन, जल शोधन, कीट नियंत्रण सभी पारिस्थितिक तंत्र द्वारा की जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं। हम मनुष्य कई कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं, जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी शामिल है। हमारा समाज अधिक संधारणीय विकास पथ की ओर बढ़ना चाहता है, इसलिए जैव विविधता और मानव कल्याण यानी स्वास्थ्य, धन, सुरक्षा और अन्य आयाम के बीच संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। जैव विविधता केवल विभिन्न प्रकार के जीवों की गिनती मात्र नहीं है, बल्कि यह उन जीवों के बीच परस्पर क्रिया, उनका विकास और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य को स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु संतुलन प्रदान करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। हमारा सबसे बुनियादी अधिकार स्वस्थ रहना है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है व्यापक सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कल्याण, न कि सिर्फ बीमारी से मुक्ति। स्वस्थ रहना और अपने परिवार या समुदाय के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता होना कई कारणों से निर्धारित है, जिसमें हमारा पर्यावरण भी शामिल है। मानव कल्याण और मानव स्वास्थ्य जैव विविधता की नींव पर बना है। जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षित करके प्रमुख स्वास्थ्य लाभ ला सकता है, जो जैव विविधता मानवता को प्रदान करती है। कोई भी मानव आबादी एक स्वस्थ वैश्विक पर्यावरण के बिना पनप नहीं सकती। मानव कल्याण में जैव विविधता की स्वास्थ्य और औषधि संबंधी भूमिका इसी से परिलक्षित होती है कि दुनिया की लगभग 80% जनसंख्या आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पौधों पर आधारित दवाओं पर निर्भर है, जैसे नीम, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा आदि अनेक औषधीय पौधे मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त अनेक दवाएं भी जैव विविधता से प्राप्त यौगिकों से बनती हैं। भोजन और पोषण सुरक्षा संबंधी महत्व के रूप में भी जैव विविधता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जैव विविधता की विविधता विभिन्न प्रकार के अनाज, फल,
सब्जियां, जड़ी बूटियां और पशु

0: उत्पाद हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। विविध आहार न केवल भोजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं, बल्कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। जैव विविधता से आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त होती है, जो मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी है। जैव विविधता आधारित उद्योग जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, औषधि उद्योग और पर्यटन मानव समाज को रोजगार और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक पर्यटन अर्थात इको टूरिज्म जैसे क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। संस्कृति और परंपराएं भी जैव विविधता द्वारा मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत जैसे हमारे देश में जैव विविधता सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग है। विभिन्न पौधे और जानवर देवी देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे पीपल, तुलसी और केले के पौधों की पूजा, नाग पंचमी पर सर्प की पूजा आदि इसके उदाहरण हैं। विविध पारिस्थितिक तंत्र, कार्बन अवशोषण, जल चक्र विनियमन और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। जैव विविधता के क्षरण के कई कारण हैं, जैसे वनों की कटाई और भूमि क्षरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अत्यधिक दोहन यानी अंधाधुंध शिकार, मत्स्य और वृक्षों की कटाई आदि, जिससे जैव विविधता नष्ट होती है और पारिस्थितिक तंत्र भी असंतुलित हो जाते हैं। हमें जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। यह हम मनुष्यों के लिए आवश्यक भी है और कल्याणकारी भी। इसके लिए हमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाने होंगे। 2002 जैव विविधता अधिनियम जैसे कानून बनाना होगा। प्रचार, शिक्षा तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं वैश्विक प्रयास, उदाहरणतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित करना आदि प्रयास करना होगा। हमारे देश भारत ने भी राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, राष्ट्रीय हरित कोष जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। गंगा सफाई अभियान, वन महोत्सव, पोलिनेटर गार्डन जैसी पहलों का उद्देश्य जैव विविधता को पुनर्स्थापित करता है। जैव विविधता केवल प्रकृति की शोभा नहीं है, बल्कि मानव जीवन का आधार है। यदि हम जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे, तो न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संकट गहरा होगा, बल्कि मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। अब समय आ गया है कि हम जैव विविधता के संरक्षण को अपना नैतिक और सामाजिक कर्तव्य समझें। सतत विकास की दिशा में अग्रसर होकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनिश्चित, सुरक्षित, समृद्ध और सुंदर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए बहनों, हम सभी जैव विविधता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जो हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी और उपयोगी भी है।
1: मैंने अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था जैव विविधता और मानव कल्याण। वार्ताकार थी रश्मि कुमारी। मैंने हमें अपने जीवन में योग और ध्यान को अपनाना चाहिए। योग ध्यान स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है। आज की भागदौड़ दुनिया में योग का महत्व, जिंदगी में योग और ध्यान बहुत जरूरी हो गया है। ये हमारे तन मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। मैनो हम सब जानते हैं कि योग प्राचीन भारत की अमूल्य देन है। योग का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का मेल। नियमित योग करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ और लचीला बनता है। इससे पाचन भी ठीक रहता है और थकान भी दूर होती है और कई रोगों से बचाव भी होता है। योग हमें अनुशासन और संयम भी सिखाता है। वहीं ध्यान करने से मन को शांत और एकाग्रता भी करता है। ध्यान करने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहनों, योग

और ध्यान से केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये हमें सकारात्मक सोचने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। सुबह की ताजी हवा में योग और ध्यान करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। आपको पता है कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। यह योग के महत्व को दर्शाता है। आज बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी योग और ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि योग और ध्यान स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन का आधार है। अब आप बहनों आपको बताते हैं माहवारी के बारे में। माहवारी हर किशोरी और महिला के जीवन में की एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन भारत में आज भी यह विषय चुप्पी और रूढ़ियों से घिरा हुआ है, जो लड़कियों और महिलाओं में शर्म और झिझक का कारण बनता है। बहनों, मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का मसला नहीं, ये गरिमा, शिक्षा और समानता का भी सवाल है। जागरूकता की कमी, पुरानी रूढ़ियाँ, स्वच्छ उत्पादों तक सीमित पहुँच और अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं की वजह से खराब मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, लड़कियों की स्कूल हाजिरी, सेहत और सामाजिक भागीदारी पर बुरा असर डालती है। किशोरियों को सही जानकारी और सुरक्षित तरीके मिले तो उनका आत्मविश्वास और पढ़ाई दोनों बेहतर होती है। बहनों, भारत की किशोरियां पहली बार महामारी के समय सबसे ज़्यादा कमजोर होती हैं। उन्हें सुरक्षित माहौल, सहयोगी परिवार और संवेदनशील स्कूल की ज़रूरत होती है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ महामारी को संभाल सकें। एमएम को केवल स्कूलों तक सीमित रखना काफ़ी नहीं, इसलिए इसके लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। समुदायों, परिवारों, संस्थाओं को मिलकर महामारी पर खुली बातचीत को सामान्य बनाना होगा। स्वच्छ उत्पादों और सुविधाओं तक सुनिश्चित करनी होगी और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लड़कियां और महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। इसके लिए बिहार में कुछ कदम उठाए गए हैं। बिहार सरकार ने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि कोई भी लड़की महामारी के कारण स्कूल ना छोड़े। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कूली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता अनुदान को 150 रुपये से बढ़ाकर 300 प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जिससे वे बेहतर तरीके से माहवारी का प्रबंधन कर सके। कम कीमत पर सैनिटरी नैपकिन जन औषधि केंद्रों और चुनिंदा जिलों में जीविका समूह के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने MHM पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी शुरू किया है और कई स्कूलों ने जरूरतमंद छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए पैड बैंक की अभिनव पहल अपनाई है। बिहार अभी एक अहम मोड़ पर खड़ा है, बदलाव दिख रहा है, लेकिन तीन कारणों से त्वरित और सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। सरकारी प्रयासों के समुदाय के साथ की दरकार है। योजनाएं और आपूर्ति तभी कारगर होगी जब समुदाय का सक्रिय सहयोग हो, ताकि हर लड़की तक उत्पाद, सुरक्षित शौचालय और उचित निपटान सुविधाएं पहुंच सके। दूसरा है 226 के कानूनी मील के पत्थर। संवैधानिक अधिकार डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MHM को एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, जिससे ये सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बन गया है। कचरा प्रबंधन नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू नए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत मासिक धर्म उत्पादों को सैनिटरी कचरे की श्रेणी में रखा गया है और संस्थाओं, स्कूलों के लिए गरिमापूर्ण निपटान व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। संस्थागत जिम्मेदारी मासिक धर्म स्वच्छता का प्रबंधन अब पूरे राज्य में एक कानूनी और संस्थागत दायित्व है। तो ये तो बिहार सरकार के कदम है बहनों, और हम सभी बहनों और लड़कियों को स्वच्छता पर मासिक धर्म के समय सावधानी रखें और स्वच्छता अपनाएं। और बहनों, अभी मौसम है शादियों का, अभी बहुत से घर में बेटा बेटी की शादियों की तैयारी भी चल रही होगी। वैसे भी शादी हो या पार्टी, तैयारियां तो बहुत करनी पड़ती हैं। बर्थडे पार्टी हो या शादी का सालगिरह की पार्टी, इसमें इंजॉय तो बहुत करते हैं और

0: परिवार के लोगों से मिलना भी हो जाता है और सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खूब मज़ा भी आता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी तैयारी भी सोच समझ कर करनी पड़ती है, क्योंकि एक यादगार कार्यक्रम के लिए अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बहनों, इसमें बजट बनाना, उसे तय करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। दिखावे के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना सही नहीं है। सादा और सुंदर आयोजन भी उतना ही अच्छा होता है। इसके बाद तारीख और स्थान का चयन सोच समझ कर कीजिए। स्थान ऐसी जगह हो जहाँ मेहमानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, जैसे कि बैठने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो, या मौसम का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि कार्यक्रम आरामदायक रहे। फिर मेहमानों की सूची बनाइए और उन्हें समय पर निमंत्रण दीजिए। आजकल तो कार्ड के साथ साथ फ़ोन या मैसेज से भी बुलावा दिया जा सकता है। खाने पीने की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेनू ऐसा रखें जो सभी को पसंद है और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। मेनू सजावट से माहौल सुंदर बनता है। फूल, लाइट, रंगीन पर्दे या थीम के अनुसार सजावट की जा सकती है। कपड़े और ज़रूरी सामान पहले से भी तैयार रखें ताकि आखिरी समय में परेशानी ना हो। और संगीत और मनोरंजन के बिना तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती, है ना बहनों? तो इसका भी ध्यान रखिए ताकि मेहमानों को मन लगा रहे और माहौल खुशहाल बना रहे। सबसे ज़रूरी बात समय का सही प्रबंधन और टीम वर्क है। परिवार के लोग मिलकर काम करें तो तैयारी आसान हो जाती है। तो बहनों, अच्छी योजना, साफ सफाई और मिलजुल कर काम करने से शादी या पार्टी सफल और यादगार और आनंददायक बनती है। तो बहनों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो अब दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, श्रोता भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

0: उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। एक अंतराल के बाद सुनेंगे कार्यक्रम अक्षयवट।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कार्यक्रम अक्षयवट में सुनिए बुजुर्ग और सोशल मीडिया विषय पर डॉक्टर बिंदा सिंह से अलका प्रदर्शनी की बातचीत।
3: आज हमारे साथ हैं जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह। इनसे हम बात करेंगे बुजुर्ग और सोशल मीडिया विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं आज के जो भाग दौड़ का जीवन है उसमें कई बार बुजुर्ग परिवार रहते हुए भी खुद को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि सभी परिवारजन अपने अपने काम में, पढ़ाई में निकल जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का उपयोग उन्हें मनोरंजन भी देता है, ज्ञान भी देता है और वक्त काटने का एक जरिया भी बन गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी बिंदा जी?
4: सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। अलका जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आज के समय में बुजुर्ग जो है अपने ही घर में उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए किसी के पास समय नहीं है, और ऐसे में सोशल मीडिया का आना उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। सच पूछिए तो जो आज के 60s में हैं या 60s 70s के इसके हैं, उन्होंने 80 के पहले सोशल मीडिया को कभी टच भी नहीं किया था, तो उनके लिए जो सोशल मीडिया है बस एक टीनेज जो नया चीज़ देखता है उसी तरह उनके लिए है। उसमें वो गलत चीज़ों को भी उसी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, बात आपने बहुत बड़ी कही कि अकेलापन के लिए एक माध्यम जरूर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीनेज या आपके एडल्ट जो 35 के हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा उन्हें गाइड करना होगा।

0: कि हमने कहा ना कि उन एक बच्चे के हाथ में अगर आप एक हवाई जहाज चलाने के लिए दे दीजिए रिमोट, तो समझ में नहीं आएगा, वो बस चलाता रहेगा। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, चूंकि उन्होंने देखा नहीं, 80s के पहले तो उन्होंने रेडियो में गाना सुना, अचानक सोशल मीडिया उनके हाथ में आया और समझ नहीं पाए और बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा भटकाव भी हुआ और थोड़ा खुद को व्यस्त भी करें, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ी यंगस्टर की भी हो जाती है, फैमिली मेंबर की, कि आपके बुजुर्ग अकेलेपन से अगर परेशान हैं तो ठीक है, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, पर कैसे उसको टैकल करना है उसकी जानकारी भी उन्हें देना है। और आजकल हमने एक चीज़ और देखा कि बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं, कि अरे कभी कभी डांटते भी है कि अरे आपको किसी ने माना मांगा और ये बैंक ने मांगा और आपने जवाब दे दिया, अरे आप बताओ उन्होंने कितना जाना है। और आज मान लो छोटे बच्चे की बात करें तो पैदा ही हुए हैं इंटरनेट के ज़माने में, आप उनका देखिएगा, डायपर चेंज करना है या ना है, लेकिन वो सारे वो गूगल पे और इस पे खोज लेंगे कि कहाँ कार्टून चल रहा है, कौन से कहानी सुनने हैं। तो ये चीज़ें बच्चे सीख लिए हैं, लेकिन हम उस ज़माने के जो 62 के 70 के थे, उनके पास इन चीज़ों की अज्ञानता थी।
1: जी, सोशल मीडिया पर आनंद के भी पल आते हैं और कभी कभी बुजुर्ग, जैसा कि आपने कहा, कि ठगी के भी शिकार हो सकते
0: जी
1: हैं। कोई बैंक वाला बनकर, तो कोई बिजली काटने की धमकी देकर, बिजली विभाग का प्रतिनिधि बनकर बुजुर्गों से कभी बैंक का OTP मांग ले सकता है, या सोशल मीडिया पर उनकी अंतरंग जानकारी ले सकता है। तो बुजुर्ग इससे बचने के लिए क्या करें? क्या वो परिवार से इसे साझा करें? और इस मामले में परिवारजनों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, क्योंकि हम बुजुर्गों को कम से कम बैठ के इतना तो बता सकते हैं कि हाँ आज का जैसे पहले के लोग जो होते थे, सच पूछिए तो रियल वर्ल्ड के उनके मित्र बहुत होते हैं। आज जो यंगस्टर हैं उनको अगर आप खोजिएगा तो आपको रियल में दो भी दोस्त नहीं है, लेकिन पूरे आपके इंटरनेट पर भरे हुए हैं उनके फ्रेंड्स।
1: जी
0: लेकिन वो पुराने ज़माने में चूंकि दोस्त इतने रहते थे और वो बहुत ही लोगों पे विश्वास करते थे, तो जब इस मीडिया में आए और लोगों ने उनको चीट किया, तो शायद उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि लोग चीटर भी हो सकते हैं। तो जब ये नहीं समझ पाए, इतने इनोसेंट थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे यंगस्टर की, हमारे फैमिली मेंबर की, बेटी की, बहू की, बेटे की, और यहाँ तक कि पोता पोती के भी, कि कम से कम बताए कि हाँ कैसे आपको यूज़ करना है। और बुजुर्गों के लिए सच पूछिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक से आए दिन आप घटनाएं देख रही हैं कि लोग बुद्धू बना देते हैं, OPT मांग लेते हैं, तो कभी बैंक के बारे में कि आपका इतना अकाउंट आया है, आप इतना जमा कीजिए, इतना ले जाइए, उनको लगता है कि अचानक मिला हुआ पैसा क्यों छोड़े, चलो बात करते हैं, क्यों, इतने इनोसेंट होते हैं, उन्होंने दुनिया का वो चालाकीपन नहीं देखा था रियल लाइफ में। और ये जो हमारा जो इंटरनेट वर्ल्ड है, एक्चुअली फेक वर्ल्ड है, आप भी जानती हैं, तो इसमें उनको उतनी समझ नहीं होती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने शुरू से कहा कि यंगस्टर को देनी है, घर में अपने बुजुर्गों को बैठाना है, बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप इस्तेमाल कीजिए, मान लो कोई बुजुर्ग रिटायर हो गए हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये सब जानकारी कौन देगा, उनको तो खुद पता ही नहीं है कि टैकल कैसे करना है। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हमने तो बच्चों के बारे में कहा कि वो तो बदमाशी ही सीखा, पर हम लोगों ने तो सीखा ही नहीं। तो अब हमें इन बुजुर्गों को सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें सही गाइडलाइन देने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब बिना इरिटेट हुए, बिना उनको झिकझोड़े, बिना उनके ईगो को हर्ट किए, हम बुजुर्गों के साथ बैठ के उनको बताएं कि सोशल मीडिया क्या है और आप किस तरह इसका सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, बहुत सही कहा आपने। परिवारजनों की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों को इस विषय में सतर्क करें। और बुजुर्ग भी जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक सही दृष्टिकोण लेकर जाएं, इस बात को समझें कि हर चीज़ का अच्छा और बुरा पक्ष हो सकता है। कोई भी उनकी दुविधा हो, कहीं भी उनको लगे कि उनसे गलत बातें की जा रही हैं, तो तुरंत अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से साझा करें और जानकारी लें। क्योंकि इन सब बातों के विषय में टीवी पर, अखबारों में और रेडियो पर भी हम बताते रहते हैं, तो बुजुर्गों को भी एक बार ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हम सतर्क रहें और किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से बचें। एक बात ये भी है डॉक्टर बिंदा सिंह कि उम्र के साथ अगर बुजुर्ग चलने फिरने से कभी कभी लाचार हो जाते हैं, आंखें अगर कमजोर हो गई, आंखों की बीमारी हो गई या कुछ घुटनों में तकलीफ हो गई, तो बहुत ज्यादा वो मित्रों से नहीं मिल सकते। ऐसे में सोशल मीडिया उनका सहारा बनता है कि वो 10 लोगों से बात कर सकते हैं, समाज से जुड़ भी सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सामाजिक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं।

0: यानी अपना दायरा बढ़ा
1: जी
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये जो अच्छे काम किए जा सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, इनके विषय में कुछ बताएं कि बुजुर्ग इनसे कैसे आनंद उठा सकते हैं, कैसी रफ्तार रखें सोशल मीडिया पर
1: हाँ
0: अपनी।
1: जी अलका जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि किसी भी चीज़ का प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। किसी चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करना किसी के लिए भी घातक होता है, चाहे वो यंगस्ट हो या बुजुर्ग हो। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे अपने आप को एंगेज करते हैं, आप व्हाट्सएप पे अपने पोता पोती से बात कर लेते हैं, अच्छा फील होता है, आपके पुराने मित्रों को खोज लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी उतना ही करें कि आपके सेहत पर इसका बुरा ना असर पड़े। क्योंकि आप अपना जो दिनचर्या है, आप टहलते थे, आप टहलिए, आप मंदिर जाते थे, जब तक शरीर चल रहा है कोशिश करिए, अखबार पढ़ते थे, अखबार को मत छोड़िए, क्योंकि आपके पढ़ने की आदत भी बनी रहेगी, लोगों से कटेंगे नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अगर एडिक्शन में आ जाते हैं, अगर एक ही चीज को देखते हैं, तो जो गूगल भी होता है आपको वही चीज प्रोवाइड करता है जो आप चाहते हैं। तो आप जिन चीजों को आपने डाला वही आता रहा, आप उसी में इन्वॉल्व हो गए, आप एक तरह से एडिक्शन में चले गए। तो थोड़ा बुजुर्गों को भी ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया ठीक है, आपके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज की अति जो होती है वो बुरी होती है। थोड़ा परिवार के साथ बात करें, थोड़ा बच्चों के साथ खेलें, कहानियां सुनाएं, अगर आपने सोशल मीडिया से कुछ अच्छी बातें सीखी तो छोटे छोटे बच्चों को बताएं, तो ये क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी और सोशल मीडिया का आप आनंद भी लेंगे और अपने अंदर के क्वालिटी को भी आप निखार सकते हैं। अच्छी अच्छी जो चीजें होती हैं, आप मान लो डॉक्टर से रिटायर हो गए हैं, आप मान लो प्रोफेसर से रिटायर हो गए, तो आप एक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और आप देखेंगे ना कि आपकी स्फूर्ति और बढ़ जाती है, उम्र भी बढ़ जाती है और जोश भी आ जाता है। क्योंकि जब इंसान, देखिए ओल्ड एज एक बहुत बड़ी चीज है कि वो रिकॉग्नाइज होना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे पूछे, उसको रिस्पेक्ट हो, लोग के बीच में वो अपना एक मान सम्मान बना के रखे। और जब सोशल मीडिया पर उसे लोग पूछने लगते हैं, बच्चे उसके मतलब जो बातें होती हैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो उसके अंदर एक बल आता है और स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा भी उतना ही है कि अगर आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपके मेंटल हेल्थ को स्टोर बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, तो ज़्यादा एडिक्शन भी आपको ओल्ड एज सेनाइल में ले जा सकता है, बीमार बना सकता है, आंख पे असर कर सकता है, बॉडी कमजोर हो सकती है। इसलिए दोनों मिला के चलें, सोशल मीडिया का भी मिसयूज नहीं होगा और आपके लाइफस्टाइल में भी एक पॉजिटिविटी आएगी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस चीज़ के लिए वो सोशल मीडिया ज्वाइन करते हैं, अपनापन पाने के लिए, दोस्तों का दायरा बढ़ाने के लिए, समाज में मिलने के लिए, कभी कभी वही चीज़ उल्टे रूप में भी आ जाती है कि कोई उनको अपना बनाकर सोशल मीडिया पर ठग सकता है। हम ऐसी कई कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं आजकल, जिसमें कोई दोस्त बनकर या हमदर्द बनकर पहले नजदीक आता है और फिर पैसे की डिमांड की जाती है या ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो अपनी निजी जानकारी को या अपने आर्थिक स्थिति को बुजुर्ग कितना शेयर करें सोशल मीडिया पर या ना करें, अपना अकेलापन इस तरह से ना दिखाएं कि कोई उसका फायदा उठाए, इस बात का ध्यान रखना कहाँ तक जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी को दिखाते हैं तो कमजोरी से तो नॉर्मल लोग से भी फायदा उठाते हैं, और जब बुजुर्ग को आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं, तो बहुत लोग आज के ज़माने में ठगी वाले होते हैं। खास करके आपने देखा होगा कि कोविड के बाद बहुत लोग इस तरह के लोगों को अपने दर्द को सुना के, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं थोड़े इमोशनल, हमने शुरू से कहा कि इमोशनल होते हैं और अटेंशन सीकिंग होते हैं, उन्हें लगता है कोई प्यार से बोला मतलब वो मेरा अपना है, उन्हें पता ही नहीं होता है कब उनको चीट कर रहा है, कब उनको बुद्धू बना रहा है। तो थोड़ा सतर्कता की जरूरत है, और खास करके यंग, अगर उनको कोई महिला ही हो पुरुषों को करती है, या लड़की यंगस्टर, हमने देखा है बहुत सारे केसेस आते हैं कि पढ़ी लिखी मतलब महिलाएं हैं, बहुत बैंक बैलेंस है, उनको इसी तरह की बहुत तारीफ करके उनका इस्तेमाल करते हैं, तारीफ करते हैं तो उनको लगता है कि अभी तक लाइफ में जो नहीं मिला उनसे मिल रहा है, और वो अपनी बहुत सी चीजें, यहाँ तक कि अकाउंट नंबर भी उनको दे देती हैं। या पुरुषों के साथ भी हमने देखा कि बहुत सारे केसेस हुए, बाद में आके कह रहे हैं कि मैं तो बुरी तरह से फंस गया, ना बच्चों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, ना बड़ों के सामने बोल पा रहा हूँ, मेरी तो इज्जत चलेगी, साइबर क्राइम के पास जाने पड़ रही है उनको। तो ऐसा मौका ना आए, इसलिए कोशिश करनी है कि एक फेक वाली जिंदगी ना जिए, हाँ रियलिस्टिक बने और अपनी अच्छी चीजों को निखारने की कोशिश करें। ऐसा मत बने कि आपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और

0: कनक मीडिया को पाके जो आपने अपना गेन किया है जो भी ज्ञान उसको ऐसे ही यूं ही ना गंवाएं और बहुत सतर्क रहें, जागरूक रहें, सोशल मीडिया का जरूर इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ा ध्यान से।
1: जी बहुत सही बात आपने कही कि सोशल मीडिया का उपयोग करें लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ।
0: कोई भी सोशल मीडिया हमेशा अच्छा ही होता है लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी होती है। हाँ उन्हें एक बात जरूर कहना चाहें, परिवार को इग्नोर ना करें, बच्चों के साथ बैठें, सोशल मीडिया का आनंद भी लें लेकिन अपने परिवार को वो प्यार और सम्मान दें ताकि आपको भी फ्यूचर में वही प्यार और सम्मान रिटर्न हो।
1: यानी सोशल मीडिया का उपयोग करें लेकिन सोसाइटी से कटें नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर बिंदा सिंह हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक और रोचक बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बुजुर्ग और सोशल मीडिया क्या हो सही दृष्टिकोण विषय पर अभी आपने डॉक्टर बिंदा सिंह से आलका प्रदर्शनी की बातचीत सुनी। कार्यक्रम अक्षयवट के अंतर्गत हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक संदेश और उसके बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम व्यू 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:30 हो रहे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म जूली में, आनंद बख्शी की रचना राजेश रोशन का संगीत, और अब आशा भोसले को सुनिए, गीत लिया है फिल्म ये है जिंदगी से, आनंद बख्शी की बोल, राजेश रोशन का संगीत।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म स्वर्ग नरक में। आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत और बादशाह भोसले को सुनिए। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लूट मार से। गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

फिल्म याराना में आपने किशोर कुमार को सुना। अनजान की रचना थी, राजेश रोशन का संगीत, और अब आशा भोसले किशोर कुमार को सुनिए फिल्म बाबू में। मजरू के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन का।

आशा भोसले और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म बाबू में। मजरू की रचना थी, राजेश रोशन का संगीत। फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज्जा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के विधि विधान पूरे कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी परिसंचरण के प्रभाव से अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में विभिन्न स्थानों पर आज तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज प्रथम क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर हाट सहित कई स्थानों पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बिक्री रोकने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछली जब्त की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भेवड़ा ओवर ब्रिज पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखपुरा, अररिया समेत विभिन्न जिलों में बकरीद के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA हुकूमत ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि साल 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद मुल्क ने ज़बरदस्त खुद एतमादी और एक नए सकाफती निशात सानिया का तारीखी लम्हा देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नवीन ने वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी और कौम अव्वल के जज्बे से मुतासिर गुज़श्ता 12 बरसों की मुद्दत कार को एक तारीखी सफ़र बताया। BJP कौमी सदर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बुनियादी मंत्र और अंत्योदय के आला उसूलों की बुनियाद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक नई सीमत अता की है। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली कोटे से भरी जाने वाली बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 9 सीटों के इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन की ऐलानिया के मुताबिक इन सीटों पर इंतखाब 18 जून को कराया जाएगा। उसी दिन शाम को वोटों की गिनती की जाएगी। तफसीली प्रोग्राम के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 अरकान की मुद्दत कार 28 जून को पूरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-आला नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई काउंसिल की सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाब 18 जून को कराए जाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में सालाना हज बैतुल्लाह का आज दूसरा दिन यौम अरफा है। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए पहुंचे पूरी दुनिया के लाखों मुसलमान आज मैदान अरफात में जमा हैं और मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। मैदान अरफात में ईमान परवर नज़ारा है। बिहार के 2,500 से ज़ायद आज़मीन इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद हिंदुस्तान के अफसरान ने बताया कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं। रियासत के अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत शुमाल मशरकी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज आंधी के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली

बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर जालेबारी की भी खबर है। इधर रियासत के जनूबी हिस्से में शदीद गर्मी पड़ रही है। मौकमे मौसमियात ने आज भी रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की फातह टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। मगरबी चंपारण के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना इंचार्ज चंद्रशेखर कुमार को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। थाना इंचार्ज पर फरायज में लापरवाही का इल्ज़ाम है। सहरसा जिले के पतरघट ब्लॉक के तहत विशनपुर हाट समेत कई मकामात पर ममनुआ थाई मांगुर मछली की फरोख्त को रोकने के लिए जिला माही परवर अफसर की क्यादत में छापेमारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान कसीर मकदार में ममनुआ मछली जब्त की गई। अररिया जिले के जोकीहाट थाना इलाके के तहत भेवड़ा और ओवरब्रिज पर गाड़ी जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर गैर मुल्की शराब जब्त की है। इस सिलसिले में एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा समेत मुख्तलिफ अजला में बकरीद के पेश नज़र DM और SP ने अमन कमेटी की मीटिंग की है और ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1230 पदों पर भर्ती के योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता नोट करें www.bpsc। कृपया पुनः सुन लें www.bpssc.bihar.gov.in। इसे एक बार फिर से बता रहे हैं www.bpssc.bihar.gov.in। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के 190 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित

0: किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का पता नोट कीजिए। पता है www.indianarmy.nic.in। इसे फिर से सुनिए www.indianarmy.nic.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
4: लोकतांत्रिक

0: आंतरिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 23वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में

0: प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने

0: के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
1: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत

0: की जाए आपसे?
1: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है?
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन
1: जी
0: फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओ, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी,
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहां लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची। ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, what do you see in a zoo?
3: Tiger, lion,
2: yes,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: ओह वाह।

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की जय।

0: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत, जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि

0: वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
6: लेकिन जरा होशियारी से।

0: Zoraver! Kutal! तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारालजन, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: चलो मुझे,
0: चलो,
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: व्हाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।

0: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
1: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
0: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है।

0: बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
1: देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी है खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
0: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
1: नागनी मैम देखिए, नागनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती हैं।
0: जी,
1: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज,
0: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
1: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि आनंद भी आता है और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
0: तब
1: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो ये सुनने को
0: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
1: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
1: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
0: लिखें ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही
1: हैं। आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
0: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो उसका मतलब।
1: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सनम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
0: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो

0: जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देखकर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो
1: बिल्कुल
0: आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की
1: बिल्कुल।
0: सोचिए।
1: कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है,
0: जी
1: यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से
0: जी
1: अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वही
0: है
1: बात हमारे सामने
0: जी।
1: होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
0: बहुत सुंदर सी बात
1: हाँ।
0: लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे, तो बच्चे पूरा हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं, हमें चाहिए।
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं।

0: और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक
1: है ना मंदाकिनी जी?
0: हाँ, बिल्कुल
1: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है
0: बिल्कुल है
1: ना?
0: है।
1: तो ये सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात है ना?
0: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
1: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
1: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। shopclues ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे shopclues भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब shopclues का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की

0: रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे ही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: वो कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए। वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम,
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। तो सबसे पहले तो इंसान को, मंदाकिनी जी, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं
0: मतलब अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला, इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना

0: बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
1: मतलब
0: ऐसे लोग जो होते
1: गोपनीयता
0: हैं।
1: जो बातों की
0: हाँ
1: होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो

0: दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था और
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा

0: होता था, दिखावटी नहीं होता थी,
1: मतलब हाँ। अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी हाँ, होते थे, लोग होते थे हाँ। और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ, इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
0: थे। हाँ बिल्कुल सही कहा।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
0: बिल्कुल आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
1: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
0: और मन से
1: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
0: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
1: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
0: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
1: सही बात।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्मासा ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्मासा वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्मासा भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
1: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे जुहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है
0: हाँ, तो सब अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है।

0: कि होटल भी दूर दूर होते हैं
1: बिल्कुल
0: और अभी कई चीजें बदल गई हैं
1: बदल
0: ना,
1: गई,
0: वो
1: होटल में एक साथ
0: चीजें
1: खाना
0: शादियां
1: खा
0: भी
1: रहे हैं
0: होटल में हो गई हैं,
1: जी
0: घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते
1: बिल्कुल,
0: थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे,
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
1: लेकिन मुझे
0: जिसका।
1: तो वो जन्मासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद
1: तो
0: आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर
0: हाँ फिर
1: बाकी
0: बात
1: संदेश
0: करते हैं।
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए। हाँ। कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बराती रात में रुकते भी नहीं है।

0: और ये जन्मासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
1: मजा था।
0: मजा था।
1: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
1: अब तो फॉर्मेलिटी ही
0: जी
1: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
0: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी,
1: हाँ।
0: जी तो वो तो किसी और का बगीचा है।
1: हाँ हाँ।
0: अब आम लगे हैं,
1: हाँ।
0: अब बराती लगे तोड़ने में,
1: हाँ हाँ।
0: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
1: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
0: जी
1: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी।

0: कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे आज
0: वापस यादें हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने

0: संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती, हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
1: जी।
0: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक कंपोजर, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
1: क्या
0: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
1: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
0: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
0: अलग है, बांसुरी वादक
1: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
1: क्या बात है।
0: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
1: जी।
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
1: और इन रागों में
0: वाद्य वृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
1: जी।
0: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पा मागा रेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता
0: है, 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे
1: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो,
0: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
1: जी जी।
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं, और दो म्यूज़िक में हैं, एक म्यूज़िक में नहीं है
1: जी।
0: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई
0: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना,
1: हाँ,
0: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है,
0: हाँ,
1: वो है कुटुम्बस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,

0: और भी बदमाश
1: और भी तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में
1: शर्मा रहे बता रहे थे
0: हाँ थोड़ा सा शर्मा रहे बट हाँ बदमाशी करते थे
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी
0: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
1: ओहो हो,
0: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी,
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे फिर
0: पिताजी आए उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा
0: इसको कर्मा बोलते
1: वापस आ गया
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम हाँ तो बदमाशी की है सर हाँ कभी कभी स्कूल से जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉय स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं
1: कहीं और पहुंच गए
0: तो ऐसी बदमाशियां रही। फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या तो हाल होता।
0: बाप रे दुनिया अलग और मैं अलग
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है,
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: ये मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब
0: ही वॉज ए मिलिट्री गाय
1: जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और
1: जी,
0: इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली।
0: वो पार्ट थे उसके,
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के। और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड,
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने।
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी
0: हमारी, ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में, हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी जी
0: पंचम
1: बिल्कुल
0: हम होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते।
1: नहीं करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका
1: बांसुरी
0: आशीर्वाद है।
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा
1: वाह
0: मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था, 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है

0: रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के शुरू से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह,
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी रा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की नींद
0: चार
1: है,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4, 5 बजे तक,
1: ओहो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से, इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि

0: जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुनें आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का,
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी, आपने
1: हाँ
0: देखी होगी, ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
1: हमेशा
0: ऐसे, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है,
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम

मीटे पे बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 और 15 सेकंड हो रहे हैं। हम उपस्थित से श्रोताओं आपकी सेवा में आज की अपनी संध्याकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ। और लीजिए सभा के आरंभ में पेश है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना। प्रोग्राम है युवाणी और अभी आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट और दोस्त नेहा वत्स को। और आज दोस्तों मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी साथी प्रिया।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रिया। दोस्तों, हम चलेंगे आज के खास कार्यक्रम की ओर और जानेंगे क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में। तो बताइए नेहा हमारे श्रोताओं को कि क्या कुछ खास है आज के पिटारे में।
0: तो प्रिया, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम जानेंगे आज मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में। फिर दोस्तों हम बातें करेंगे बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, बहुत ही रिलेवेंट मुद्दे पर, और वो है सड़क सुरक्षा। बात करेंगे हम रोड पर जो आए दिन रोड एक्सीडेंट हमें देखने सुनने को मिलते हैं, जानेंगे उससे रिलेटेड बहुत ही जरूरी बातें।
1: और नेहा, आज तो है दिन मंगलवार, तो दोस्तों हर मंगलवार को हम लेकर आते हैं बेहद खास सेगमेंट जो है मनोबल मंगलवार। इसके अंतर्गत हम सुनेंगे प्रेरक कहानी, साथ ही हम जानेंगे आज के समय के जॉब अपडेट को, और फिल्म संगीत तो चलते ही रहेगा नेहा। और आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं?
0: और दोस्तों आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही खास
1: नेहा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग रोचक तथ्य पर भी बात करेंगे, है ना?
0: हाँ, बिल्कुल प्रिया, हम रोचक तथ्य भी बताएंगे अपने श्रोताओं को। और साथ ही दोस्तों पूरा प्रोग्राम होने वाला है इंटरटेनमेंट और जानकारी से भरपूर। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम में ये पहला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम, और सोनू निगम की आवाज़ में ये ट्रैक। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, हमारे आज के इस खास टॉपिक पर। तो प्रिया, आप बताएं क्या कुछ है, इसका मतलब क्या है?
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है फिर से आपके कार्यक्रम युववाणी में। और नेहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारा जो आज का चर्चा का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस। तो नेहा, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो केवल किसी व्यक्ति की समस्या नहीं, ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे परिवार, समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस को। तो दोस्तों, हर साल ये दिन जो है वो 26

0: जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि लोगों को नशे के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके, साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया जा सके।
1: बिल्कुल नेहा, और कभी आपने गौर किया है कि जब हम नशा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में शराब, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन वास्तव में नशा केवल शरीर को ही नहीं, इंसान के सपनों और उसके रिश्तों और इतना ही नहीं पूरे जीवन

0: लेकिन वास्तव में नशा केवल शरीर को ही नहीं, इंसान के सपनों और उसके रिश्तों और इतना ही नहीं पूरे जीवन को धीरे धीरे खत्म कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात कही प्रिया आपने। नशा दोस्तों एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाले व्यक्ति शुरुआत में तो इसे आनंद या फिर तनाव से राहत समझ कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत कब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं लग पाता।
0: और नेहा, दुख की बात यह है कि आज सबसे अधिक युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं, कभी दोस्तों के दबाव में तो कभी फैशन के नाम पे, और तो कभी मानसिक तनाव के कारण युवा नशे की ओर ज्यादातर बढ़ रहे हैं।
1: लेकिन प्रिया वो इस बात को नहीं समझ पाते कि नशे की शुरुआत भले ही एक छोटी आदत से हो, लेकिन उसका अंत जब होता है तो अक्सर ही विनाश में ही होता है।
0: और दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं खबरों में ड्रग्स या नशे की तस्करी के बारे में सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या आप सभी ये सोचते हैं कि ये हमारे परिवारों, हमारे युवाओं और हमारे आर्थिक व्यवस्था को कैसे खोखला कर रहा है? आपने कभी गौर किया है?
1: आपने सही कहा प्रिया, संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष का मुख्य संदेश सबके लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर इसी वजह से तो केंद्रित कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नशा केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि एक मानसिक साथ ही साथ शारीरिक बीमारी भी है और इसका इलाज संभव है।
0: श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1987 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि दुनिया को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना।
1: तो दोस्तों, ये जो आज का दिन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये दिन हर साल एक अलग, एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। और प्रिया, इस साल की हम बात करें तो साल 2026 की थीम है ब्रेकिंग द चेन्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल, यानी कि जंजीरों को तोड़ना सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास है। ये नशीली दवाओं और शराब की लत के खिलाफ जागरूकता लाने और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एक वैश्विक अभियान भी है।
0: ये तो बहुत अच्छी इस बार की थीम है नेहा, और मुझे लगता है कि ये थीम बहुत ही गहरा संदेश देती है। यह केवल नशे को रोकने की बात नहीं करती, बल्कि उन लोगों को भी नई आशा और देने की बात करती है जो इस लत में फंस चुके हैं, है ना?
1: बिल्कुल प्रिया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नशे से बाहर लाने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि परिवार का साथ, समाज का सहयोग और सही उपचार भी उतना ही आवश्यक होता है।
0: नेहा, आजकल यह भी देखा जा रहा है कि फिल्मों और सोशल मीडिया की गलत या फिर गलत संगति का प्रभाव भी युवाओं पे तेजी से पड़ रहा है।
1: ये तो सबसे बड़ी वजह है प्रिया। कई बार युवा ये सोचकर नशा शुरू कर देते हैं कि इससे वो और भी ज्यादा मॉडर्न लगेंगे, वो अट्रैक्टिव लगेंगे, वो कूल लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नशा इंसान से उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्वास्थ्य और उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका सब कुछ छीन लेता है।
0: और एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने परिवार से दूर भी होने लगता है, उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उसका करियर टूटने लगता है और धीरे धीरे उसकी मानसिक संतुलन भी कमजोर पड़ने लगती है।
1: और इतना ही नहीं दोस्तों, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी अपराध, हिंसा और कई सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। ये केवल कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता के लिए भी आज एक गंभीर चुनौती है।
0: तो नेहा, आगे हम और भी बातें करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन क्यों ना इसके पहले हम अपने श्रोताओं को कोई प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: तो लीजिए दोस्तों, सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।

0: भाग मिल्का भाग मूवी से अभी हमने सुना ये ट्रैक जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की आवाज में।
1: श्रोता, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस की। क्या आप सभी ने इस बात पर कभी ध्यान दिया है? और एक सवाल है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है, आखिर नशे से बचाव कैसे किया जाए?
0: तो दोस्तों, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है समय रहते। इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता, यानी परिवार अपने बच्चों से खुलकर इस टॉपिक पर बात करे, उनकी परेशानियों को समझे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे, तो बहुत हद तक इस समस्या को रोका जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, बट डर के मारे ना अपने परिवार के सदस्यों से वो ये बात नहीं डिस्कस करते। लेकिन परिवार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, उन्हें इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो बच्चे उनके पास आकर अपनी समस्या पर बात कर सकें।
1: बिल्कुल सही बात है नेहा, और स्कूलों और कॉलेजों में भी नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि युवाओं को खेल, ये कई तरह से चलाया जा सकता है कार्यक्रमों, जैसे युवाओं को खेल हुआ, संगीत हुआ, या साहित्यिक या रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना। इसके थ्रू भी युवाओं को इसके बारे में जागरूकता मिलती है और वो इससे अवेयर होते हैं।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है दोस्तों कि युवाओं को ये बात समझनी है कि किसी भी तनाव या किसी भी परेशानी का समाधान नशा कभी नहीं हो सकता।
1: नेहा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नशे की लत से बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
0: बिल्कुल प्रिया, और यहीं पर हमें ये समझना होता है कि नशे की लत से जूझ रहा व्यक्ति हमारी सहानुभूति और सहयोग का हकदार है। उसे तिरस्कार नहीं बल्कि विश्वास और सहारा चाहिए।
1: सही बात कहा आपने नेहा। नशा मुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कई अभियान भी चलाए गए, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान भी। इसके तहत देश के जो जागरूकता है, देश भर में शिविर और पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं। और श्रोताओं, अगर आपके परिवार या जान पहचान में कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो उनकी मदद करें। आप भारत सरकार के आधिकारिक बेहेल्प लाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं।
0: दोस्तों, सही उपचार, परामर्श और परिवार का प्रेम किसी भी व्यक्ति को फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटा सकता है। और जब समाज किसी को दूसरा मौका देता है तब कई जीवन दोबारा भी संवर जाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने घर, अपने विद्यालय और अपने समाज और खासकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें।
0: और याद रखिए दोस्तों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित करता है, और एक जागरूक समाज ही इस समस्या का सबसे मजबूत समाधान बन सकता है।
1: तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे।
0: बिल्कुल प्रिया, नशा मुक्त युवा ही एक सुरक्षित भविष्य की पहचान है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ हम चलते हैं प्रोग्राम के इस अगले ट्रैक की ओर। तो लीजिए सुनिए केके की आवाज में प्रोग्राम में ये अगला गाना।

0: तुम मिले मूवी से अभी हम सुन रहे थे केके की आवाज़ में ये ट्रैक। और अब आइए दोस्तों बात करते हैं बहुत ही रेलिवेंट से मुद्दे पर, सड़क सुरक्षा पर। प्रिया, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है?
1: हाँ नेहा, सुबह पढ़ा था और सब खबरें ऐसी देखी कि अभी भी मन दुखी है, परेशान है नेहा।
0: ऐसा क्या देख लिया प्रिया आपने?
1: नेहा, वो जो घटना था ना, वो अंदर से मन दुखी हो गया था कि एक ओवर स्पीड ट्रक ने ऑटो में बैठे सारे लोगों को रौंद डाला। सोचिए ना कितनी दुर्घटना, ये मार्मिक दुर्घटना है कि अभी तक इस हेडलाइन ने मुझे परेशान कर रखा है।
0: और तो और प्रिया, दुख तो इस बात का है कि ऐसी खबरें हमें लगभग रोज ही देखने सुनने को मिल जाती हैं। आज सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ समाचार की सुर्खियां नहीं हैं,

0: बल्कि हर परिवार के डर का एक कारण भी हैं। हर दिन हजारों लोग सड़कों पर होते हैं, पर उनमें से सारे अपने घर, अपने परिवार के पास कभी भी वापस नहीं पहुंच पाते।
1: बिल्कुल नेहा, और इस बात पे दोस्तों बहुत जरूरी है हम सभी को ध्यान देना, क्योंकि आए हर दिन हमें ये सुनने को मिलता है और ऐसी घटनाएं से मन बहुत दुखी होती है। ऐसे हादसे की सबसे बड़ी लापरवाही जो वजह है वो लापरवाही है। लोग ट्रैफिक नियमों की गंभीरता नहीं समझते हैं, कोई हेलमेट भी नहीं लगाता, कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता, तो कोई फोन कॉल पे बात करता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रिया, और ड्राइविंग करते समय फोन इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आंखें बंद करके सड़क पार करना। लोगों को लगता है बस 1 मिनट कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि दुर्घटना होने के लिए मिनट क्या, 1 सेकंड ही काफी होता है।
1: और ऐसे हालात में दोस्तों सवाल उठता है कि हमें किन सुरक्षा या किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो आए दिन रोड एक्सीडेंट की वजह से जो भयावह नंबर्स हैं उनमें कमी आ सके। दोस्तों, आप जब भी ड्राइव करें ना, तो हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहना करें। ये ना देखें कि हमें कौन देख रहा है कौन नहीं, छोड़ो यार चला ही लेते हैं, इन सारी चीजों पे ना ध्यान दें। अपनी जिम्मेवारी, अपनी जीवन के साथ साथ दूसरों की भी जिम्मेवारी को समझें। और याद रखिए, जीवन बहुत अनमोल है, इसीलिए सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं है बल्कि जीवन की रक्षा है। तो आइए हम ये संकल्प लें कि हम खुद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, है ना नेहा?
0: हाँ प्रिया, तो दोस्तों क्या है कि आए दिन जो रोड एक्सीडेंट्स के भयावह जो नंबर हमें देखने सुनने मिलते हैं, उनमें कमी लाने के लिए दोस्तों कुछ मेजर्स हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। तो जब भी आप ड्राइव करें, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहन कर ही करें।
1: और इतना ही नहीं, ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, मोबाइल का उपयोग कम करें, नशे में ड्राइविंग न करें, ओवर स्पीड से दोस्तों हमेशा बचिए, पैदल यात्रियों का सम्मान जरूर करें।
0: और साथ ही दोस्तों, बच्चों को शुरू से ही सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा दोस्तों केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब नागरिक की जिम्मेदारी है। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि जो भी ट्रैफिक नियम हैं, उन्हें हम डर से नहीं बल्कि समझदारी से माने।
1: और नेहा, इसीलिए कहा जाता है कि सड़क पर जल्दीबाजी नहीं, समझदारी दिखाइए। याद रखिए, दुर्घटना से देर भले, और सुरक्षित चलेंगे तभी सुरक्षित पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल प्रिया, और दोस्तों हमारी बातें प्रोग्राम में आगे भी जारी हैं। अभी आइए सुन लेते हैं प्रोग्राम में ये अगला ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों अब हम आगे चलते हैं अगले चर्चा की ओर और बात करते हैं, बहुत जरूरी है, जिसमें हम सभी समाज हो या लड़कियां हैं या जितने भी लोग हैं सबको ध्यान देना बेहद जरूरी है। हमारी चर्चा का विषय है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन। दोस्तों महावारी जो है हर किशोरी और महिला के जीवन में एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन भारत में आज भी यह विषय चुप्पी और रूढ़ियों से घिरा हुआ है। जरा सोचिए जो लड़कियों और महिलाओं में शर्म और झिझक का कारण बनता है, इस पे हमें सभी को खुल के बातचीत करना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या समुदाय हो, जानकारी और सुरक्षित तरीके से उन्हें मिले ताकि उनका आत्मविश्वास और पढ़ाई दोनों बेहतर हो, और खासकर लड़कों और पुरुषों को शामिल करने से चुप्पी

0: छूटती है और यह नुकसानदेह सोच को बदला जा सकता है। दोस्तों, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का मसला नहीं है, यह गरिमा, शिक्षा और समानता का भी सवाल है।
1: दोस्तों, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस इमेज डे एक वैश्विक जागरूकता अभियान का मंच है जो कि गैर सरकारी संगठनों, सरकारों, मीडिया, व्यापार जगत और आम लोगों को सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एकजुट करता है। ये दिवस 28 मई को मनाया जाता है। 28 दिन के मासिक चक्र और 5 दिनों की महावारी का प्रतीक और साल 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से ये एक शक्तिशाली आंदोलन बन चुका है। इस साल की थीम पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड सभी से एक सामूहिक प्रतिबद्धता की मांग करती है।
0: और नेहा, लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदायों, परिवारों और संस्थाओं को मिलकर महावारी पर खुली बातचीत को सामान्य बनाना होगा। स्वच्छ उत्पादों और सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ सके। अच्छी मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेहत, शिक्षा और गरिमा के लिए जरूरी है और एक समावेशी और समान समाज के निर्माण के लिए भी।
1: इसे बिहार के संदर्भ में हैशटैग पीरियड फ्रेंडली बिहार के रूप में अपनाया जा रहा है, जो कि ये दिखाएगा कि राज्य स्तरीय कार्रवाई वैश्विक बदलाव में कैसे योगदान देती है। और दोस्तों, हमारी और भी बातें आपसे करनी बाकी हैं प्रोग्राम में आगे। अभी आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक।

0: राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे बोलना हल्के हल्के झूम बराबर झूम मूवी से ये ट्रैक।
1: श्रोताओं, आज है दिन मंगलवार और हर मंगलवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहद खास सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम लेकर हाजिर हैं आज का खास सेगमेंट मनोबल मंगलवार, जिसके अंतर्गत हम सुनेंगे बेहद ऊर्जा और जुनून से भरी कहानी।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। एक ऐसी कहानी जो उन युवाओं के लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जिन्हें देखकर वो टूट जाते हैं।
1: हाँ नेहा, क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है, सबके लाइफ में आता है, जब इंसान को लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ गेन नहीं कर पा रहा है, चारों तरफ निराशा दिखाई देती है और मन बार बार कहता है अब मुझसे नहीं होगा।
0: लेकिन दोस्तों, ऐसे समय पर सबसे जरूरी होता है ये याद रखना कि जीवन में सबसे अंधेरा समय वही होता है जब रोशनी आने वाली ही होती है। और आज की ये जो कहानी है ये इसी विश्वास की कहानी है।
1: दोस्तों, अब चलते हैं हम कहानी की ओर। यह कहानी है सिया की, एक साधारण लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक छोटे शहर में रहती थी और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाले और अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए।
0: दोस्तों, सिया के पिताजी एक निजी कंपनी में काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई कभी भी रुकने नहीं दी थी।
1: सिया रात दिन मेहनत करती, कॉलेज जाती, घर का काम संभालती और देर रात तक पढ़ाई करती, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।
0: लेकिन दोस्तों, जिंदगी भी हमेशा हमारी योजना के अनुसार कहाँ ही चलती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर इंटरव्यू में उम्मीद लेकर जाती लेकिन हर बार ही निराश होकर लौटती।
1: और कभी अनुभव कम होने की वजह से मना कर दिया जाता है तो कभी किसी और को मौका मिल जाता है। सिया का धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है।
0: प्रिया, हम दोस्तों को आगे की और कहानी तो बताएंगे लेकिन क्यों ना हम इन्हें पहले एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल नेहा, तो दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं ये एक प्यारा सा ट्रैक।

0: तो दोस्तों, हम सुन रहे थे सिया की कहानी, जो सिया अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए लगातार मेहनत करते जा रही थी। सिया को लगातार मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ मिलते थे, इसके बावजूद वो आत्मविश्वास को टूटने नहीं देती थी।
1: और जब लगातार सफलता मिलती है तो असफलता इंसान को दूसरी बातों से भी ज्यादा खुद की सोच से हारने लगते हैं। सिया भी अब खुद को कमजोर समझने लगी थी और एक दिन उसकी माँ ने कहा

0: उसने माँ से कहा कि माँ, शायद मैं कभी किसी काम की नहीं हूं, इतनी मेहनत के बावजूद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रही हूं।
1: दोस्तों, पता है सिया की माँ का क्या जवाब रहा था तब? उसकी माँ मुस्कुराई थी और बोली थी, बेटी, बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तब उसे लगता होगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वही बीज एक दिन एक बड़ा पेड़ बनता है।
0: दोस्तों, अपनी माँ की बात सुनकर सिया की दिल को बहुत साहस मिला और उसने महसूस किया कि शायद वो भी अब हार नहीं मानने वाली है, वो अपने हौसलों को बुलंद रख के काम करेगी।
1: और इसके बाद उसने खुद को फिर से संभाला, नई चीजें सीखना शुरू किया, अपने डर से लड़ना शुरू किया और हर दिन खुद से एक वादा करती, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी।
0: तो दोस्तों, इस तरह से उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ महीने बाद ही उसे एक छोटी सी कंपनी में काम करने का मौका मिला। वो नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी, तनख्वाह भी कम था, लेकिन सिया ने उसे पूरे मन से स्वीकार किया।
1: क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कोई भी मंजिल छोटे कदमों से ही शुरू होती है।
0: सिया ने भी अपनी मेहनत जारी रखी थी, वह सीखती रही, आगे बढ़ती रही और कुछ वर्षों बाद वही सिया एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर पहुंची।
1: जिस लड़की को कभी खुद पर भरोसा नहीं रहा था, आज वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। इसीलिए युवा साथियों, अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो निराश नहीं होइए।
0: बिल्कुल सही बात कहा नेहा, क्योंकि हर संघर्ष हमें मजबूत बना रहा होता है, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखा रही होती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी खुद को कम मत आंकिए। आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपकी मेहनत, आपका साहस और आपका धैर्य है।
1: और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, धीरे चलना गलत नहीं है, गलत है रुक जाना। कई युवा सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों, पेड़ को फल देने में भी समय लगता है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए।
0: इसीलिए आप अपने पर भरोसा रखिए, अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए, दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमजोर मत आंकिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में घड़ी अलग होती है, कोई जल्दी सफल होता है तो कोई देर से, है ना नेहा?
1: बिल्कुल प्रिया, लेकिन जो लगातार प्रयास करते रहता है, सफलता एक दिन उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचती है। और अगर कभी मन थक भी जाए तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन पूरी तरह से रुकिए नहीं, अपने सपनों को छोड़िए नहीं।
0: बिल्कुल साथियों, जिंदगी की राह में मुश्किलें आएंगे, लोग भी रोकेंगे, हालात भी परखेंगे, लेकिन अगर आपके भीतर विश्वास जिंदा है तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, और कहा भी जाता है ना कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।
0: दोस्तों, अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने मनोबल को मजबूत रखिए और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए।
1: तो प्रिया, अब आइए सुनवाते हैं श्रोताओं को ये अगला ट्रैक।

0: और दोस्तों, अब स्टूडियो की घड़ी ने कर दिया है इशारा, हो गया है समय हमारे जाने का। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का। और अब दीजिए इजाजत अपनी आज की होस्ट और दोस्त नेहा और
1: प्रिया को इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मगी भाषा का यह कार्यक्रम मागधी।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मागधी के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, महावारी हर किशोरी और महिला के जीवन में एगो स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, मगर भारत में आज भी ई विषय चुप्पी और रूढ़ी से घिरल है, जे लड़कियन और महिला के शर्म और झिझक के कारण बना है। इस सामाजिक बाधा उनका अपन जरूरत खुल के कहे से रोका है और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के परिवार स्कूल और समुदाय में अनदेखा कर जा है। जानकारी के कमी और सामाजिक संकोच के चलते महावारी के अक्सर छुपावे के चीज समझल जा है, जेकरा से किशोरी बिना कोई मार्गदर्शन के और सहारे के रह जा हथिन। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता खाली स्वास्थ्य के मसला नहीं है, बल्कि ई गरिमा शिक्षा और समानता के भी सवाल है। जागरूकता के कमी, पुरान रूढ़ी, स्वच्छ उत्पाद तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त शौचालय सुविधा के चलते खराब MHM लड़कियन के स्कूल हाजिरी, सेहत और सामाजिक भागीदारी पर बुरा असर डाला है। किशोरी के सही जानकारी और सुरक्षित तरीका से मिलल उनकर आत्मविश्वास और पढ़ाई दोनों बेहतर होवा है। साथ ही परिवार और समुदाय खास करके लड़का और पुरुष के शामिल करे से चुप्पी टूटा है और नुकसानदेह सोच के बदलल जा सका है। भारत के किशोरी पहला महावारी के समय सबसे पहले ज्यादा कमजोर होबा हथिन। उनका सुरक्षित माहौल, सहयोगी परिवार और संवेदनशील स्कूल के जरूरत होबा है, जेकरा से आत्मविश्वास के साथ महावारी के संभाल सकथिन। MHM के खाली स्कूल तक सीमित रखना काफी नहीं है, एकरा सौंसे समाज के मिलके काम करे पड़ते। समुदाय, परिवार और संस्थान के मिला के महावारी पर खुलल बातचीत के सामान्य बनावे पड़ते। स्वच्छ उत्पाद और सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करना होते। एगो ऐसन माहौल बनाना जहां लड़कियन और महिला आगे बढ़ सकथिन। अच्छा मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सेहत शिक्षा और गरिमा के लिए जरूरी है और एगो समावेशी और समाज समान के निर्माण के लगी भी। रूढ़ी और सामाजिक संकोच में महावारी गांव और शहर दोनों जगह एगो वर्जित विषय बन चुके हैं, जे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता और भ्रांति के जड़ जमेते। अपवित्रता के पुरान सोच के चलते लड़कियन और महिला के खाना बनावे, पलंग पर सूते, बाहर जाए चाहे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होवे से रोकल जा है। भ्रांति में है कि महावारी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एगो स्वाभाविक और स्वस्थ जैविक प्रक्रिया है। सही जानकारी के अभाव में महिला और लड़कियन सामाजिक और आर्थिक बाधा से जूझा हथिन। महावारी के सामान्य बनावे और इनकर जैविक

महत्व के समझे लगी सार्वजनिक चर्चा बहुते जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी खतरा में गंदा और अस्वच्छ उत्पाद के लंबा समय तक उपयोग और साफ सफाई के कमी से प्रजनन तंत्र और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सका है। सामाजिक रूढ़ी लड़कियन और महिला के डॉक्टर से मिले से भी रोका है, जेकरा से स्वास्थ्य समस्या और भी बढ़ जाए। तो खान पान पर पाबंदी, महामारी के दौरान खाए पिए वाला लगावल जाए गेल पाबंदी खून के कमी और पोषक संबंधी कमी के खतरा बढ़ावा है। पढ़ाई पर असर में स्कूल में MHM सुविधा के कमी लड़कियन के क्लास छोड़े पर मजबूर कर है। एकर सीधा असर हाजिरी और पढ़ाई पर पड़ है। महामारी के संभाले के लिए गोपनीयता और सुरक्षा ज्यादातर उपलब्ध नहीं होबा है। संस्थागत कमी में स्कूल कॉलेज कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधा में सैनिटरी पैड अलग अलग शौचालय और बदलाव के लिए सुरक्षित जगह होवे के चाहिए, मगर ई सुविधा अभी बहुते कम है। व्यवहार बदलाव के लिए जागरूकता, MHM जागरूकता खाली स्वच्छता और उत्पाद वितरण तक सीमित नहीं होवे के चाहिए। ये एगो व्यवहार संबंधी मसला है, जेकरा में लड़कियन लड़का के माता पिता और समुदाय सभ्य है शामिल होथिन। पुरुष के भी महामारी के शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव के समझना बहुत जरूरी है। तब ये तो हमनी सब के बात आगे भी चलते रहते, मगर पहले अपने सब सुनथिन गंगा गीत महेश प्रसाद लिमका से।

0: श्रोता लोगिन तो देखते सेनेटरी पैड के गलत तरीका से निपटान स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा कर है। ई पैड में अवघटनीय सामग्री होबा है जैसन हानिकारक रोगाणु फैल सका है। शहरी इलाका में भी खाली एक छोटा हिस्सा में वैज्ञानिक लैंडफिल सुविधा दे हथिन, ग्रामीण क्षेत्र में तो इन नाम मात्र भी नहीं है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 2018 में मासिक धर्म अवशिष्ट प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी कैलन हल, मगर एकर अमल अभी भी कमजोर बनल है। कपड़ा के पैड, इको फ्रेंडली पैड और मेंस्ट्रुअल कप के बढ़ावा देवे से निपटान के चुनौती कम हो सका है और पर्यावरण के अनुकूल समाधान मिल सका है। महिला के और लड़की के महावारी के बारे में सही जैविक जानकारी होवे के चाहिए, उनका ये पता होवे के चाहिए कि एकरा गरिमा और आत्मविश्वास के साथ कैसे संभालथिन और एक सहयोगी माहौल में मदद मांगे के क्षमता होवे के चाहिए। साफ और सुरक्षित मासिक धर्म अवशोषक सामग्री के उपयोग आराम, स्वच्छता और गरिमा के लिए जरूरी है। महिला और लड़कियन के भी जब भी जरूरत हो अवशोषक बदले के एकांत जगह मिले के चाहिए। साथ में साबुन और पानी के सुविधा, मासिक धर्म, कचरा के निपटान सुरक्षित और प्रभावी तरीके से होवे के चाहिए, जेकरा से कि सेहत और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सके। बिहार सरकार में इस सुनिश्चित करना इस संकल्प ले लखे कि कोई भी लड़की महावारी के कारण स्कूल नहीं छोड़थिन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कूली लड़कियन के मासिक धर्म स्वच्छता अनुदान के 150 से बढ़ा के 300 प्रति वर्ष कर देवल गेलै है, जेकरा से वो बेहतर तरीका से महावारी के प्रबंधन कर सकथिन। अब सुनथिन भेंट वार्ता आधुनिक भाषा में मगही भाषा के स्थान और महात्म। भेंट वार्ता कर रहे थे योगेश कुमार मिश्रा और हिनका से बातचीत कर रही है हम दिव्या भारती। श्रोता लोगिन आज हमने के स्टूडियो में आये हथिन योगेश कुमार मिश्रा जी। तो आज हम हिनका से जानम कि हमने के आधुनिक समाज में मगही भाषा के स्थान की है और महात्म की है। योगेश कुमार मिश्रा जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है हमने के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद मैम।
0: जी योगेश कुमार जी, सबसे पहले अपने से हम जानल चाहम कि ऐसन कह जाए कि मगही के गौरवशाली इतिहास रहले है, एकरा पर अपने कुछ कहथिन।
1: जी मगही साहित्य मागधी प्रकृत से समझल जा है।
0: जी
1: ये हमारे बहुत ही पुरान भाषा है। ये भाषा के महत्वपूर्ण क्षेत्र मुख्य रूप से मगधे है। मगध के माटी ही एकरा लगी काफी है समझे खातिर। सिर्फ बिहारे नहीं, झारखंड, नेपाल, बंगाल में भी भाषा बड़ी प्रेम से बोलल जा है।
0: जी।
1: और दुनिया में लगभग 2.7 करोड़ लोग ये भाषा भाषी हथी। एकरा से पता चला है कि मगही साहित्य के भी अपने आप में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहलई है। जब हम 2011 के जनगणना पर नजर रख ही तो पता चला है कि एकरा बोले वाला लोग 2.5 करोड़ से भी पार कर गलती है।
0: अच्छा।
1: और 2021 में जनगणना तो खैर नहीं होले है कोविड के चलते, लेकिन आशा करी थी कि 4 करोड़ का 10 करोड़ लोग भी एकर बोलवैया हो जी थी।
0: जी जरूर।
1: एकरा से लगा है कि हमर समाज में मगही के स्थान वही पुराने स्थान है और एकर भविष्य भी एकरे से निर्धारित हम कर सकलिए है। मगधी बहुत पुरान भाषा है और ये मगधी के अभ्रंश से मगही हमर बनल है, जो बिहार, गया और अगल बगल जहानाबाद, अरवल, झारखंड के भाषा है और सम्राट अशोके के शासनकाल से एकर महत्व चलल आ रही है। और ई माटी के सुगंध बहुत दूर दूर तक पूरे देश में फैलल है। एकरा जितने प्रशंसा करल जाए उतने हमरा नजर में कम होते। जब हम अपन बिहार के बारे में सोचा ही तो देखा ही कि एकर स्वर्णिम इतिहास रहलै है। और हमर बिहार खास करके गया जहाँ से हम आयल ही है, वो बर्तन बिंदु मानल जा है।
0: अच्छा।
1: ई मगही भाषा सिर्फ

0: अपने आप नहीं, अंगिका, बचिका, भोजपुरी, मैथिली सब यही भाषा से निकलली है। ये उद्गम स्थल है, ये अन्य भाषा के ये जननी कहल जा है,
1: जी
0: माई कहल जा है।
1: जी
0: आई मगही मैया के कृपा ही है कि पूरे देश में एकर बोलबैया आज भी कोई कम न हथी। और जब एकरा हम विचार कर रही तो देखा है कि तेलुगु, कन्नड़, गुजराती सब भाषा एकरे विकास
1: विकास कल के
0: कैल
1: हैं।
0: के
1: जी
0: है।
1: जी
0: एकरो में बहुत सारा विद्वान होलथी हल, जेकरा में
1: हाँ
0: भाषाविद कृष्णदेव के नाम आवह है।
1: जी
0: उनकर मुखारबिन से निकले हल कि सा मागधी मूल भाषा, ए प्राकृतिक भाषा है जो संस्कृत और पाली दोनों से अपना संबंध रखा है। मगध क्षेत्र में हम जब देखा ही तो मगधे में वर्धमान महावीर और भगवान बुद्ध के जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त होले और जैन धर्मावलंबी हथी, उस सब में एकरे छाया प्रतिछाया देखे के मिला है। एकरा से पता चला है मगही साहित्य हमर दूसर साहित्य से कोनो कम ना है।
1: जी बिल्कुल
0: एकरा पर और जब हम विचार कर रही है तो देखा ही है कि 1964 में एक भैया फिल्म फिल्मावल गेलई हल,
1: जी
0: जेकरा में बहुत कलाकार अच्छा ढंग से एकर फिल्म मिलती हल। और पता चला है कि मोहम्मद रफी को एकरा में गाना गेलती हल।
1: अच्छा
0: एकरा से लगा है कि भूत, भविष्य, वर्तमान और तमाम हमारे हमरा आगे बढ़े के सब एकरा में विधि विधान है। चर्चा में देवन मिश्र के कौन न जाना हथी।
1: हाँ
0: देवन
1: बिल्कुल
0: मिश्र गया के और टेकारी राज में, राज दरबार में उनकर पहुंच हले और वहीं के कवि मानल जा हल थी। उनका असर से कहल जा है कि देवी मैया के उनका पर कृपा हले,
1: जी
0: वो
1: जी
0: जे कहल थी से
1: सो
0: सब
1: रहा
0: हो
1: है।
0: जा हले।
1: हाँ
0: और एकर अलावे भी हम मिसिर जी के अलावे भी और बहुत से ऐसन विद्वान के या हम कवि कोविद के नाम जाना ही है जे समय समय पर अपन अपन ढंग से मगही के आगे बढ़ावे के काम केलथी हल।
1: जी बिल्कुल
0: जेकरे लाठी ओकरे भैंस भी,
1: भैंस
0: हम वही समय के कहावत है जो कि आज तक के ओकरा हम
1: प्रचलित
0: हाँ
1: है।
0: प्रचलित है। ओकरे पर हमार समाज के बहुत भी मने उपदेश चलल आवित है। एगो और भी हल थे मिथिलेश जी सपूत हल थी, वो भी
1: जी
0: फिल्म में बड़ी नाम कमेल थी हल। और उनका मगही में बहुत नाम हलन। तो हम यहाँ पर कहे चाहबे कि मगही एक ऐसा भाषा रहले है जेकर मिठास और सुगंध कहाँ नहीं, पूरा देश दुनिया में फैलल है। और जब हम लोकगीत सुन ही, आज भी हमारा लोकगीत सुने के मन करे तो मगही में सुने के मन करे, तो एकरा में हम कहबे कि एकरा महात्म और भूमिका कोनो कम नहीं है। दूसर भाषा से टक्कर देवे के पूरा एकरा में
1: जी
0: क्षमता
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल अपने से हम एगो और बात जानना चाह रही है कि आधुनिक समाज में मगही भाषा के स्थान का है।
0: जी, ये हमर समाज में मगही भाषा के स्थान तो हर जगह है।
1: जी
0: आज भी नवादा जिला से भी हम ही वहीं हमारा जन्म भेले है, मगही भाषा बोल करके हम बर्फ वाला के बुलावा हली पढ़े के समय, खिलौना वाला के बुलावा हली पढ़े के समय।
1: जी जी
0: और ये लगा है कि हमार मातृभाषा की तरह हम समाज के लोग भले ही इधर उधर हो गलती है दल बदलू, लेकिन हमार नजर में मगही आज वही स्थान रख ले है। और हमरा जवार के एक रांची में भवभूति मिश्र होबा हलती, वो मारवाड़ी कॉलेज रांची में हलती, लेकिन
1: हाँ
0: घर पर इतना बढ़िया बोला हलती मगही कि सब उनका भीरू बैठ करके लोग आनंद में एकरा सुना हलती। वो कविता भी बोला हलती, कहानी भी बोला हलती और
1: जी
0: किताब भी लिखल थी, अच्छा अच्छा ग्रंथ लिखल थे मगही में। एकरा से लगा है कि समाज में मगही के स्थान आज भी कोनो कम नहीं है,
1: जी
0: एकर
1: बिल्कुल
0: प्रेमी लोग आज भी हथी, ऐसा बात नहीं है।
1: जी। मगही भाषा के दशा और दिशा के बारे में कुछ कहते।
0: जी, मगही भाषा के दशा और दिशा, बोले वाला के संख्या तो थोड़ा कम गेले है जरूर, लेकिन
1: जी
0: हम निहोरा करबे सबसे कि मगही अपन माटी के सुगंध के ना छोड़ती।
1: जी
0: और हमर नजर में तो हम यही कहबे कि हम बीमार मगही मैया के छोड़ करके मौसिया के पास कैसे जा सकलिए।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कहते।
0: और यहाँ हमरा लगा है कि ऐसा कुछ ना होवे के चाहिए। यहाँ पर दुगो पंक्ति हम अगर

0: कहिए तो कोई गलत बात ना होती।
1: जी,
0: वो
1: जरूर।
0: कौन हेलो जो रख दिल को हमर बगिया वो बिगाड़ के, वो कौन हेलो जो रख दिल को हमर बगिया बिगाड़ के, शेष जीवन में रखी है बुतरुआ, ई भाषा के संहार के, नहीं हम उपार के, नहीं हम ई पार के, हम तो यो मगध गए बिहार के, और आजो लोग शौक से कीना हथ मटिये के बर्तन जो बनावल है कुम्हार के,
1: वाह, बहुत निमन।
0: वो कौन हलो जो ले गलो हमर बगिया उखार के।
1: जी,
0: तो एकरा से लगा है कि मगही भाषा के महत्व स्थान हम देखा ही तो कोनो दूसर भाषा से कोनो कम नहीं है, और हम यही कहबाई कि नींद बेच के हम झुकनी मोल ना लेबाई, ये मगही भाषा जेकरा से हमरा प्रेम है, जेकर माटी के सुगंध से हमरा हम इतना बड़ा भेली है, हम दूसर भाषा कैसे अपनेबाई। इसलिए
1: जी।
0: हम लोग से निहोरा करबाई कि दशा और दिशा में सुधार खातिर एकरा भी आगे बढ़े थी, मंच के संचालन करती, वक्ता लोगों की बुलाई थी, और संविधान की 8वीं सूची में एकरा भी अन्य 22 भाषा की तरह जोड़वे लगी, सरकार के ध्यान आकृष्ट करी थी,
1: जी
0: तभी हमर मगही के कल्याण होते, मगही मैया के फिर चोला बदल जीते।
1: जी योगेश कुमार मिश्र जी, हम जानल चाह रही कि हमने के जो समाज है, मगही समाज है ना, जो हमने के लोग हथिन, हुनका से भी अपने की कुछ अपेक्षा है?
0: हाँ, हम लोग की अपेक्षा यही है हम उनका से कि उनका सोचे के चाहिए कि पूरे भारत के मध्य पूर्व क्षेत्र के ही भाषा रह लई है,
1: जी
0: एकरा छोड़ करके दूसरा भाषा के अपनावे की कोशिश कम करती, चूंकि एकरे में उनकर गौरवशाली इतिहास रह लई है,
1: जी
0: उनकर
1: लेकिन
0: अतीत स्वर्णिम रह लई है, भूत भविष्य और वर्तमान भी एकरे में हम देखा ही है। भला बता थी कि मगही के पान वही मगही के पान है जो दिल्ली और बनारस के सजा दे आज भी दुकान है।
1: जी, बिल्कुल। जब ने कहलथिन कि अगर दोसर भाषा है तो ओकरा हमनी के जाने के जरूर चाहिए, जानना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन भाषा के हमनी के छोड़े के नहीं चाहिए, है
0: जी,
1: ना? जी,
0: भाषा से कोई न तो हमारा घृणा है और
1: जी
0: न
1: जी
0: तो कोई
1: ना ना ना
0: टकराव है,
1: जी
0: सब भाषा अपना अपना जगह पर ठीक ही है, लेकिन
1: जी
0: हम मगध के माटी से ऐली है, आई भाषा लुप्त प्राय होल जाई थे,
1: जी
0: तो इहू नदिया में पानी थोड़ा सा हमरा बना
1: जी
0: के रखे लगी
1: जरूर।
0: है,
1: और हमने
0: ताकि
1: के
0: एकरो धारा बहित रहे।
1: जी, ऐसे भी कहल जाए कि अपन मतलब
0: जी
1: क्षेत्र के रक्षा केला से ज्यादा
0: जी
1: जरूरी अपन भाषा के रक्षा करना है ना?
0: जी जी
1: अच्छा, एगो और हम बात पूछल चाह रही है
0: जी
1: कि आधुनिक समाज के क्या
0: जी
1: कहल चाह रहे थे अपने, कि जे हमने आधुनिक समाज में अपन भाषा के छोड़ते जा रही है,
0: जी
1: अपन गीत नाच सब कुछ छोड़ रही है ना,
0: जी
1: तो हमने के अपन भाषा नहीं छोड़े के चाहिए, अपन
0: जी
1: गीत नाच जरूर बरकरार रखे के चाहिए,
0: जी
1: एकरा बारे में अपने क्या कहल चाह रहे थे?
0: जी हम तो कही थी एकरा बारे में कि समाज समाज से निहोरा करी थी कि अपन मगही भाषा के और भाषा सीखथिन, एकरा में कोई दुख के बात न है,
1: जी
0: लेकिन ई जो माटी के सुगंध है, ये बिहार के नाज है,
1: जी हमने
0: तो
1: मगध क्षेत्र में ही है ना?
0: एकरा बरकरार रखथिन
1: जी
0: और देखथिन कि हम बचपन से यही भाषा के रह करके आपस में लुका छिपी खेली हल, आँख मिचौनी खेली हल,
1: जी जी
0: एकरा हम कैसे भूल सक ही। एक एक वाक्यांश हमरा याद आवा है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में हली और गांव गिराव में हली, और वहां पर एक पेड़ पर बैठ करके हम कुछ पढ़े थली, तो वहां पर एक घास गढ़े वाली महिला आयल हल, वो भी मनोरंजन करी थल, समय काटे थल, ई
1: जी
0: कह करके दुगो लाइन आज भी हमारे ओकर याद है कि फिसिर बूंद पर ए चूहा कोड़े माटी, तहने न कहलियो सासू मत कर शादी।
1: वाह वाह,
0: ई
1: बहुत निमन
0: मगही में इतना बढ़िया बोल रखल कि
1: जी
0: आज तक हमर मानस पटल पर ई बात अंकित है, लगा
1: जी
0: है कि मगही भाषा के, मगही मैया के फिर से लोग पुनर्जीवित कर देती तो बहुत कल्याण होते, फिर मगध के धरती में वही खुशबू आ जीते,
1: जी
0: और
1: जी
0: अभी भी खुशबू बरकरार है,
1: जी
0: थोड़ा
1: बिल्कुल
0: सा ओकरा निहोरा करी थी हम
1: जी
0: समाज के लोग लोग के कि अपन
1: जी
0: भाषा के बरकरार
1: जी
0: रखथिन,
1: जरूर, हम
0: एकर
1: सब
0: चमत्कृत करती और एकरा महात्म के बनेर रखती, तबे एकर गरिमा और दूर दूर तक के फैलते, पूरा देश में एकर मगध के भाषा भाषी हथी।
1: जी, तो हमने के बस इतने आग्रह है हमार श्रोता लोगों से कि हमने अपन भाषा के बना के रखम, बचा के रखम, नहीं तो आगे वाला भविष्य के पीढ़ी एकरा की समझथिन का जानथिन। तो हमने के खास करके हमने माई सबके जरूर चाहिए कि
0: जी
1: अपना अगला

0: पीढ़ी में अपना बाल बच्चा में अपन भाषा के दी और एकर महात्म समझाई है ना।
1: जी
0: अभी हमनी सब भेंट वार्ता कर रही हल
1: जी
0: आधुनिक समाज में मगही भाषा के स्थान और महात्म के बारे में
1: जी
0: योगेश कुमार मिश्रा जी से बहुत निमन निमन बात जान ली।
1: जी
0: योगेश कुमार मिश्रा जी हमने के स्टूडियो में आके इतना निमन निमन बात बता के अपने के बहुत एक धन्यवाद।
1: जी
0: श्रोता लोगिन अभी हम बात कर रही हल महावारी के बारे में। तब भाई रेड डॉट चैलेंज जरूर लेथिन। रेड डॉट अभियान के मकसद है महावारी के इंसानी नजरिया से देखना और मासिक धर्म स्वास्थ्य के आसपास के चुप्पी के तोड़ना। एकरा करना बहुत आसान है। अपन हथेली पर एक लाल बिंदु लगाथिन, सेल्फी लेथिन और रूढ़ी के चुनौती देते हुए व्यक्ति परिवार समुदाय और सरकार से त्वरित और सार्थक कदम उठावे के मांग करथिन और एकरा शेयर करथिन। पोस्ट में #RedDotChallenge और #MHD2026 जरूर लिखथिन। एकरा यूनिसेफ इंडिया के टैग करके और दोस्त के भी जोड़थिन। ये अभियान महिला लड़कियन और सभ्य हितधारक के मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के खुल के बात करके हौसला दे है। 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। एकरा पर सभ्य से आग्रह है कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सभ्य समेत सभ्य सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर महावारी स्वच्छता के और गरिमा के समर्थन करते हुए सेल्फी के पोस्ट करथिन। और अब अपने सब सुनथिन लोक भजन महेश प्रसाद लिमका से।

वाह, बहुत निमन। अभी हमने सब सुन रही है लोक भजन महेश प्रसाद लिमका से। एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहा है, तपन दिव्या के विदा देथिन। प्रणाम।

अभी आपने सुना मगही कार्यक्रम मागधी, ये आकाशवाणी पटना है मीडिया वेब 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता लीजिए सुनिए, अब प्रस्तुत है आज की हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों

की संक्षिप्त जानकारी। शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा चौपाल और ग्रामीण कार्यक्रम के बाद कृषि प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत कलाकार होंगे रामेश्वर को और इसी कार्यक्रम में आप निर्मल प्रभात से ली गई एक भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा वित्तीय साक्षरता। डॉक्टर सीमा कुमारी से उनकी एक वार्ता सुनेंगे, मक्का के कीट एवं नियंत्रण।

सुगम संगीत में श्रोता सुनेंगे शुभ्रा चटर्जी की आवाज में कुछ भजन। समय होगा संध्या 7:52 और सुगम संगीत के ही अन्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद कसले। समय होगा रात 8:30।

संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत ही लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे बिहार आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोक भजन, गंगा गीत, कीर्तन, निर्गुण आदि लोकगीत। रात 9:30 पर नाटक हम आपको सुनवाएंगे रूह का रिश्ता। साथ ही फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रात्रि 10:30 पर। कुछ और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे और अब से कुछ ही देर के बाद 6:10 पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आप सुन रहे हैं समय हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है और रउआ सभी लोग कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली एनडीए सरकार आपन 12 बरस पूरा कर लिहलस। ए मौका पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन कहले कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम संभाले के बाद से देश अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एगो नया सांस्कृतिक पुनर्जागरण के

0: ऐतिहासिक पल देख लेबा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन प्रधानमंत्री के अगुवाई वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम के भावना से प्रेरित पिछला 12 बरस के कार्यकाल के एगो ऐतिहासिक यात्रा बतौलें। भाजपा अध्यक्ष कहलें कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एगो नई दिशा दे रहल बानी। सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहला कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव जी कहले कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी बाड़े। श्री यादव कहले कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री के निर्णय से देश कठिन से कठिन परिस्थिति में विकास के डगर पर आगे चल रहल बा। निर्वाचन आयोग विधानसभा कोटे से भरे जाए वाली बिहार विधान परिषद के खाली भइल 9 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव खातिर तारीख के घोषणा क दिले बा। आयोग के विज्ञप्ति के मुताबिक ए सीट पर चुनाव 18 जून के करावल जाई। वही दिन सांझ के मतगणना हुई। पूरा कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून के अधिसूचना जारी क दिहल जाई। 8 जून तक नामांकन दाखिल कल जा सकेला, जबकि 11 जून नामांकन वापस लेवे के आखिरी तारीख बा। बता दी कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदन के कार्यकाल 28 जून के पूरा हो रहल बा। ओजा आयोग पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली भइल विधान परिषद की एगो सीट खातिर उपचुनाव भी 18 जून के ही करावे के घोषणा कइले बा। जदयू के वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी दावा कैले बाड़ी कि विधान परिषद के सब 10 सीट एनडीए के खाता में आई। पटना में जदयू दफ्तर में पत्रकारन से बातचीत करत वह कहली कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास बा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहले बड़े कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारन के लेके आखिरी फैसला क ली हैं और प्रत्याशी लोगन के घोषणा भी जल्दीये क दिहल जाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आवे वाली विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव खातिर एगो सीट के मांग कैले बड़े। श्री मांझी पत्रकारन से बातचीत करत कहले कि हमनी के परिषद चुनाव में सीट मिलला से गठबंधन के फायदा होई। सऊदी अरब में सालाना हज में आज अरफात के दिन बा। एक हज के सबसे जरूरी दिन मानल जाला। इस्लामिक कैलेंडर के महीना जिलहिजा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदान अराफात में जुटल बाड़े और हज के नियम कानून पूरा कर रहल बाड़े। बिहार के 2552 श्रद्धालु ए हज यात्रा में शामिल बाड़े। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारी लोग बतौले कि ए साल हज करे वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन लोग खातिर बड़ इंजाम कइल गइल बा। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर स्वर सुमन इनरवा के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिल बड़े। थाना प्रभारी पर ड्यूटी में लापरवाही बरते के आरोप बा। पछुआ हवा के असर से अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सा में अलग अलग जगह पर आज तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आशंका बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिला में तेज हवा के साथ मूसलाधार पानी गिर रहल बा। कई जगह पर ओला गिरे के भी खबर बा। ओहिजा राज्य के दक्षिण हिस्सा भीषण गर्मी के मार झेल रहल बा। मौसम विभाग आजो राज्य के दक्षिण हिस्सा में कई जगह पर लू चले के संभावना जतैले बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोतोली के पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज।

अभी आपने अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर का गाया दो गाना सुना जिसे मिल जाता है फिल्म रईस से। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत तैयार किया था जैमीट ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिज

0: नमस्कार।
1: हाँ, नमस्कार प्रिया, कहो की हाल चाल।
0: बिल्कुल ठीक ठाक है चंपा बहन। और हमारे खेती गृहस्थी में हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। और हाल चाल का क्या कहें, गर्मी के मारे तो एकदम ऐसा लग रहा है ना, हालत खराब हो गई है।
1: हाँ, राति कतौ कतौ बरखा भेलैया, ताहिसँ किछु तऽ कनि मौसममे परिवर्तन आयल,
0: हाँ
1: बहुत नहि किछु।
0: हाँ लेकिन वो रात में थोड़ा हुआ शाम में, लेकिन अभी सुबह से फिर वही गर्मी। और जो गर्मी की वजह से ना, वो कहते हैं ना, हाइड्रेट नहीं रह पाते हैं, पसीना निकलता है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे उपाय करने ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो अभी परेशानी हो रही है लू की, उससे
1: हाँ,
0: बचना बहुत ज़रूरी है,
1: लू कोनो रौदे में रहला से नहीं होइ छै, घरों में
0: घर में भी। हाँ
1: बैसला से अहाँ के भ जाइ छै। चूंकि गर्मी एहन छै जे गर्मी ओना तो अति कोनो मौसम ठीक नहीं होइ छै। जाड़े में जब कप कप्पी होबय लगैए तो कोना मन बेचैन होबय लगैए। बरखा तहिना छै, लेकिन अपन अपन मौसम के अनुसार सबके हाई लेवल, कम लेवल, मध्यम
0: हाँ
1: होते
0: जरूरी
1: छे,
0: होता है।
1: प्रकृति के
0: हाँ प्रकृति का,
1: बनाओल छे।
0: लेकिन जिस तरीके से हम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: जिसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, और हम कहते हैं कि नहीं हमारी सहूलियत के लिए, तो मुझे लगता है भगवान ने इतनी सहूलियत पहले से हमें दे रखी है कि जिसका दोहन करना हमें ही भारी पड़ रहा है।
1: हाँ।
0: तो अभी जैसे गर्मी है, ऐसे में लू में बचाव, लू से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए, कि यानी पानी कम ना हो शरीर में, जितनी मात्रा में पानी होनी चाहिए, क्योंकि पसीने के मार्फत वो निकल जाती है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें उसका सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे सादे पानी के साथ साथ नारियल पानी, आम पन्ना, नींबू पानी और ओआरएस का सेवन करने से शरीर हाइड्रेट रहता है। वहीं
1: हाँ,
0: वही खाने पीने की बात करते हैं, तो हल्का खाना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हल्का फुल्का खाने से, यानी कि ज़्यादा मसालेदार, तेल में ये तला हुआ, उस तरह के खाने से ना हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है गर्मी के दिन में।
1: देखियौ, अखने कहलहुँ ना जे बेसी कोनो चीज ओ खराबिए करै छै सामान्य रूप से, खास के गर्मी के मौजार में लोग कहै छै कि एकर बेसियो खा लै छी तब
0: हाँ
1: पचि जाइए, मुदा गर्मी ओ नहि अछि।
0: नहीं
1: एहिमे अहाँके खाना ताजा रह के चाही। गर्मी में भले ही लोग चूल्हा के लग नहीं जाके मन करै छी, मुदा
0: हाँ
1: खाना भोर के बनाओ, सांझ और सांझ के बनाएल भोर में नहीं खाए के चाही।
0: क्योंकि वो महक जाता है।
1: हाँ, महक जाए छै। आ फ्रिज वगैरह में रखबो करब तो अहाँके ओ कीड़ा, ओकरो एकटा क्षमता छै जे कते समय धरि अहाँ रखै छी।
0: हाँ।
1: क्षमता से बेसी भऽ जायत तऽ फेर ओ खराब होबे करै छै। आ सबसे जँ हम लू से बचऽ के उपाय के बात करी तऽ सबसे पहिने तऽ जँ आवश्यकता नहि होय तऽ घर से नहि
0: घर से
1: निकली,
0: नहीं निकले। हाँ
1: मुदा काज धंधा लोग करैत अछि, काज करऽ के लेल निकलहे पड़ै छै, तो सावधानी से निकलऽ के चाही।
0: जरूरी है। तो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ और भी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कि जैसे हाइड्रेट की तो हमने बात की, तो वो पहले पानी वानी पी करके आराम से निकले। वहीं जो कपड़े पहने वो हल्के ढीले ढाले और पूरी बाजू की
1: यानी कि
0: सूती के
1: सूती
0: कपड़े
1: सूती
0: होना चाहिए।
1: कपड़ा है बाकी
0: हाँ
1: चाहिए।
0: वहीं धूप में निकलते समय छाता, टोपी और धूप के चश्मे का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि सर और आंख बचा रहे,
1: हाँ,
0: ये जरूरी है।
1: अच्छा, पेय पदार्थ में जेना कि लोग अक्सर थम्सअप वगैरह
0: हाँ कोल्ड
1: के वो
0: ड्रिंक्स
1: सब नहीं पीबऽ के
0: नहीं पीना
1: चाहिए,
0: चाहिए।
1: नहीं।
0: हाँ
1: एहिमे अहाँके नारियल पानि, नींबू पानि, छाछ, दही, लस्सी, ई सब एकटा प्राकृतिक
0: हाँ
1: उपहार अछि
0: उपहार है।
1: जकरा सेवन से शरीर सामान्य रहत। जलजीरा,
0: हाँ जल जीरा तो बहुत ही
1: जल
0: पसंदीदा है
1: हाँ,
0: मेरा।
1: आम के पन्ना बनाकर, कांच आम
0: हाँ
1: के पका कर या उबाल कर ओकरा रस बना कर अहाँ पी सकै छी।
0: और वही क्या होता है कि दोपहर के समय सीधे धूप में के संपर्क में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो एक और बात कि आप थोड़ी थोड़ा

0: आराम कर ले, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके बहुत सारा काम किया और थके हुए हैं गर्मी के मारे और आप सीधे धूप में निकल गए, वहीं नंगे पैर तो बिल्कुल ना जाए।
1: कि आवश्यकता
0: हाँ
1: आवश्यकता के है नहीं, अब क्यों बीमारे पड़ गेल
0: हाँ
1: या माल जाल के लिए कोनो चीज लाबे के, तब तो अहाँ के निकल ही पड़त, तो निकल पड़त तो सावधानी से,
0: बिल्कुल
1: चाहे वो वस्त्र हो, पेय पदार्थ हो। और सबसे बड़का लू भ गेला के बाद में प्याज के रस के सेवन करी, एक
0: हाँ
1: घरेलू उपचार है।
0: हाँ बिल्कुल। और आम का पन्ना जो है वो भी पी सकते हैं,
1: हाँ
0: और आम का जो छिलका होता है उबाल करके उसको तलवे में रगड़ना
1: हाँ वो
0: पूरे
1: साबुन जैका
0: शरीर में
1: लगा
0: भी।
1: कर नहा
0: हाँ
1: सके छी।
0: नहाने से उससे भी लू जाता है, तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो कर ले, और थोड़ा ध्यान रखे वहीं पे जो मौसमी फल है उसका सेवन कर ले, तरबूज खरबूज ये सब कर ले, और खीरा ककड़ी ये बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हमने बात की लू से बचाव की, धूप से बचाव की, गर्मी से बचाव की। अब जिसका इंतज़ार रहता है हमारे श्रोताओं, क्योंकि कुछ लोकगीत हो जाए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा गीत से। गायक कलाकार हैं रामेश्वर गोप।
1: सुनो।

0: रामेश्वर गोप की सुमधुर आवाज में हमने ये प्यारा सा गंगोत्री गीत सुना, बहुत ही प्यारा, और आगे भी जरूर इनसे सुनेंगे। हम बात कर रहे थे लू की, उसके साथ ही साथ एक और जो अभी जो समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे हम करें कि आमदनी की बात करें,
1: हाँ, वित्तीय व्यवस्था।
0: व्यवस्था की बात करें, तो ऐसे में ना कुछ कुछ चीजों की जानकारी होने से हम अपने जीवन को ना सुदृढ़ अच्छे से सरलता
1: हाँ,
0: पूर्वक
1: जानकारी
0: चला
1: राखब
0: सकते
1: तो
0: हैं।
1: जरूरी अच्छी है, तखने हम ओहि अनुसार अपन जीवन के प्लानिंग कर सकै छी
0: हाँ
1: आगू के। तो एही से जुड़ल एकटा भेंट वार्ता सुनवा रहल छी। वित्तीय साक्षरता, भेंट वार्ताकार छथि निर्मल कुमार रंजन आ हुनका से भेंट कऽ रहल छथि आशीष कुमार रंजन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी पटना में आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थों में एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है अर्थ, धन। धन मतलब फाइनेंस। फाइनेंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं निर्मल कुमार प्रभात, एनके प्रभात, जो एनके प्रभात एकेडमी के सीईओ एंड फाउंडर हैं और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर आज मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे एक अवसर दिया कि देश की जनता को हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता सकें और वित्तीय साक्षरता के बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, डॉक्टरी पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, वकील बन जाए, लेकिन फाइनली उसको ये सारा कुछ बनने के बाद जो करना है उसका ज्ञान नहीं रहता है। हम सभी जो तरीके पढ़ते हैं उससे हमारा काम होता है पैसा अर्निंग करना, अर्थोपार्जन करना, ये तो बात आप समझते ही हैं। अर्थोपार्जन तो करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ जो है वो हमारे मन में कुछ भावनाएं पैदा करती हैं, जैसे ग्रीड मतलब लालच और फियर डर, ये दो चीज पैदा करती हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हम कमा चाहे कुछ भी लें, लेकिन लालच के कारण कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा पैसा नुकसान होता है और हमारे मन में प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण हमारा पैसा सेविंग नहीं हो पाता है।
2: जाहिर सी बात है कि आपने भी कहा कि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, जिसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता,
3: जी
2: उसके
3: जी
2: बारे में बातें कम होती।
3: हाँ
2: पर्सनल फाइनेंस है क्या?
3: हाँ
2: इसकी शुरुआत कैसे करें?
3: जी, फाइनेंस एक चीज है कि फाइनेंस जैसे जिसे हम वित्त कहते हैं, एक कैपिटल होता है, पूंजी जिसको कहा जाता है, और एक मनी होता है जिसको धन कहा जाता है। अब यहाँ पर धन क्या है और पूंजी क्या है और फाइनेंस क्या है, वित्त क्या है, इन तीनों में अगर थोड़ा सा अंतर समझें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। पूंजी जो होता है वो चल अचल पूंजी हो जाता है, आप जमीन है वो आपका पूंजी है, मकान है आपका पूंजी है, और धन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आप धन के आदान प्रदान से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपने शौक को पूरा करते हैं, जैसे धन जो है मनी आपके जेब में पड़ा हुआ है या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये एक तरह का धन हुआ। लेकिन फाइनेंस क्या है आशीष जी? फाइनेंस वो आपका मनी कहलाता है, वो धन कहलाता है जो कि कुछ अर्निंग के लिए, किसी उपार्जन के लिए उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो कोई कैपिटल मंत्री नहीं बनाता या धन मंत्री नहीं बनाया जाता, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फाइनेंसेस का यूज करेंगे, वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे,
2: जी
3: तो यही कहलाता है फाइनेंस। अब हमारे लाइफ में भी जो धन हमारा पड़ा हुआ है या जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, धन उपार्जन करते हैं, उसको फाइनेंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करें ताकि वो धन हमारे लिए कुछ अर्निंग करके दे।

0: या हमारे बुरे दिनों में भी सहायता करें हमारी। तो वही पर्सनल फाइनेंस के कैटेगरी में अगर हम करें उसको, अब देखिए यहाँ पर आपको दो कैटेगरी बता देता हूँ, एक तो बिजनेस फाइनेंसिंग हो गया और एक पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया। तो बिजनेस तो हो गया कि भाई कोई भी आदमी दुकान खोले, बिजनेस करे या कोई भी काम करे तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो एक फाइनेंस हो गया। और हम जो अर्निंग करते हैं उसमें हम अपने यूज के लिए जो फाइनेंसेस का यूज करेंगे वो पर्सनल फाइनेंस हो गया।
1: जी, जो बात पर्सनल फाइनेंस की हो रही है तो ज़्यादातर लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो इमरजेंसी फंड के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, इमरजेंसी फंड के बारे में जानकारी नहीं है, या उन्होंने लाइफ में कभी इमरजेंसी फंड बनाया नहीं है। तो पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है और इसको कैसे हम बना सकते हैं?
0: बिल्कुल सर, आपने जो बात कहा यही इसकी मेन चार्म है। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन या पर्सनल फाइनेंस का जो मेन पर्पस है यही होता है, यही जो आपका क्वेश्चन है सब कुछ डिफाइन कर देता है। अब सर आप कमा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, उसके पैसे का प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वो कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसको हाथ पसारने के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। लोगों को कमाते हुए देखा होगा आपने कि लोग लाखों कमाते हैं लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो वो हाथ फैलाते हैं किसी के आगे, जबकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको देखिए पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में कई बातें आती हैं। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो जैसे आप 30 साल का कोई लड़का है, आज नौकरी ज्वाइन करता है, तो 60 साल के बाद उसका एक विजन होना चाहिए कि अगर कुछ प्लान करता है तो किस तरह से प्लानिंग करेगा। जैसे किसी भी आदमी को अगर आज के डेट में 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है तो ईयर दर ईयर क्या ग्रोथ होता है, तो सारा सरकार पहले ही प्लान कर देती है क्या प्रमोशन होगा, कितना पैसा मिलेगा, कब कितना होगा, ये सारा आपको नियर अबाउट पता चल जाता है या प्रीवियस डाटा से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके आधार पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लेना चाहिए, आपको अपना इंश्योरेंस प्लानिंग कर लेना चाहिए, आपको अपना पर्सनल फाइनेंस में इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी से पूछ के नहीं आता। सपोज करिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में क्या करेंगे? आप एक घर के मेन अर्निंग पर्सन हैं तो आपका इलाज के लिए, आपके परिवार का सपोर्ट के लिए, आपके बच्चों का एजुकेशन होगा, उसके लिए आपने क्या जमा करके रखा? अगर आपने ऐसा कोई फंड नहीं बनाया तो निश्चित रूप से आपको जमीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को सपोर्ट चाहिए, आपका इलाज चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड जो आपातकाल वित्त होता है, आपातकाल के लिए धन होता है, उसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं, अपने अर्निंग में से ऐसे कर्टेल करके रखिए कि वो भी ग्रो होते रहे, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड को हमेशा छेड़ा नहीं जाता है, वो हमेशा के लिए रखा जाता है। गाँव में या किसी भी परिवार में औरतें सोना बड़ा प्यार से रखती हैं। सोना का ये क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, नहीं, वो उसका इमरजेंसी फंड है। लेकिन इसी को अगर आप एक एजुकेटेड भाषा में यूज करें तो अपने से एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए।
1: जी, आपने अच्छा कहा कि सभी लोगों को अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के अगर क्षेत्र में हम आते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, सामान्य तौर पर देखा गया है अगर इन्वेस्ट करना है तो हम सोना में इन्वेस्ट करते हैं या ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं। इससे इतर अगर हम जाएँ तो हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताएँ।
0: अच्छा, तो आशीष जी ये एक क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है मेरे लिए और मुझे बड़ी खुशी होगी हमारे श्रोताओं को ये बताने में कि सोना एक इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यूज करते हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना एज ए इन्वेस्टमेंट प्लानर कि सोना या चांदी, ये जो जो प्रेशस मेटल्स हैं, इसमें आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 20% इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना अकलमंदी नहीं है, चालाकी नहीं है। आप शौक के लिए अगर चेन रखते हैं, रिंग्स रखते हैं, तो ये शौक के लिए एक आध गहने लीजिए, अब इसको इन्वेस्टमेंट में मत गिनिए क्योंकि वो घिसेगा, वो एक तरह से यूजेज है। लेकिन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 to 20% एट द मोस्ट, ठीक है। इसके अलावे आपका एक ऐसा फंड क्रिएट होना चाहिए जो कि इन फ्यूचर आपको आपकी आवश्यकता की चीज़, आपकी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सके। अब देखिए आजकल लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं,

0: शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको ट्रेडिंग के लत में बदल लेना वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, वहाँ पर लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण, प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण आप लॉसेस करते हैं और तब कहते हैं कि शेयर बाजार खराब है।
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉपर नॉलेज इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए, तब अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और आज के डेट में उससे भी एडवांस वर्जन ईटीएफ है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाता है।
1: जी, तो ये देखा गया है कि 2020 के बाद यानी कोरोना काल के बाद ट्रेडिंग की लत बढ़ गई है, और जैसा सेबी का रिपोर्ट भी है, लगभग 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2020 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लोग घर में बैठे, अब घर में बैठने के बाद उनके पास तो करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोगों ने एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढना शुरू किया और उसमें दिखा इनको स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी बढ़ी तो बिना जानकारी का लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू किए, और ये एक ट्रेडिंग उनका जो हुआ एक लत में बदला, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी होती है कि आप ग्रीड ऑन फियर के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो लालच में आकर के खरीदेंगे और डर में आकर के बेचेंगे, जिसके कारण आपके प्रॉपर डिसीजन नहीं होंगे और लॉसेज हो जाते हैं, और ये एक तरह से आपको एडिक्टिव होता है, आपको नशे के लत में डाल देता है। फाइनेंस का एक ऐसा स्वभाव ही है कि नशे के लत में डाल देता है। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है जिसको मैं कहूँगा। अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर नॉलेज लेकर करें तब तो ठीक है, वरना ऐसे बस काम करना बिना जानकारी का वो जुए के लत जैसा है, वो आपको नुकसान करेगा, हेल्थ को भी नुकसान करेगा, आपके फाइनेंशियल हेल्थ को भी नुकसान करेगा, आपके फैमिली लाइफ को भी नुकसान करेगा। तो जिन्हें भी करना है प्रॉपर नॉलेज लेकर के करें और हमेशा उसमें लगे रहना, कहीं चतुराई नहीं है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में ना आए।
0: बिल्कुल
1: जैसे एक मध्यवर्गीय परिवार है जिसकी मासिक आमदनी लगभग 50,000 अगर है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से करे, किस तरह से म्यूचुअल फंड खरीदे, किस तरह से अपना सेविंग करे कि उसका रिटायरमेंट प्लान भी इसमें शामिल हो सके।
0: बहुत बेहतरीन चीज। अगर कोई 50,000 रुपया अर्न कर रहा है तो उसको टोटल अर्निंग का कम से कम 20% उसको सेविंग करना ही करना चाहिए। टोटल अर्निंग का 20%, अब इसमें कितना हो जाता है, नियर अबाउट 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और आपका इससे आपके पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 10,000 रुपया अगर एसआईपी के रूप में, और अगर ट्रेनिंग लेकर के प्रॉपरली करते हैं, एसआईपी भी करते हैं सही से सीख करके, म्यूचुअल फंड हो ईटीएफ हो सीख करके करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, तो आपका ये बहुत बेहतर रिटर्न देगा। और अगर 20 साल की बात करें तो 20 साल में एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनाएगा। आजकल इंटरनेट पर एसआईपी कैलकुलेटर हैं, आप इंटरनेट पर खोज करके एसआईपी कैलकुलेटर, उसमें देख सकते हैं कि कोई फंड अगर 15% का रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है, तो 20 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 30 साल के बाद आपको क्या मिलेगा। और जनरली आदमी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, ना कि आपके जरूरत की चीजों को काट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो 20% एक जस्टिफाइड है।
1: हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आशीष जी, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है।
2: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी भेंट वार्ता सुनी, वित्तीय साक्षरता। भेंट वार्ता का अर्थ है निर्मल कुमार प्रभात, भेंट करता थे आशीष कुमार रंजन। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद के बीच जानकारी ली उन्होंने आशीष जी ने निर्मल जी से, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि
3: और एकटा चौपाल के संपन्न हुआ के समय भ चुकल अछि, तो एकटा
2: हाँ
3: एकटा पहले
2: लोक भजन हम सुन लेते हैं रामेश्वर गोप की सुमधुर आवाज में।

0: बहुत ही प्यारा ये लोक भजन हमने सुना रामेश्वर गुप्त की सुमधुर आवाज में। और चंपा बहन,
1: हाँ,
0: अब
1: चौपालक
0: चौपाल की
1: समय
0: घड़ी यहीं
1: संपन्न
0: समाप्त हो रही
1: भवन।
0: है। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल

0: किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: तो खेती गृहस्थी में हम बात फसल उत्पादन की करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम व्यवसाय की बात करते हैं कि हमारे किसान भाई और बहन किस तरीके से अपने पूरे साल, जैसे कहते हैं ना कि साल पूरे साल खेती नहीं होती, उसमें कुछ अलग से व्यवसाय भी करना आवश्यक होता है।
5: देखियो, खेती एहन चीज़ है जो बारहो मास कोनो न कोनो फसल के आवागमन लगते रहे छे। एक के कटाई भेल तो दोसर के बुआई भेल, रोपाई भेल। तो कृषि में जहाँ खेत में काज हेतै तो ओकर रसायन खाद उर्वरक के देवों के प्रक्रिया होते रहे छे। अब जना कि हम सब कई एक बेर करै छी जे वर्षा होबे लागल तो किछु यूरिया खरीद के रख लेलहुँ।
4: हाँ,
5: जना है तो खेत में पटवा दिली जहाँ जहाँ जो।
4: हाँ, मतलब बिल्कुल उसके प्रयोग का जो है ना, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उसका प्रयोग करना पड़ता है।
5: तो जत भी रासायनिक वो एक तरह से पॉइजन भेल है।
4: हाँ,
5: है ना। तो ओहि पॉइजन के उपयोग करे में एहन कतेको बेर किसान के मजदूर के जे खेत में काज कर रहल छथि हुनका से कनी भ जाय छन असावधानी, जकरा कारण कई के जान गमाव पड़ जाए।
4: हाँ, इसलिए जरूरी है कि जब भी कृषि रसायनों का प्रयोग करें तो सुरक्षित तरीके से करें। जैसे जब छिड़काव करने की बात आए तो सबसे पहले उस रसायन के पैकेट पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें और हमेशा अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। मतलब जो मात्राएं दी गई हैं उसी का प्रयोग करें। हमेशा पूरे शरीर को, जब भी आप रसायन का उपयोग करना जा रहे हैं तो हमेशा पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े, रबड़ के दस्ताने, मास्क, गम बूट और चश्मा पहने, जिससे कि कुछ भी अगर हुआ तो मास्क वास्क लगाने से कैसे होता है कि अभी आपने कहा कि अगर असुविधा की तो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप बचाव के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए।
5: खास के घर में धियापुता के नहीं बुझल रहे छे की छे, तो एक तो उते खरीद करके ओकरा स्टोर करके रखा को कोनो जरूरत
4: नहीं छे। जब जरूरत पड़े तभी आप लेकर आए।
5: हां, गोदाम में कतो राखल छे जे तो कि कोनो माल जाल या कोनो धियापुता के आवागमन नहीं होए तो ओई ठाम से ओकरा सचेत भ क जखन ओकरा उपयोग करी तो एतेक सावधानी से करी कि ओकर गंध जो है सो नाक के द्वारा नहीं जाए।
4: बिल्कुल। और जो रखने की बात है तो रसायनों को हमेशा हवादार जगह पर और साफ पानी के साथ मिलाकर
5: ओकरा संगे संगे खेत में यदि फसल लागल है या खाद के उपयोग कैली तो एहो ध्यान रहे कि कोनो माल मवेशी न चल जाए।
4: हाँ,
5: चूंकि ओकरो ले लो खतरा।
4: हाँ, वो अगर कुछ खा लिया तो उससे भी हो सकता है। तो और वही नंगे हाथों से रसायनों को कभी नहीं छूना चाहिए। वही तेज धूप या बारिश हो रही हो तब इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले तो हवा की दिशा देख लेनी चाहिए कि किस तरफ से है।
5: हाँ,
4: तब इसे स्प्रे के द्वारा जो मतलब हम छींटते हैं ताकि रसायन
5: यहाँ लिक्विड छे तो स्प्रे के द्वारा छींटबे। और बहुत एहन सूखल खाद पदार्थ होय छे जकरा कि यहाँ के
4: मिला करके
5: ऐसे सूखा जब खेत में सिंचाई कला के बाद उनमें छिड़काव कर जाए छे।
4: हाँ, तो
5: कई एक तरह के हम
4: तो छिड़काव करते समय कुछ भी खाए पिए, धूम्रपान ये सब तो करना ही नहीं चाहिए।
5: तो
4: ये जो महत्वपूर्ण बात है। और अगर छिड़काव पंप में कोई रिसाव नहीं होना चाहिए, मान लें कि आप पंप के द्वारा कुछ कर रहे हैं और उसका रिसाव हो रहा है, तो सबसे पहले तो देख लें। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं अगर उसका नोजल ब्लॉक होने हो जाता है, नोजल निकालने वाला ब्लॉक हो गया, तो ऐसा नहीं कि मुंह से खोलने लगे, होता है ना बहुत बार कि मुंह से खोलना शुरू कर दिया, तो ये सब जो है ना ये बिल्कुल ना करें। तो ये तो हुई कि कृषि रसायनों का किस तरीके

सुरक्षित प्रयोग करें ताकि हर कोई सुरक्षित रहे। अब जैसा कि हम लोकगीत जरूर सुनवाते हैं अपने कार्यक्रम में, तो फिर से रामेश्वर गोप की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा पूर्वी।

0: ही प्यारा ये पूर्वी हमने सुना रामेश्वर गोप की सुमधुर आवाज में। समय रहा तो और भी सुनेंगे, लेकिन
1: हाँ
0: अभी सुनते हैं एक वार्ता, जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव। वार्ताकार है आलोक कुमार।
2: जलवायु परिवर्तन वास्तव में विकसित और विकासशील देशों के बीच वाद विवाद का एक मुद्दा बन गया है। संसार के अधिकांश लोगों के लिए हो सकता है कि यह महज एक खबर हो और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का विषय, लेकिन विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि खेती, भोजन, पानी, हवा, आजीविका, आवास एवं स्वास्थ्य आदि सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है और कभी न कभी हम सभी का जीवन जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग या द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग विनाशकारी समुद्री तूफान का कहर झेलने को मजबूर हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इनका जीवन काफी प्रभावित होता है। उसी प्रकार मैदानी और अन्य भागों में रहने वाले लोग असामान्य मानसून, जल संकट, सूखे एवं बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे लोग कई बार अपने मूल निवास स्थान से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वास्तव में यह सभी प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर सबसे अधिक कृषि पर होने की संभावना रहती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर काफी अधिक प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लाभदायक प्रभाव की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव काफी अधिक हैं। हमारे देश की कृषि मुख्य रूप से मौसम पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर काफी अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में कृषि एवं कृषि के विभिन्न घटक जैसे जैव विविधता, फसलों की उपज, सिंचाई, मिट्टी इत्यादि जलवायु परिवर्तन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में मौसम में जो विपरीत परिवर्तन होंगे उसको रोकने के लिए अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो कृषि के उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। वास्तव में इन सभी परिणामों के लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मनुष्य हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहा है, जंगलों की कटाई के साथ ही इसमें रहने वाले जीवों को आश्रय विहीन कर रहा है, जिससे जंगली पशु पक्षी और अन्य जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। गिद्धों की संख्या लगभग नहीं के बराबर रह गया है, जिसके कारण मरे हुए जानवरों के लाश खुले में सड़ती रहती है और परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है। शहरों ही नहीं बल्कि गांव में भी मकान और गोदाम आदि बनाने के लिए खेत खलिहानों को उजाड़ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यह अपर्याप्त है। वास्तव में पर्यावरण संतुलन के लिए सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को आगे आना होगा और पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी होगी। संसार में मनुष्य की आबादी गुणोत्तर दर से बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती योग्य जमीन लगभग सीमित है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को उचित पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाने के लिए और खाद्य आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए विश्व में कृषि उत्पादन को 2050 तक दोगुना करने की आवश्यकता होगी, ऐसा खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत 7वें स्थान पर था, जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यह 8वें स्थान पर है। इस प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है और इसका कारण है कि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखने की शर्त को पूरा नहीं कर पाया है। यह सूचकांक स्पष्ट करता है कि भारत सहित संसार के बाकी देश भी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से प्रभावित है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। एक समान वर्षा नहीं होने के कारण फसलों का उत्पादन काफी प्रभावित होता है। भारत के बहुत सारे गांव में हरियाली और पेड़ पौधों का अभाव है। राजस्थान में तो हरियाली का और अधिक अभाव है। बहुत से गांव में तो मवेशियों के लिए चारे का भी अभाव होता है। इन सब कारणों से वैसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने गांव में खेती की जमीन छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं और मजदूरी का काम करने को विवश होते हैं, क्योंकि उन

के पास किसी भी प्रकार का कौशल नहीं होता है। भारत के किसान इस मामले में भाग्यशाली है कि उसके हिस्से में मॉनसून की अच्छी वर्षा आती है, लेकिन दूसरी ओर तापमान के बढ़ने से भी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर और एक राज्य के अंदर भी अलग अलग जिलों के मौसम में विविधता देखने को मिल जाती है। 2022 के जारे में राजस्थान के बीकानेर में पाले का प्रकोप काफी अधिक देखने को मिला, जबकि जोधपुर, जैसलमेर आदि में स्थिति अलग थी। बेर जैसे पौधे पर भी वहाँ पाले का अत्यधिक प्रभाव दिखा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछबाल बीकानेर, जो कि राजस्थान में है, वहां के सभी बेर के पौधे, अनार के पौधे और कुछ अन्य पौधों को पाले ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सन 2100 के आते आते फसलों की उत्पादकता में लगभग 10 से 40% तक की कमी आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी और पाले से होने वाले नुकसान में कमी आ सकती है। इस प्रकार जो फसल पाले से अधिक प्रभावित होती है उनका कम नुकसान होगा, जैसे आलू, मटर और सरसों। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और बाढ़ की समस्या में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता की स्थिति आ जाएगी। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बनी रहती है और जिसके कारण बाढ़ के समय फसल उत्पादन में अनिश्चितता तय होती है। अगर जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार से होता रहा तो आगे चलकर यह समस्या और विकराल हो जाएगी। कुछ परिस्थितियों में तो फसलों को बोए जाने का क्षेत्र भी बदलना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उस फसल के गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मुजफ्फरपुर के लीची का क्षेत्र बदलना पड़ा तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि गुणवत्ता पर कितना असर पड़ेगा। अभी के समय में लीची को कई अलग अलग जगहों पर लगाकर देखा गया है कि इसके उत्पादन और गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जितना गुणवत्ता युक्त उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है वह कहीं नहीं प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रों और नदियों में के पानी का तापमान बढ़ सकता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जलीय जीव और मछलियों की प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्षेत्र आधारित एवं दूसरा फसल आधारित। इसके अनुसार एक क्षेत्र के प्रत्येक फसल पर या विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। रबी एवं खरीफ के मुख्य फसलों पर इसका प्रभाव दिखने लगा है और भविष्य में अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब इनकी उत्पादकता में काफी कमी आ जाएगी। भारत में कुल फसल उत्पादन का 42.5% हिस्सा धान की खेती का है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे ही इसका उत्पादन घटने लगेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से धान के उत्पादन में लगभग 0.75 टन प्रति हेक्टेयर की कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण धान की फसल गेहूं की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि भारत में धान मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है। धान की फसल को इन हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए तापमान रोधी किस्मों का विकास करने की आवश्यकता होगी। बाढ़ वाले इलाके के लिए धान की जलरोधी किस्मों का विकास करना एक उपाय हो सकता है। फसलों की विकास अवधि, फसल विकास और फसल गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन का असर होता है। तापमान में वृद्धि के कारण पौधों की वृद्धि में गति आएगी और परिणाम स्वरूप वार्षिक फसलों की बुआई और कटाई के बीच की अवधि कुछ छोटी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मकई की फसल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और इसकी बुआई से कटाई की अवधि में 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक की कमी आ सकती है, लेकिन मकई के विकास अवधि के कम होने से इसकी उत्पादन क्षमता में भी कमी आएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फसल चक्र के छोटा होने से किसी फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अति आवश्यक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फसलों के विकास पर लाभदायक और हानिकारक दोनों तरह के प्रभाव हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप लाभदायक परिणाम होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 380 ppm है, जो कि अगले 30 से 50 वर्षों में 450 ppm हो जाने की संभावना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों में कम रंध्र निकलते हैं, जिसके कारण जल का उपयोग कम हो जाता है। C3 पौधों जैसे कि गेहूं, धान, सोयाबीन आदि पर C4 पौधों जैसे कि मक्का और ज्वार की अपेक्षा बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पौधों द्वारा नाइट्रोजन लेने की मात्रा में कमी करता है,
जिसके कारण उन पौधों में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इससे विकासशील देशों के लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके

0: पास भोजन की उपलब्धता सीमित या कम होती है। चारा फसलों में नाइट्रोजन की कम मात्रा पाए जाने से भेड़ों के पेट में पाए जाने वाले जीवाणु कम सक्रिय होता है, जिससे भेड़ चारा को आसानी से नहीं पचा पाता, क्योंकि यह नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही सक्रिय होता है। इस प्रकार भेड़ों की उत्पादकता में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होगी, जिसके कारण फफूंद जनित रोगों का विकास हो सकता है, साथ ही कीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अधिक वर्षा होने के कारण मृदा क्षरण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर मृदा को अधिक जल की उपलब्धता होगी। अगर सूखा पड़ता है, जो कि अधिक तापमान के कारण हो सकता है, तो मृदा में जल की कमी हो सकती है। इस प्रकार मृदा काफी शुष्क हो सकती है।
1: तो अभी हमने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी, जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव। वार्ताकार थे आलोक कुमार, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते, जैसा कि हमने वादा किया था कि ज़रूर आपको एक लोकगीत सुनाएंगे, तो सुनिए सुनिए ये कृषि गीत रामेश्वर गोप की आवाज़ में।

0: तो अभी हमने बहुत ही प्यारा ये कृषि गीत सुना रामेश्वर गोप की सुमधुर आवाज में। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल आएंगे इसलिए आज जाना जरूरी है। क्यों चंपा बहन? नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार प्रिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का एक पटना केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष किए पूरे। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं समेत विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। पुस्तक में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी हैं। श्री यादव ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के निर्णयों से देश कठिन परिस्थितियों में विकास पथ पर अग्रसर रहा है।
2: कोरोना के काल से निकाल करके हिंदुस्तान की आवाम को आगे ले जाने का काम, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और क्षमता रखने का काम, ये मोदी के कुशल नेतृत्व का ही तो परिणाम है जो 12 साल का है। एक नहीं, अनेकों काम किया है। तो कई ऐसे इशू थे जिस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है और देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामना, बधाई, स्वस्थ रहें और देश के सेवा करते रहें।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश की बड़ी ताकत है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार शपथ लेते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं।
3: 12 वर्ष हुए हैं, ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है, ये हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
0: केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति देश भर में घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को ही कराए जाने की घोषणा की है। जदयू की वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि विधान परिषद की

0: सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास है।
1: जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कर लेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
2: एनडीए मिलकर जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 1 सीट की मांग की है। श्री मोझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमको परिषद चुनाव में सीटें मिलने से गठबंधन को फायदा होगा।
3: हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।
0: राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री सरावगी ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIRNews की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के मुख्य रस्म को पूरा कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव के कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
7: दिनांक 27 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे

0: घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि आंधी के कारण अलीगंज स्थित आकाशवाणी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। हालांकि FM और न्यूज ऑन AIR ऐप से समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जा रहा है।

0: जन 25 मई से शुरू हुआ है जो 27 मई तक जारी रहेगा। मेले के पहले दिन कल 13,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। इनमें 1,876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। मेले के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेले में आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है।
1: भरोसेमंद मेला है के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई ITI किया है उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे, हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
0: रोजगार मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका मिश्रा।
2: पटना ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेंस T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 23 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष सिंह के धुआंधार 92 रन की बदौलत पटना ने 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में बेगूसराय की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए घाट पर एक विशेष टीम तैनात कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने आज DRDA सभागार में जिले में बाढ़ और सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
1: सीतामढ़ी जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीतामढ़ी जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जहां लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से

0: सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान राज्य की उद्योग मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह भी सहयोग शिविर में शामिल होने पहुंची। उनके आगमन पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे सहयोग शिविर में आएं ताकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इधर जिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद ठाकुर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा तथा विपक्ष पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड स्थित महुआबा पंचायत ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। पंचायत को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और सौर ऊर्जा आधारित नवाचारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। महुआबा पंचायत की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नगर परिषद जनकपुर रोड पुपड़ी के जेई विजय शर्मा को निगरानी विभाग की टीम ने 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एग्री स्टेक परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी रिचि पांडे को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सम्मानित किया गया। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत जिले में अब तक 1,80,000 से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। सीतामढ़ी जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले की 50,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
2: ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कुछ भजन। कलाकार हैं शुभ्रा चटर्जी। प्रस्तुत है पहले इनकी आवाज में सूरदास की ये भक्ति रचना।

सूरदास का भजन अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी शुभ्रा चटर्जी जी के साथ। आज का हमारा ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं रेडी फिल्म के लिए गाए इस गाने से, तुलसी कुमार और के युगल स्वर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: लेकिन सुनिए, वीर फिल्म का ये गाना है, आवाजें हैं रूप कुमार राठौर, श्रेया घोषाल, सुजैन धीमलो और साथियों की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इसके पहले जो गीत आपने सुना था, फिल्म थी पति पत्नी और वो, कलाकार थे अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ और रोचक। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

यह है भूल भुलैया 3 का गाना जिसे हमने लिया है आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाज़।

इस गीत के साथ ही श्रोत और फिल्म संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम अब यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए पेश है अब सुगम संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: भूपेन सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे

0: देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: Economic resilience should be promoted.
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: Undertake more exchanges as we intend to do.
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: कागज कलम नहीं इस बार मोबाइल की नई पहल है, लेखा जोखा जानकारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साई रमुजतबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees. To 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in the Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The High-Level Committee will conduct a

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत

0: बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज़ की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीक़ों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर BSF, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक BSF की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरतहाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने टैप्तोलोगी के और किडरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया।

0: गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पार जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरखास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हासिलशुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का इहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आदमी ने हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समाअत की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज किराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज किराम रमीय जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुँचेंगे, जहाँ कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमीय जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेब 483 देशों की मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है अब नाटक रूह का रिश्ता।

आमीन। शानदार ड्रामा जिसका उन्वान रूह का रिश्ता है, पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तहरीर है नोमान हाशमी की और शुरका हैं एम एच रैहान, रुखसाना सिद्दीकी, अशफाक अहमद, सुनील कुमार सिन्हा और अर्चना सोनी।

0: प्रीति, कहो कैसी हो?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो?
0: बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
1: फर्स्ट क्लास तो तुम हर इम्तिहान में लाती ही हो।
0: लेकिन तुम तो टॉप क्लास हो।
1: सब समझती हूँ, क्या मैं वाकई तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
0: अरे ये किसने कहा, तुम तो कयामत हो, कयामत।
1: और तुम कयामत से डरते हो क्यों?
0: तुम जैसी हसीन कयामत से डरना क्या?
1: तो फिर इस कयामत को गले क्यों नहीं लगा लेते?
0: जाने मन झुलस जाने का डर है।
1: दिल को करना है।

0: मज़े मोहब्बत में कबाब, करवटी आग के बिस्तर पे बदलना सीखो।
1: हाँ, अच्छा शेर है।
0: सच कहती हूँ डियर, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है।
1: हाँ रोजी, जिंदगी तो शादी के बाद ही मुकम्मल होती है।
0: तो तुम अपनी और मेरी जिंदगी कम मुकम्मल बना रहे हो।
1: जब हमारी शादी हो जाएगी।
0: यही तो जानना चाहती हूँ कि कब तुम मुझसे शादी कर रहे हो।
1: तुम मुझसे शादी करोगी तो उस बेचारे दिलबर का क्या होगा? वो तो बेमौत मर जाएगा।
0: मरने दो, बहुत घमंडी है।
1: तुम पर तो बहुत लोग मरते हैं।
0: लेकिन मैं तो तुम पर मरती हूँ।
1: मुझे फांसी दिलवाओगी क्या? अच्छा, मैं लाइब्रेरी चलता हूँ, बाय।
0: तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
1: अरे बाबा, वक्त आने पर दे दूंगा,
0: कहीं ना वक्त ना हो जाए।
2: हाय हैंडसम।
1: हाय हीरो।
2: अब मैं हीरो कहाँ रहा भाई, मैं तो जीरो बन गया हूँ।
1: यार जीरो की भी बड़ी अहमियत होती है। एक पर जीरो लगा दो तो 10 बन जाए, और 10 पर जीरो लगा दो तो 100 बन जाए।
2: मैं हिंसे के दाएं नहीं बाएं वाला जीरो हूँ। आजकल तुम्हारा और रोजी का रोमांस तो शबाब पर है।
1: रोमांस शबाब पर नहीं है, आताब शबाब पर है।
2: रोजी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि उसे कैसे लड़के से शादी करनी है।
1: ओह, इसीलिए वो अभी तक सिर्फ लड़कों को परखती फिर रही है।
2: अगर वो लड़कों को सिर्फ परखती फिरती तो कोई बात नहीं थी भाई, वो तो लड़कों को चखती फिर रही है।
1: क्यों, तुम्हें भी चखा होगा?
2: मुझे तो सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि चट कर गई है। जरा उससे बचकर रहना, वो सिर्फ जख्म लगाना जानती है, मरहम नहीं।
1: जबकि वो एक डॉक्टर की बेटी है।
2: भाई डॉक्टर तो नहीं है ना।
1: अच्छा दिलबर, मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूँ।
2: मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम और भी जाओगे कहाँ? बाय द वे, तुम्हारी मंसूब का क्या हुआ जो तुम्हारी खालाजात बहन से चल रही थी?
1: तरक्की पजीर है।
2: मुबारक हो, मुबारक हो।
1: घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे और रोजी के दरमियान से हट जाऊंगा।
2: वो तुम्हें हटने देगी जब ना?
1: देखते जाओ, वो खुद ब खुद हट जाएगी।
2: हाँ, मैं भी देखूंगा।
0: हाय हैंडसम।
1: हाय स्वीटी, कैसी हो?
0: जिंदा हूँ, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी।
1: ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।
0: इतना गुरूर अच्छा नहीं आफाक।
1: तौबा तौबा, मैं और गुरूर, खुदा ना करे। मैं लाइब्रेरी में था और तुम्हें लाइब्रेरी से बैर है।
0: मुझे हर उस चीज से बैर है जो हमारे और तुम्हारे मिलने में हायल होती है।
1: ये भी अच्छी रही।
0: चलो कॉफी पीते हैं।
1: कहाँ?
0: कैंटीन में। और कहाँ?
1: वो भी कोई जगह है बैठने की?
0: फिर तुम जहाँ ले चलो।
1: हाँ आओ, उस दरख्त के नीचे बैठे, पेड़ की नाजुक डालियां हमें पंखे झलेंगी।
0: और मैं तुम्हारे कांधे पर सर रख के सो जाऊंगी।
1: अरे तो क्या मैं रात भर यहीं बैठा रहूंगा?
0: सुना है तुम्हारी शादी तुम्हारी खालाजाद बहन से हो रही है।
1: बात चल रही है।
0: तुम्हें पसंद है क्या?
1: इसमें मेरी पसंद को कोई दखल नहीं है।
0: वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है।
1: तुमसे उसका क्या मुकाबला? तुम सुबह खैर हो, वो शब खैर। तुम सरोकद हो, वो पस्तकद। तुम हसीनो जमील हो, वो कभी हो अलील।
0: बस बस बस, और मेरी तारीफ मत करो वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी।
1: गुरूर तो हुस्न की शान है।
0: लेकिन मेरी शान तो तुम हो आफा।
1: अब हमें चलना चाहिए।
0: चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।
1: मैं बेकार आदमी हूँ, कार पर बैठने से मुझे बुखार आ जाता है।
0: आज बुखार नहीं आएगा।

0: आज तो बुखार के साथ साथ खुमार भी आ जाएगा,
1: वो क्यों?
0: साथ में मैं से लबरेज मीना जो है
1: चलो बैठो।
0: ये शास्त्री जी का दफ्तर है।
1: कौन शास्त्री जी?
0: अरे शहर के बहुत मशहूर पामिस्ट हैं, तुम इन्हें नहीं जानती?
1: वही तो नहीं जो अखबारों में पेशन गोइयां किया करते हैं?
0: हाँ वही।
1: तुम्हें उनसे क्या काम?
0: सुना है ये हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल की सही बातें बता देते हैं।
1: तो
0: तो ये डार्लिंग कि हम उनसे अपनी शादी के बारे में पूछेंगे।
1: गुड आइडिया, चलो चलते हैं।
0: आदाब शास्त्री जी।
1: आदाब।
2: आदाब आदाब, आइए पधारिए।
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
0: हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं।
2: जरा हाथ तो दिखाइए।
0: रोजी, पहले तुम हाथ दिखाओ।
1: नहीं, पहले तुम हाथ दिखाओ।
2: आप दोनों पति पत्नी हैं?
0: अभी तक तो नहीं है।
1: लेकिन जल्दी हो जाएंगे।
2: बहुत खूब बहुत खूब, अपना हाथ दिखाइए। नो
1: पहले आप आपका हाथ देखिए प्लीज।
0: नहीं, लेडीज फर्स्ट।
2: अब तो हाथ बढ़ा ही दीजिए
1: रोजी,
2: मिस।
1: ठीक है, लेकिन आप माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ मुस्तकबिल, वो भी शादी के बारे में।
2: जैसे आपकी इच्छा। हाथ की रेखाएं तो बड़ी अच्छी है। आपका वैवाहिक जीवन तो बड़ा ही सुखमय रहेगा, संतान भी चार पांच होंगे।
0: हाँ, शादी के बाद तो लाइन लगती ही है। वैसे इनकी शादी कब तक होगी?
2: अगले बरस के अंत
1: और कुछ पहले नहीं हो सकती?
2: तक। रेखाएं मैं नहीं बनाता मिस, कुछ और पूछना है तो पूछिए।
1: जी कुछ नहीं।
2: आप अपना हाथ तो बढ़ाइए शर्मान।
0: एक के हाथ से काम नहीं चल जाएगा।
2: बिल्कुल नहीं चलेगा श्रीमान, बिल्कुल नहीं। लाइए आपका हाथ देखूं। हाँ,
0: हाँ लीजिए।
2: मैडम कृपया आप जरा कमरे के बाहर बैठेंगी?
1: क्यों?
2: बस यूं ही, जरा इनसे खास बात बतानी है।
1: शादी ही से मुतल्लिक ना?
2: जी हाँ, विवाह के ही संबंध में।
1: तो फिर मैं भी सुनूंगी।
0: हाँ, इन्हें रहने दीजिए।
2: जैसी आप लोगों की इच्छा।
0: शादी से मुतल्लिक कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं।
2: हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आपकी दो शादी होगी।
0: नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
2: ऐसा ही है श्रीमान।
1: जरा गौर से देखिए शास्त्री जी।
2: बहुत गौर से देखने के बाद ही बताता हूं मिस।
1: रोजी,
2: हाँ, मिस रोजी।
1: आफाक, क्या तुम शादीशुदा हो?
0: बिल्कुल नहीं भाई, खांटी कुंवारा हूं।
1: फिर दो शादी की वजह?
0: ये शास्त्री जी ही बताएंगे।
2: आपके हाथ की रेखाओं के अनुसार आपकी पहली पत्नी विवाह के एक बरस के अंदर देहांत कर जाएगी।
1: ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता।
0: शास्त्री जी, रेखाएं बदल भी तो सकती हैं।
2: अभी इसकी संभावना नहीं है श्रीमान।
0: मैं इन रेखाओं को खुरच कर मिटा दूंगा।
2: इससे रेखाओं का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो जाएगा श्रीमान।
0: मैं ये हाथ ही कटवा दूंगा।
2: यह आपके हाथ की रेखाएं नहीं बताती हैं।
0: काश मैं यहां आता ही नहीं।
1: ऐसा न कहो, अगर हम यहां नहीं आते तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में ही रहता।
0: जान लेने के बाद तो अंधेरा और भी गहरा गया है।
1: चलो चलते हैं।
0: हाँ चलो, कितने पैसे हुए शास्त्री जी?
2: मात्र 200 रुपये।
0: ये लीजिए।
2: धन्यवाद।

0: क्या सोच रहे हो आफा?
1: यही कि मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं चाहिए।
0: क्यों?
1: मैं शादी करके किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहता।
0: इंसान अपनी मौत आप मरता है, दूसरा उसकी मौत की वजह नहीं बनता।
1: फिर भी मेरा ज़ोहीर गवारा नहीं करता।
0: नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी और जरूर करनी होगी।
1: क्या अब भी तुम उससे शादी करने को तैयार?

0: की बात थोड़ी ही कर रही हूँ।
1: इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती।
0: नहीं नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन एक साल बाद।
1: अभी क्यों नहीं?
0: बात दरअसल ये है अफाक, कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबी उम्र गुजारना चाहती हूँ।
1: साफ क्यों नहीं कहती कि तुम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती?
0: ये भी सही है।
1: वस्ल के चंद लम्हात हिजर की लंबी उम्र से कहीं बेहतर होते।

0: शादी कर लूंगी।
1: तो ये बात है।
0: तुम उसे पसंद भी नहीं करते, इस तरह वालदैन की बात भी रह जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा।
1: ख्याल तो अच्छा है।
0: शादी मुबारक हो आपा।
1: शुक्रिया, तुम्हें भी मुबारक हो।
0: अपनी बेगम से नहीं मिलवाओगी?
1: मेरी होने वाली बेगम तो तुम ही हो।
0: मैं होने वाली की नहीं, जो हो चुकी उसकी बात कर रही हूँ।
1: ओ अच्छा, जब चाहो तुम्हारा घर है,
0: बुलाओगे नहीं?
1: आज ही आ जाओ, मैं शाम की चाय पर इंतजार करूंगा।
0: ओके, बाय हैंडसम।
1: बाय स्वीटी। शबनम, शबनम कहाँ हो डार्लिंग?
2: जोर जोर से डार्लिंग डार्लिंग पुकार रहे हैं, और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
1: अरे कुछ दिन तो डार्लिंग डार्लिंग पुकार लूं, फिर तो मुन्ने की अम्मा या मुन्नी की अम्मा कहकर पुकारना ही पड़ेगा। सुनो, आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त तुमसे मिलने आ रही है।
2: प्यारी दोस्त या सिर्फ प्यारी?
1: और अच्छे नाश्ते का इंतजाम कर लोगी,
2: ठीक है, और कुछ?
1: जरा अच्छा सा मेकअप भी कर लोगी।
2: मेकअप कर लेने से मैं खूबसूरत हो जाऊंगी।
1: ये भी तुमने सही कहा, भला शबनम को मेकअप की क्या जरूरत, वो तो जिस चीज पर गिरती है उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है।
2: मैं गिरने वाली शबनम नहीं हूं।
1: हाँ भाई, तुम तो गिराने वाली शबनम हो।
2: अब तक कितनों को गिराया है मैंने?
1: क्या पता, जिसने भी तुम्हें देखा होगा वही दिल थाम कर उलट गया होगा।
2: लेकिन तुम तो अभी तक सीधे हो।
1: कौन?
0: मैं रोजी।
1: आओ भाई अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था।
0: शुक्रिया।
1: शबनम, ओ शबनम, आओ देखो कौन आया है।
2: कौन आया है?
1: भाई जिनका इंतजार था।
2: अभी आई।
0: आवाज तो बड़ी मीठी है।
1: बस आवाज ही मीठी है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इनसे मिलो, यही मेरी सबसे प्यारी दोस्त रोजी है, और ये मेरी बेगम शबनम।
2: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप वाकई बड़ी प्यारी हैं।
0: शुक्रिया, लेकिन आपके हुस्न में तो शबनम की तबना की है।
2: और आपके हुस्न में शोले की तमाजत।
0: आप तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं।
2: जब मुकाबिल कोई प्यारा इंसान हो तो प्यारी बातें ही निकल जाती है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: पहले ये मामूली सा तोहफा तो कबूल कीजिए, शादी मुबारक हो।
2: इस तोहफे की क्या जरूरत थी, आपकी दुआएं ही काफी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अरे भाई जरा इसे खोल कर तो देखो।
2: प्यारे इंसान का तोहफा भी प्यारा ही होगा।
0: ऐसी कोई बात नहीं,
1: हाथ कंगन को आरसी क्या।
2: आप खुद ही खोलकर देखिए ना।
1: लाओ। अरे वाह, नई शादीशुदा जोड़े की मूर्ति, बहुत खूब बहुत खूब।
2: मैंने गलत नहीं कहा था।
1: वाह वाह, इसके नीचे जो शेर लिखा है इसने तो इस मूर्ति की अहमियत और भी बढ़ा दी है।
2: कौन सा शेर?
1: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं।
2: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं। वाह वाह, वाकई बहुत अच्छा शेर है। सिर्फ इस शेर की वजह से इस तोहफे के कदरों कीमत में इजाफा हो गया है।
1: ये तुम्हारा शेर है रोजी?
0: अरे नहीं, मैं शायरी कहाँ करती हूँ।
2: अच्छा, अब मैं चाय लाने जा रही हूँ।
0: तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था आफा?
1: मैं और झूठ, कैसी बातें कर रही हो?
0: और नहीं तो क्या, किस कदर हसीन है तुम्हारी शबनम।
1: तुमसे ज्यादा तो नहीं?
0: नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
1: मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं।
0: मैं सब समझती हूँ।
2: क्या समझती है रोजी बहन?
0: अरे कुछ भी नहीं, बस यूं ही।
1: भाई ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रही।

0: नहीं है।
1: मेरा तो हुस्न से दूर का भी वास्ता नहीं है। हाँ, रोजी बहन के अंग अंग से हुस्न टपक रहा है।
2: बिल्कुल गलत। अगर मेरे अंग अंग से हुस्न टपकता होता तो मेरे पैरों के पास की जमीन गीली नहीं हो जाती।
1: नाश्ता आपके दस्ते मुबारक का मुंतजिर है।
0: बाप रे, मुझे तो तुम लोगों की गुफ्तगु समझने के लिए लोगत लेकर बैठना पड़ेगा।
2: वाह, क्या शानदार नाश्ता बनाया है आपने।
1: शायद इसीलिए आपने कुछ खाया ही नहीं।
2: पेट तो आपकी बातों ही से भर चुका था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
0: फिर आना?
2: एक बार तो आना ही पड़ेगा।
1: क्या मतलब?
0: अरे ये मजाक कर रही हैं।
2: जब आपके यहाँ नया मेहमान आएगा।
1: अभी तो एक नई मेहमान आप ही आई हुई हैं।

0: कैसी तबीयत है शबनम की?
1: अभी तक खतरे से बाहर नहीं।
0: और वो डॉक्टर ने क्या कहा?
1: खून की बहुत कमी है, बच्चा भी पेट में उलट गया है।
0: यानी अब हमारी किस्मत पलटने वाली है।
1: क्या कहा? मैंने कुछ समझा नहीं।
0: जल्दी समझ जाओगे।
1: अभी मैं बहुत परेशान हूँ रोजी।
0: चंद ही दिनों की परेशानी है, फिर तो तुम्हारी चांदनी ही चांदनी होगी।
1: खुदा मालूम चांदनी होगी या अंधेरी रात, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता।
0: क्या वाकई कुछ नजर नहीं आता?
1: हाँ, सिर्फ दिन में तारे नजर आते हैं।
0: शबनम को जैसे ही कुछ हो जाए मुझे फौरन खबर करना।

0: आपकी स्वीटी कौन है जनाब?
1: तुम उससे मिल चुकी हो।
0: कौन? वही रोजी?
1: हाँ वही।
0: आपको बहुत पसंद है?
1: पसंद थी।
0: झूठ मत बोलिए, आप अब भी उसे पसंद करते हैं?
1: मेरी बात का यकीन करो।
0: जब आप उसे पसंद करते थे तो उससे शादी क्यों नहीं की?
1: एक शास्त्री जी ने मुझे रोजी की मौजूदगी में मेरा हाथ देखकर बताया कि मेरी पहली बीवी शादी के एक साल के अंदर इंतकाल कर जाएगी।
0: तो आपने इसलिए मुझसे शादी की कि एक साल के अंदर मेरे मर जाने के बाद आप दोनों शादी रचा लेंगे?
1: मैं नहीं, सिर्फ रोजी।
0: रोजी क्या दीवार से शादी करेगी? मैं सब समझती हूँ।
1: अरे बाबा, अब रो क्यों रही हो? एक साल तो गुजर चुका है।
0: और मैं अब तक नहीं मरी, इसी बात का दुख है ना आप लोगों को? मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? या फिर दवा में ही जहर मिलाकर पिला दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
1: हाँ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।

0: हेलो
1: हेलो स्वीटी, कहो कैसी हो।
0: हाय हैंसम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे इंतजार में अब तक जिंदा हूँ।
1: अब इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ रोजी, आकर शबनम का आखिरी दीदार कर लो।
0: अल्लाह का शुक्र है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार बरसों से था। अभी आई हैंडसम।
2: आप रोजी को मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं? अब कब में ही आराम मुझे मिलेगा? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे?
1: कहो।
2: अगर मारना ही है तो आप अपने हाथों से मारिएगा, मैं आपके हाथों से मरना चाहती हूँ।
1: बस, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो।
2: हाँ, मेरे मुन्ना को मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा।
1: कौन? अभी आता हूं। हाय स्वीटी, आओ आओ।
0: शबनम खत्म हो गई क्या?
1: नहीं, हमें उसे खत्म करना है।
0: कैसे?
1: तुम उसका गला घोट कर मार डालोगी।
0: नहीं, उसे ये काम नहीं होगा।

0: तो ठीक है, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो, शबनम अभी मरने वाली नहीं है।
1: ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
0: फिर मैं क्या करूं?
1: उसकी दवा में जहर क्यों नहीं मिला देते?
0: अब इस वक्त जहर कहां से लाऊं?
1: रात में उसकी दवा में जहर मिला के पिला देना, वो सोई की सोई रह जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा।
0: नहीं, नहीं, मैं इस कश्मकश को अभी इसी वक्त खत्म करना चाहता हूँ।
1: फिर तो तुम्हें ही शबनम का गला घोटना होगा।
0: ठीक है, आओ शबनम के कमरे में चलते हैं, तुम मेरी मदद करना।
1: चलो।
2: आप लोग क्यों आए हैं?
0: रोजी तुम्हें देखने आई है।
2: मैं सब समझती हूँ, आप लोग मुझे मारने आए हैं।
0: तुम डरो नहीं, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे अफसोस है शबनम, पर क्या करूं, दो में से किसी एक का गला तो घोटना ही पड़ेगा, या तो मोहब्बत का या बीवी का।
2: मुझे खुशी है कि मैं आपकी खुशी के लिए आप ही के हाथों मर रही हूँ। आप
0: अरे
2: खुश
0: शबनम, शबनम, अरे आंखें खोलो शबनम, मेरी प्यारी शबनम, ये तो बेहोश हो गई।
1: अरे यही अच्छा मौका है, अरे गला घोट तो उसका।
0: खबरदार, अगर शबनम मर गई तो मैं तुम्हारा भी गला घोट दूंगा।
1: क्या कहा?
0: हाँ, जल्दी से पानी लाओ।
1: पानी टेबल पर है, लो।
2: मैं कहाँ हूँ?
0: मेरी बाहों में।
2: आप भी मर गए?
0: नहीं शबनम, हम दोनों जिंदा हैं।
2: आपने मुझे नहीं मारा?
0: पागल हुई हो? कोई अपनी जिंदगी को मारता है? तुम तो मेरी जिंदगी हो शबनम,
2: मेरे अच्छे अफा।
0: ना शबनम ना, अब हंस दो, हंस दो, शाबाश शाबाश।
2: आप बस कीजिए, मुझे गुदगुदी लग रही है।
0: रुको रोजी,
1: बंदगी में अब मेरा यहाँ क्या
0: है? रोजी,
2: हाँ रोजी बहन, रुक जाइए,
0: आओ बैठो रोजी, तुमसे कुछ कहना है।
1: अब कहने को रखा ही क्या है फा?
0: अभी तो हकीकत बयान करनी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था,
3: काम है,
0: लेकिन तुमने शास्त्र की बातों में आकर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी शादी शबनम से हो गई।
2: लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं तो मरने के लिए तैयार थी।
0: तुमसे शादी के बाद शबनम, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का बन चुका है। हाँ रोजी, अगर मैं जिस्म हूं तो शबनम मेरी रूह है, और शबनम जिस्म है तो मैं उसकी रूह हूं।
2: क्या सच?
0: हाँ शबनम, अगर तुम मर जाती तो मेरे जिस्म से रूह निकल जाती और मैं भी मर जाता।
1: तुम शबनम को इतना चाहने लगे हो?
0: हाँ रोसी, हर शौहर अपनी बीवी को इतना ही चाहता है। तुम भी शादी करके देख लो,
1: अब मैं
0: तुम्हारा शौहर भी इससे कम नहीं चाहेगा।
1: अब मैं किससे शादी करूंगी?
4: मोहब्बत है अगर इल्जाम तो इल्जाम लिख लेना, तुम अपने चाहने वालों में मेरा नाम लिख लेना।
0: हेलो, तुम्हारा दिल भर आ गया।

0: दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है अब कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। आज प्रस्तुत है लोक गीतों में भक्ति रस। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या की बात चिरकाल से चली आ रही है। सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वालों ने तरह तरह से उसे याद किया। कहीं लीलाओं को आधार बनाया तो कहीं संसार की नश्वरता को। बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले भक्तों की भीड़ शिव भोला के द्वार पर गुहार लगा रही है। धर्म कर्म की बेला हो गई, हे प्रभो तुम्हारे गण भूत प्रेत सभी तो जग गए। बम बम की गंभीर ध्वनि से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा। अब तो पलकें खोलो,

भजना नंदी भक्तों की दूसरी टोली दरस परस मज्जन अरुपाना की लालसा लिए देव नदी गंगा की ओर बढ़ रही है। एक कटोरी है सोने की और दूसरी रुपए की। सोने की कटोरी में है अगर चंदन और रुपए की कटोरी में सुगंधित तेल। गौरी ने अंग प्रत्यंग में शीतल चंदन का लेप लगाया, शिव की जटा से निकलती गंगा की धार में स्नान किया और सुगंधित तेल से अपने लंबे लंबे केश संवारे। इस पार गंगा है और उस पार जमुना, दोनों के बीच की भूमि में फूल खिल रहे हैं। राधा और रुक्मिणी फूल लोढ़ती हैं और बनमाली कृष्ण खड़े देख रहे हैं। कैसी अजीब बात है, शिव पार्वती और गंगा की चर्चा के बीच कहाँ से तो जमुना आ गई। जमुना आई तो कृष्ण भी खड़े हो गए और जब कृष्ण आए तो राधा रुक्मिणी कैसे रुकती। भक्त हृदय पागल होता है, भावों का कोई और छोर नहीं। विह्वल मन जाने कहां कहां की सैर कर लेता है।

कृष्ण कन्हैया का ध्यान आते ही इनकी प्यार भरी करतूतों का भी ख्याल आया। कृष्ण की लीलाओं का अंत नहीं, सब एक से एक बढ़ चढ़कर। गोपियों को छकाने का इरादा हुआ तो मोहिनी रूप धारण किया, आभूषणों से अंग सजाए, पान से होंठ लाल किए, सुरमा डालकर आंखों को सुरमई बनाया, पैरों में लाल महावर और हाथों में मेहंदी रचाई, दर्पण में मुंह देखा और अपनी छवि पर आप ही मुग्ध होकर हंस पड़े। अभी देखिए ये और क्या करते हैं। 16 सिंगार से परिपूर्ण घुमावदार लहंगे का छोर पकड़ा और मस्तानी चाल से ग्वालनों के बीच विराजमान हुए। लेकिन ये क्या, वृंदावन की कुंज गली में तो पकड़े गए। एक सखी ने शोर मचाया, जरा देखो तो इस छलिए को, बड़े आए थे औरत बनकर।

मन भी कैसा अजीब है, ऐसे श्याम सुंदर को भूलकर संसार में भटकता रहता है। पानी के बुलबुले जैसा ये जीवन, मैं और मेरा, तू और तेरा की परिधि में चक्कर काटता मन। ये कैसी दीवानगी है, आने के साथ जाना और बनने के साथ मिटना जुड़ा है। इस नश्वर शरीर की सफाई और सज्जा से कोई बात नहीं बनती। साफ करना हो तो मन दर्पण पर जमी धूल को साफ करना चाहिए।

घट घट वासी कण कण में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान के निकट सभी नतमस्तक हैं। कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, तो कोई प्रकाश पुंज के रूप में उसकी आराधना करता है। ये तो मनमाने की बात है ना। मिथिला वासियों ने उसे पाहुन के रूप में प्राप्त किया। जनक नंदिनी जानकी से श्री राम का पावन परिणय हुआ। कोटि कोटि कामदेव को लजा देने वाला श्री राम का सौंदर्य जनकपुरी की ललनाओं को मुग्ध किए दे रहा है। श्री राम के मधुर बोल, रसधार बरसाती हंसी, चांदनी को फीका कर देने वाली सलोने मुख की कांति ने सबके दिल चुरा लिए हैं। बस एक बार मेरी ओर निहार ले, सबकी यही लालसा है। काश फूलों से भी कोमल इस श्यामल गात को अपलक देखते देखते जिंदगी बीत जाती।

रे मन, उस परम तत्व से प्रेम करना सीख जिससे हम उत्पन्न हुए हैं और जिसमें विलीन होंगे। पान में सुपारी भी है और चूना भी, लेकिन बिना कत्थे के लाली नहीं आती। नैहर में भाई भतीजा भरे हैं, पर माँ के बिना सब सूना है। ससुराल में ज्येष्ठ देवर सब उपस्थित हैं, लेकिन एक पुरुष के बिना सब उजाड़ है। ऐसा ही तो इस शरीर के साथ भी है। प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिन तन के पिंजरे से मन का पंछी भाग निकलेगा, दूर, बहुत दूर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जिगरी दोस्त, आइए सुनते हैं इस फिल्म के लिए गाया गाना है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वर में।

AIR at 90.

इसके पहले श्रोताओं, हमने जो आपको गीता को सुनवाया था, गीत फिल्म के लिए वो गाना था जिसे आवाज दी थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसला

0: जरिए शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police along with prompt and result-oriented action at every level.
1: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia, Penny Wong, today called on Prime Minister Modi in New York.